ये आकाशवाणी है FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 19 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 8:55 होने को है। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरितमानस गान आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर, और भक्ति संगीत वंदना का समय रहेगा सुबह 9:20 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद आप सुनेंगे सुबह 9:40 पर। गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत समय रहेगा सुबह 10:00। गाने नए तराने नए फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:30 पर। श्रोताओं, युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का समय रहेगा शाम 5:00, और कार्यक्रम पणिहारी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। शाम 6:05 पर समय रहेगा फिल्म संगीत का, और कार्यक्रम माटे के स्वर आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम खेती बाड़ी का समय रहेगा शाम 7:00, और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

उमंग समय रहेगा शाम 7:30 पर। लोक गीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम आप सुनेंगे हेलो गोरबंद रात्रि 8:00। रात्रि 9:00 समय रहेगा सुगम संगीत का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून कर रखा है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। FM एंड 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लिए चार स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र की कल से शुरुआत। समान नागरिक संहिता सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता के लगभग 2500 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा। अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 वैज्ञानिक विशेषज्ञों को हटा दिया है और नए विशेषज्ञों को शामिल किया है। शिक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए चार स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के दफ्तरों के लिए सीआईएसएफ की सुरक्षा भी ली जाएगी। एनटीए ने यह फैसला शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है, जिसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। केंद्र सरकार ने पाइप से रसोई गैस कनेक्शन घर घर तक पहुंचाने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य साफ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना अगले महीने की 1 तारीख से 6-6 महीने के लिए 2 चरणों में लागू की जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इस योजना का मकसद ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक पाइप वाली रसोई गैस पहुंचाना है। फिलहाल देश में 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन है। राजस्थान विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता, यूसीसी, भू जल संरक्षण, धर्मांतरण और सहकारिता से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाने की संभावना है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में जयपुर में कल सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री देवनानी ने सभी दलों के सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सकारात्मक भूमिका निभाने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में 690 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री बिरला ने शहर के समग्र विकास के लिए 7000 करोड़ रुपए की दीर्घकालीन योजनाओं का रोड मैप भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि कोटा के सभी 100 वार्डों को स्मार्ट वार्ड के रूप में विकसित किया जाएगा, साथ ही डिजिटल सेवाओं के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

0: लोगों को उनके घर के नजदीक ही उपलब्ध कराया जाएगा।
1: अब आने वाला समय डिजिटल का समय है। हमने नगर निगम के लिए से कहा है, कोई व्यक्ति घर बैठकर भी अपनी समस्याओं को बताता है तो जैसी समस्या उसका समाधान उसी तरीके से होना चाहिए। छोटी छोटी जो समस्या है, जो आम आदमी की समस्या है, और कोई भी गरीब व्यक्ति हो चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो, उसको निःशुल्क रूप से हिंदुस्तान के किसी भी कोने में निःशुल्क रूप से पहुंचाने का काम हमने किया।
0: प्रदेश में आजीविका से जुड़ी महिलाओं की आय और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं को आपस में जोड़ा जाएगा। कल जयपुर में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने अधिकारियों को योजनाओं को आजीविका से जोड़ने की कार्य योजना बनाने को कहा। कृषि और पशुपालन विभाग की योजनाओं के जरिए महिलाओं को प्राकृतिक खेती, ड्रोन, बीज उत्पादन, पशु बीमा और दुग्ध गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा की गई। वहीं सहकारिता, देवस्थान और पर्यटन विभागों के माध्यम से आजीविका उत्पादों के लिए स्थायी बाजार उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इस बीच जयपुर के शासन सचिवालय परिसर में आजीविका राखी मेला लगाया गया है। कल से शुरू हुए इस मेले में प्रदेश के 12 जिलों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के अपने हाथों से तैयार राखियां, हस्तशिल्प और स्थानीय उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। ये मेला 21 अगस्त तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। राज्य में पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता के लगभग 2500 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जा चुके हैं। वहीं फीडर स्तर पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता के आधार पर राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल योजना के लाभार्थी किसानों से संवाद के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में पीएम कुसुम योजना किसानों के लिए अतिरिक्त आय और आत्मनिर्भरता का माध्यम बन रही है। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री हीरा लाल नागर, कई अधिकारी और सौर ऊर्जा उत्पादक किसान मौजूद रहे। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत बाड़मेर में जिला स्तरीय वन महोत्सव कल आयोजित किया गया। सरकारी न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई ने पौधरोपण कर वन और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने प्रदेश में हरित क्षेत्र बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी मजबूत करने पर जोर दिया।
2: हरियालो राजस्थान का जो लक्ष्य हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने लगातार ये तीसरा वर्ष है, प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ वृक्ष लगाने का, तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो एक जन जागरण अभियान बन चुका है, ये वाकई तारीफ काबिल है। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो एक जन जागरण अभियान के रूप में लोगों के मन में एक जो जागृति उत्पन्न करी है पर्यावरण को लेकर के, वृक्षों को लेकर के, चारों तरफ ही पौधे दिख रहे हैं।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। वे श्रीगंगानगर में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने जिले में चलाए जा रहे नशा मुक्त अभियान ऑपरेशन सीमा संकल्प की सराहना की। उन्होंने अभियान को जन भागीदारी से स्वस्थ और सुरक्षित समाज के निर्माण का महत्वपूर्ण प्रयास बताया। और अब मौसम। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है। हालांकि आज लगभग 10 जिलों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें राज्य के उत्तर पूर्वी जिले शामिल हैं। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 23 अगस्त तक हल्की बरसात का दौर बना रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों हिस्सों में कमजोर मॉनसून परिस्थितियों के चलते अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क बने रहने की संभावना

0: संभावना है। हालांकि बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में कल से 22 अगस्त तक हल्की से मध्यम बरसात का पूर्वानुमान है। नई दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में तीजोत्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। उत्सव में राजस्थानी कला, संस्कृति और परंपराओं से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल रैंप वॉक आयोजित किया गया। महिला, पुरुष और बच्चों ने राजस्थानी परिधान पहनकर रैंप वॉक किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राजस्थानी परिधान प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक है। उत्सव में आज गायन प्रतियोगिता, कल साफा पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। वहीं 23 अगस्त को रस्साकशी और लोक कलाकार कुटले खां की प्रस्तुति होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत कल से। समान नागरिक संहिता सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की संभावना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के तहत अब तक 5000 मेगावाट से अधिक क्षमता के लगभग 2500 सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए। और प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा, अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहने का पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है, FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारा दैनिक कार्यक्रम रामचरित मानस गान।

अवध के राज सिंहासन पर बैठना अस्वीकार करते हुए भरत ने अपने हृदय में धधकती जिस ज्वाला और पश्चाताप की व्यथा कथा गुरुजनों को सुनाई, उससे सबके हृदय में मर्मांतक पीड़ा के साथ एक आनंद का संचार भी हुआ। श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सने भरत के प्रिय वचन सभी के हृदय में दहकती रामविरह की ज्वाला को शांत करने वाले सिद्ध हुए। सबने भरत को मुक्त कंठ से श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मानकर उनके वन जाने के लिए सहमति प्रकट की। भरत के इस निश्चय से जैसे शोक सागर में डूबी अयोध्या नगरी को एक सहारा मिल गया। सबके हृदय में ऐसे आनंद का संचार हुआ जैसे मेघों की गर्जना से चातक और मोर आनंद विभोर हो उठते हैं। भरत का जीवन धन्य है, इस उद्गार के साथ सभी उनके शील और स्नेह की प्रशंसा करते नहीं आघाते।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत वंदना।

नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम, सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़। आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत वंदना FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गोरबंद FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले की आवाज में, संगीत शंकर जयकिशन का, बोल शैलेंद्र के, फिल्म मेरा नाम जोकर।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमें मिले फिल्म कारवां से, आवाजी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, संगीत RD बर्मन का, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस, संगीत शंकर जयकिशन का है और गीतकार हसरत जयपुरी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बॉबी से आवाज लता मंगेशकर की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीतकार आनंद बख्शी।

0: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत मुकेश की आवाज में, फिल्म लाल बंगला।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के फिल्म संगीत FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गाने नए, तराने नए, फिल्म संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत भूमि त्रिवेदी की आवाज में, फिल्म रामलीला।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दिल को आया सकूं तेरे दीदार से है।
3: आवाज राहत फतेह अली खान और साथी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत लिया हमने फिल्म शानदार से, जिसमें आवाजें दी हैं निखिल पॉल जॉर्ज और नीति मोहन ने। संगीत अमित त्रिवेदी का है और गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में, फिल्म का नाम डियर जिंदगी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत भी अरिजीत सिंह की आवाज में, संगीत अमान मलिक का, गीतकार कुमार, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का, बोल कुमार के, फिल्म काबिल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए फिल्म संगीत FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
4: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
5: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

अनूप जलोटा और अनीता खंडेलवाल के स्वरों में आप ये भक्ति रचना सुन रहे थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। दोस्तों, आज जाने माने संगीतकार खयाम की याद का दिन है। आइए सुने ये रचना बेगम अख्तर की आवाज में, सुदर्शन पाकिर के बोल है।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी। मिलो जो अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
1: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपके आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। आज फिर सीने में उलझी हुई वजनी सांसें फट के बस टूट ही जाएंगी, बिखर जाएंगी। आज फिर जागते गुजरेगी तेरे ख्वाब में रात, आज फिर चांद की पेशानी से उठता है धुआं, आज फिर महकी हुई रात में जलना होगा। कहां छुपा दी है रात तूने, कहां छुपाए हैं तूने अपने गुलाबी हाथों के ठंडे पाए। कहां हैं तेरे लबों के चेहरे, कहां है तू आज, तू कहां है। ये मेरे बिस्तर पे कैसा सन्नाटा सो रहा है।
1: ये था गुलजार का स्वर।

ये थी जगजीत सिंह की आवाज, कैफ भोपाली के बोल थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है। रंग

0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा कि देश 6 से 8% की विकास दर से आगे बढ़ रहा है।
1: The investment story.
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि देश के 99.6% रेलवे नेटवर्क का विद्युतीकरण हो चुका है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2025-27 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की 1 तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम के मद्देनजर एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। जिन श्रद्धालुओं ने पहले ही पंजीकरण करा लिया है, उन्हें मौसम की स्थिति और प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मकाओ के लियोन योक चोंग और एनजी वेंग ची को हराया। क्वार्टर फाइनल में ध्रुव और तनिषा का मुकाबला चीन की जोड़ी चेंग फांग हुई और गुआ शिनवां से होगा। भारत के साथ गोल में क्रिकेट टेस्ट मैच के 5वें दिन श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट पर 175 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत अपनी दूसरी पारी में 193 रन पर ऑल आउट हो गया और श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया गया। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 342 अंक गिरकर 76,893 पर और निफ्टी 104 अंक गिरकर 24,051 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो

0: शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मणप्पुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मणप्पुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
5: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 01582401168। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

चंबल की कसम, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए सुने आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का गीत सुलक्षणा पंडित की आवाज में। लक्ष्मी लालपुरी के बोल, खयाम का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल थे खयाम का संगीत था।
1: जब जब किसी

0: बगावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: तुम इसको खेल समझे हो मगर एक दिन दिखा देंगे मोहब्बत इसको।

0: मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना। संगीतकार थे खयाम, फिल्म थी मोहब्बत।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।

0: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, तोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
1: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
0: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाजें थी। मखदूम मोहिउद्दीन के बोल थे, खयाम का संगीत था, फिल्म थी बाजार। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, CID, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
2: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय दिन के 1 बजने को है। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। राज्य में सरकारी कर्मचारियों और उनके परिजनों को कैंसर के इलाज में अब अत्याधुनिक कार टी सेल थेरेपी की सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने इस उपचार को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के तहत अनुमत पैकेज में शामिल करने का निर्णय लिया है।

0: सरकार की इस पहल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों और उनके परिजनों को आधुनिक उपचार की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। इससे उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल की गई है। कार्टी सेल थेरेपी कैंसर के कुछ प्रकारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक इम्यूनोथेरेपी है। इसमें मरीज की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को विशेष तरीके से तैयार कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जयपुर में आज से ब्रिक्स देशों के पर्यटन कार्य समूह की बैठक शुरू हो रही है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत हो रही इस बैठक में ब्रिक्स के 10 सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये बैठक कल भी आयोजित की जाएगी। इन बैठकों में पर्यटन को बढ़ावा देने, सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और नए अवसर तलाशने पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही ब्रिक्स देशों के बीच साझा पर्यटन एजेंडे के प्रारंभिक मसौदे पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद 21 और 22 अगस्त को पहली ब्रिक्स पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित होगी। इसमें सदस्य देशों से मिले सुझावों के आधार पर साझा पर्यटन एजेंडे को अंतिम रूप देने की दिशा में विचार किया जाएगा। राज्य के आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग ने 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान पहल शुरू की है। इस पहल के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 विशिष्ट व्यक्तियों का चयन किया जाएगा। इसमें अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। महिलाओं की अधिकतम आयु 55 वर्ष और पुरुषों की 45 वर्ष रखी गई है। विभाग के आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इच्छुक प्रतिभागी 31 अगस्त तक विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। राज्य सरकार ने आज 2 आईपीएस अधिकारियों सहित जेल सेवा के 26 अधिकारियों के तबादले किए हैं। आईपीएस प्रतीक सिंह को आमेर और आईपीएस जतिन जैन को चौमू का सहायक पुलिस आयुक्त लगाया गया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। वहीं गृह विभाग ने जेल सेवा के 26 अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले कल रात 57 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों और 24 पुलिस उपाधीक्षकों के भी ट्रांसफर किए गए थे। बालोतरा के नाहटा अस्पताल के सामने क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। इसके लिए आज भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। गौरतलब है कि करीब 23 करोड़ रुपए की लागत से इस 50 बेड क्षमता वाले ब्लॉक में गंभीर बीमारियों का इलाज हो सकेगा। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार छिटपुट स्थानों को छोड़कर बाकी जगहों पर मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक 1 सेंटीमीटर बरसात बांसवाड़ा में हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन बारिश की गतिविधियों में कमी रहेगी। हालांकि आज लगभग 10 जिलों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट है। इनमें राज्य के उत्तर पूर्वी जिले शामिल हैं। भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 23 अगस्त तक की बरसात का दौर बना रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में कमजोर मॉनसून परिस्थितियों के चलते अगले 4-5 दिन मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है FM 103.7 MHz पर। श्रोताओं, इस समय दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुने विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये

0: पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
4: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
3: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
4: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
3: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। सभी श्रोताओं ने सही पहचाना है, सही जवाब दिया है। बहुत सारे श्रोताओं ने शब्द लिखे हैं, चांदनी, फासले, रात, रंजोगम, चोरी चोरी, तुम और हम, आंखों, मौसम, याद हो सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने तारे से जुड़े हुए बहुत सारे गाने लिखे हैं, तारे से जुड़े हुए अनुभव नहीं साझा किए हैं। और चांदनी रात की एक खूबसूरत बात होती है, जब चांदनी रात में घूमने निकलते हैं तो उसका कुछ अलग ही आनंद होता है। उससे जुड़ी हुई बहुत सारी यादें होंगी, वो भी आप साझा करते रहिए। अब हम, आपने क्या लिखा है वो हम बताते चलते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में कई बार सुबह आने से पहले ही रात बहुत अंधेरी लगने लगती है, और खासकर तब जब हमें अपने प्रेम का इंतजार हो। प्रेम जब एक तरफ से कम होने लगे तो सबसे पहले मन स्वीकार करने से इनकार करने लगता है और हम तरह तरह के ख्याल में डूब जाते हैं। प्रेम में इंतजार का कोई आकार नहीं होता, वो तो हवा में घुल जाता है, आंखों में ठहर जाता है। कुछ इंतजार कभी खत्म नहीं होते, वो दिल तोड़कर चला गया, लेकिन क्या इस तरह जाने से प्रेम खत्म हो गया? प्रेम बड़ी गहरी चीज है। प्रेम में आकर्षण तो वक्ती है, फर्क इतना है कि तुम प्रेम में कितने गहरे तक डूबे हो। बात बहुत साधारण है, ऐसा क्यों होता है जब कोई एक प्रेम के सहारे सदियां बिताने का मादा रखता है और दूसरा दिल तोड़कर चला जाता है? लेकिन इसमें बड़ा कौन होता है, दिल तोड़कर चला जाने वाला या जो आखिर तक प्रेम करता रहता है, जरा ये भी बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि आज दोपहरी दो प्रेमियों की दोपहरी होगी, जहां उनके मिलने बिछड़ने के किस्से होंगे, उनके रोमांस की बातें होंगी, गिले शिकवे होंगे। चांदनी रात में अकेला कोई महबूब की तस्वीर सीने से लगाए तरह तरह के सवाल जवाब कर रहा होगा। उसका गया महबूब अब तक आया नहीं, फिर क्या वो अब नहीं आएगा? आखिर कब

कोई एक तारे में महबूब की आकृति तलाशती रहेगी, क्या वो सचमुच नहीं आएगा? ये तो आपको बताना है कि वो महबूब आएगा, दरवाजे पर जो दस्तक हुई थी सचमुच कोई आया या नहीं। बहरहाल चलिए आगे बढ़े और अब आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है नूरी और इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं आज की इबारत के, बताइए और साथ में हीरो हीरोइन का नाम बूझिए।

नूरी फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, जानिसार अख्तर के बोल खयाम का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया है। फारूक शेख और पूनम ढिल्लन इस फिल्म में होते हैं हीरो हीरोइन और बहुत जल्द जवाब हमारे श्रोताओं ने दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिलकश चमकते सितारे भला किसे नहीं सुहाते हैं, बचपन से ही ये दिलों को लुभाते हैं, टूटते हुए तारे मन में एक सवाल सा जगाते हैं कि टूट के आखिर कहाँ तलक जाते हैं। ये भी बताइएगा कि बचपन में जब तारों भरी रात में जागकर देखते थे आंगन में खाट डालकर, तो कौन कौन से तारे आप गिनते थे, उन तारों के नाम अगर याद है तो बताइएगा। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर दिल तोड़ने का किसी की भलाई के लिए है तो वो बड़ा है, वरना तो अंत तक निभाने वाला सही है। देखो ना ममता जी, आटे वाले हाथ धोकर लिखना पड़ रहा है, क्या बात है भाई। ये तो आपका जुनून है और आपका प्यार है, खुलूस है, मोहब्बत है विविध भारती के प्रति जो ऐसा करवा रहा है। और हमें ये जानकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि कमेंट लिखने के लिए, टिप्पणी लिखने के लिए आपको हाथ धोना पड़ा। कोई बात नहीं, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जहां हीरोइन आटा गूंथ रही है और दरवाजा बेल बजती है, घंटी बजती है, तो

बाल पीछे करती है और आटा बाल में लग जाता है, लट में। वो कौन सी फिल्म है अगर याद है तो जरा नाम लिखिएगा। बहरहाल हम आपकी टिप्पणी एक दो और पहुंचा दें आप तक। एक श्रोता ने लिखा है कि आज खयाम साहब के खूबसूरत गीतों से सजा है आज का सुरीला सफर, बहुत आनंद आने वाला है। आज सुबह से उनके गीत बज रहे हैं। असल में खयाम साहब के गीत तो सुन रहे हैं, सुरीला सफर को हमने अब एक अलग रंग दिया है, इसलिए खयाम साहब के साथ साथ उन्हें तो हमने याद किया ही, साथ में और भी तमाम गाने शामिल किए हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। शास्त्रीय और लोक संगीत का मेल उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का अनूठा संतुलन बनाया। कम शोर ज्यादा सुकून उनकी धुनों में, और पश्चिमी या भारी शोर की बजाय ठहराव, खामोशी और रूहानी मिजाज होता था। अब हम आपको चोरी चोरी फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं जिसमें चांदनी है, चांदनी रात है, और साथ में एक पहेली हम पूछ रहे हैं आपसे। इस पहेली को आप देखते हैं कि बूझ पाते हैं कि नहीं। कौन सा एक गीत है जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और ऐसे शब्द हैं, फिर देखा है ये शब्द भी है, नीला अंबर शब्द है। आपको गाने के बोल अगर याद आए तो लिखिए, फिल्म का नाम लिखिए, हीरो हीरोइन कौन थे ये भी आपको ही लिखना है। जरा याद कीजिए, फिर से दोहरा देते हैं हम आपको। जिसमें चांदनी रात है एक गाना, अभी एक गाना सुनवाएंगे चोरी चोरी फिल्म का जिसमें चांदनी रात है, इसके अलावा एक गाना और है जिसमें चांदनी रात है, खुद से शर्माना है और देखा है कई बार, नीला अंबर शब्द है, और आज की यादों की महफिल कार्यक्रम में वो गाना हमने आपको सुनवाया भी था। चलिए सुनते हैं ये गाना।

चोरी चोरी फिल्म का गाना था और इसमें चांदनी है, मधुर चांदनी है, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया है। हमारी पहेली ये थी कि कौन सा ऐसा गीत है इस गाने के अलावा जिसमें चांदनी रात है, इतराना है, खुद से शर्माना है और देखा है नीला अंबर शब्द है। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दे डाला है इसका। चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है, फिल्म दिले नादा, और इसमें हीरो हीरोइन जया प्रदा और राजेश खन्ना होते हैं। और बहुत ज़्यादा तादाद में इसका जवाब आया है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी आपने पहचान लिया। और हमने आपसे पूछा था कि वो हीरोइन है जो आटा लगा है हाथ में, दरवाज़ा खोलने जाती हैं और वो बालों में लग जाता है, लट में उनके आटा लग जाता है। तो हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल हैं, बेसन से सने हुए हाथ से ऋषि कपूर के लिए दरवाज़ा खोलती हैं। क्या बात है भाई, बहुत सारी फिल्में आपने देख रखी हैं और जानकारियाँ बहुत समृद्ध है। हम भी समृद्ध हो रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1955 में बचपन में जब गर्मियों के दिन बस एक तारे पर सबसे पहले खाट पर सोने जाते थे, वो सबसे चटक चमकने वाला तारा रहता था, उसे हम जरूर बचपन में देखते। और जब कोई तारा भागता यानी चलता था तो हम सब भाई बहन मिलकर कहते, देखो तारा भाग रहा है, कुछ देर बाद वो गायब हो जाता था। और कई श्रोताओं ने ये तारा वो तारा गाने के बोल लिखे हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब दिया है, बॉबी, फिल्म बॉबी में डिम्पल होती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, चिट्ठी ने कोई संदेश न जाने कहाँ तुम चले गए। और फिर एक श्रोता ने लिखा है, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है, खुद से शर्माते हुए, ये गीत है फिल्म दिले नादा का, राजेश खन्ना और जया प्रदा। और एक श्रोता ने लिखा, थोड़ी सी बेवफाई, चांदनी रात में एक बार तुम्हें देखा है। मतलब हमारे श्रोताओं ने इस पहेली का जवाब बिल्कुल सही दिया, सही सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में छत पर चारपाई डालकर हम सोते थे, हमारी मम्मी हमें तारों के बारे में बताती थी और बताती थी कि ये सप्तऋषि तारा है, ये ध्रुव तारा है, उनके बारे में मैं एक तारे कैसे बने ये भी बताती थी कि तारे कैसे बने, सुनकर मैं रोमांचित हो जाता था। अब वो दुनिया नहीं रही, अब भी छत है, आंगन है, लेकिन वक्त नहीं है तारों को देखने के लिए, क्योंकि अब एक दुनिया है, वो है स्क्रीन की दुनिया, मोबाइल की दुनिया, कंप्यूटर की दुनिया, उसी में आप सब कुछ देख लेते हैं, तो कुदरत के पास जाने के लिए वक्त ही नहीं है। तो आप ज़रा याद कीजिए और बताइए कि पिछले दिनों आसमान के तारे को आपने कब देखा था, आसमान में निकलते हुए चांद को कब देखा था, कब आप चांद से बतियाए थे। अगर आपको तारीख नहीं आ तो ये बता सकते हैं कि पिछले हफ्ते, पिछले महीने, बताइएगा ईमानदारी से। अब बाजार फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको बूझना है हीरो हीरोइन का नाम और साथ में संगीतकार का नाम भी। इबारत का कौन सा शब्द इसमें आ रहा है?

बाजार फिल्म की ये गजल थी भूपेंद्र की आवाज, बशर नवाज के बोल थे, खयाम का संगीत था। संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही बताया है और ये भी बताया है हमारे श्रोताओं ने। बाजार में नसरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, स्मिता पाटिल और फारूक शेख। और एक श्रोता ने लिखा है कि कल रात ही हमने तारे का नजारा देखा, जब दुकान मंगल कर दी तो मैंने देखा मौसम साफ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि 1981 में फिल्म उमराव जान, 1982 में बाजार और 83 में रजिया सुल्तान, ये तीन ऐसी फिल्में हैं जो फिल्में नहीं बल्कि धुनों का महाकाव्य हैं। और सभी और भी श्रोताओं ने लिखा है फिल्म बाजार का बेहतरीन गीत भूपेंद्र की आवाज बहुत अच्छी लग रही है। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि इस इबारत से याद शब्द से ये गाना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि 16 आने सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, मुझे बनारस से अपने गांव आजमगढ़ जाना होता है, तभी मैं निकलते हुए सूरज को देख पाता हूँ और हमें 2 महीने हो गए निकलते हुए सूरज को देखे हुए। क्या बात है, बड़ी ईमानदारी से आपने अपनी बात कह दी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि करोगी याद तो हर बात याद आएगी, परीक्षा देते समय ये बात क्यों याद नहीं आती है। भाई ठीक से पढ़ेंगे तो याद आएगी ना, तो ध्यान से पढ़िए। जैसे कि गाने ध्यान से सुनते हैं और याद आ जाती है, फिल्म के सीन याद आ जाते हैं, वैसे आपको पाठ्यक्रम की बातें भी याद रहेंगी। एक श्रोता ने लिखा है कि सचमुच ही सावन की बौछार जैसे महसूस कर रहे नजर आ रहे हैं, जो दिल को सुकून पहुंचा रहे हैं, पानी की बूंदें छमछम करती हैं जो इस कार्यक्रम को रंगारंग बना रही हैं, ये बरसात का मौसम बहुत कुछ बयां करती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो मेलोडियस सॉन्ग आज हम सुन

0: रहे हैं वही गीत हम उन दिनों अपने रूफ अपने छत पर घर की छत पर सुना करते थे रेडियो ट्रांजिस्टर के साथ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा लग रहा जानकर। और एक श्रोता ने लिखा है कि चांद तारे तो रोज ही देखते हैं रात को, आकाश में चांद तारे न दिखे तो लगता है कि आज बारिश फिर आएगी। और एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल चांद तो कभी कभी दिख जाता है पर तारे एकदम से नहीं दिखते, बादल बहुत रहते हैं। बचपन वाली बात भी बताइए कि जब तारों को लेकर पहेलियां बुझी जाती थी कि ये कौन सा वाला तारा है, और अगर कोई गलत बताए तो शर्त लगती थी, फिर कुछ पैसों की शर्त लगती थी या फिर कुछ काम करने की शर्त लगती थी कि अगर गलत जवाब दिया तो वो कल फिर कोई काम सौंप दिया जाता था कि ये हिस्सा अलमारी का हिस्सा साफ सफाई करोगे या आंगन बुहारोगे या ये सजा भी होती थी। तो इस तरह की कोई याद आपके जहन में है तो जरूर साझा कीजिए। फिलहाल माया फिल्म का गाना सुनिए और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम।
1: तस्वीर तेरे दिल में जिस दिन

माया फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सलील चौधरी का संगीत था। हमने ये सवाल आपसे पूछा था और एक श्रोता ने लिखा है कि जब छोटे थे तो दीदी के गांव जाया करते थे, छत पर खटिया डालकर तारे गिना करते थे और आपस में चाची की लड़कियां हम सब बहनें मिलकर यही कहती थी कि तूने कितने तारे गिने। आज वो दिन है कि तारे आसमान पर दिखाई नहीं देते, गिने या देख भी ले तो ऐसा लग रहा है कि बरसों बीत गए तारे नजर आए हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि जो पिछला गाना सुनवाया था याद को लेकर और अभी तस्वीर को लेकर ये गाना सुनवाया है। और जब बात तस्वीर की चली है तो तस्वीर से जुड़ा हुआ और कौन सा गाना इस वक्त आपके जहन में गूंज रहा है, हो सकता है आपका वो गाना यहाँ पर हम बजा दें अभी तुरंत। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहले हमारी नानी जी हमेशा तारा देखकर ही शाम का खाना खाती थी, तारे को पहले दर्शन करके, तारीख को पहले दर्शन करके उसका भोग लगाकर खाती थी। भाई चांद को देखकर खाना खाने की परंपरा के बारे में हमें पता है कि जब कोई व्रत त्यौहार होता है, कोई खास त्यौहार जैसे करवा चौथ का व्रत है, तो महिलाएं चांद देखकर खाना खाती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि छोटे छोटे तारों के साथ चांद बड़ा ही अपना लगता है, हमें बहुत सारी बातें हम याद करते हैं चांद से जुड़ी हुई, पर वो हमारी बातों का जवाब नहीं देता। चांद से बहुत सारी बातें पूछते हैं लेकिन वो जवाब नहीं देता, बस महसूस जरूर होता है कि वो हमें सुन रहा है, पर कभी तो एक छोटा ही सही जवाब देना चाहिए ना। हम रोज देखते हैं कि मगर कई दिनों से हमें चांद दिखा ही नहीं, कल ही हम आसमान में देखकर आसमान से पूछ रहे थे कि हमारे चांद को कहाँ छुपा रखा है। भाई चांद से तो सभी बतियाते हैं, बचपन में तो चांद के जो चांद में परछाई दिखती है, लोग कहते थे कि कोई वो बुढ़िया है जो सूत काटती है, और कई गानों में भी, कई कविताओं में भी ये बात आती है। तो चांद से जुड़ी हुई तो बहुत सारी बातें हैं हमारे जहन में, बहुत सारी पहेलियां हैं। आपके जहन में कौन सी बात है वो आप साझा कीजिए। हाँ तो आपने तस्वीर वाला गाना याद किया क्या जो हम सुनवाने जा रहे हैं? कहीं यही गाना तो आपने नहीं याद किया या कोई और गाना हो तो वो भी बताइए। और ये गाना सुनते सुनते जरूर बताइए कि किन कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना। फिल्म है सावन को आने दो।

सावन को आने दो फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने पूछा था किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। अरुण गोविल और जरीना वहाब, हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और तस्वीर से जुड़े हुए गानों के बोल भी लिखे। तस्वीर बनाता हूं तस्वीर नहीं बनती, ये बोल कई श्रोताओं ने लिखा है। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं, और सावन को आने दो फिल्म का नाम था, हमारे श्रोताओं ने बताया है। और फिर एक श्रोता लिख रहे हैं तस्वीर बनाता हूं, फिर एक श्रोता लिख रहे हैं कि दूर गगन की छांव और खुले आसमान के नीचे रहने वाले को ही पता होता है कि तारों को गिनना और अंधेरी रात में चांद देखने का मजा ही अलग होता है, तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तस्वीर तेरे दिल मेरा बहला न सकेगी, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये गाने के बोल यही लिखे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा कि सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, और चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो, चांदनी रात में एक बार तुझे देखा है। मतलब इबारत से जुड़े हुए ये गाने लिख रहे हैं। और एक श्रोता की टिप्पणी है कि आज की इबारत में खयाम के संगीत सा ठहराव है, चांदनी रात की खामोशी, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर और बरसों बाद भी धड़कती हुई एक अधूरी कहानी। एक श्रोता ने लिखा है कि खयाम शब्दों की गहराई को समझते थे, खयाम साहब के जो गाने हमने सुनवाए उसके लिए इन्होंने लिखा है कि उनके गाने सिर्फ संगीत नहीं बल्कि बेहतरीन शायरी और साहित्य का एहसास कराते थे। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और साथ में एक पहेली और शामिल है कि ऐसा ही एक गाना है मुकेश की आवाज में, कौन सा गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है। और शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है, फिल्म का नाम आपको बूझना है। तो एक ये पहली होगी, दूसरी पहली कि कौन है हीरो हीरोइन इस गाने में।

महबूब की मेहती फिल्म का गाना था और हीरो हीरोइन का नाम हमने पूछा था, राजेश खन्ना, लीना चंदावरकर। और एक पहेली और पूछी थी जो ये थी कि मुकेश की आवाज में एक और ऐसा ही गाना है, ऐसा नहीं मतलब जिसमें दीवानापन शब्द आता है, और उसमें फिल्म का नाम हमने पूछा था और गाने के बोल। मुकेश की आवाज में गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, गाने के बोल बताइए फिल्म का नाम। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। हिंट के लिए हमने आपको ये बता दिया। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत दिल को छू लेने वाली है, और ये बात हमारे कई श्रोताओं ने लिखी है। आप सभी से एक गुजारिश है कि आप प्रार्थना करें कि मैं जल्द ही भारत आ सकूं और विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपके दर्शन कर सकूं। क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप विदेश से अपने देश में लौटना चाहते हैं, और ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। ये लिख रहे हैं, आपका सपना पूरा हो, हम शामिल हैं आपकी इस दुआ में। और हमारे और भी श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां हैं जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अब तो जिम्मेदारियों का बोझ है, पहले हम तारे गिनते थे, आसमान साफ होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब छोटे भाई बहन एक साथ खेलते थे तो बोलते थे ये हिस्सा तारे का मेरा है, फिर हम आपस में एक दूसरे से कहते थे कि मेरी तरफ के तारे ज्यादा हैं, फिर करते करते लड़ाई हो जाया करती थी। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि गर्मियों के दिन में गाँव जाने पर जब छत पर सोते थे तो बीच रात में अजिया माँ काकी को उठाने लगती थी, सात डरिया सप्तऋषि दिखाई दे रहा है, भोर होने वाला है। क्या बात है भाई, तब तारों से चांद से ही समय का अनुमान लगा लिया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत में चांदनी रात की खामोशी है, खिड़की के बाहर टिमटिमाता तारा, मेज पर रखी पुरानी तस्वीर बरसों बाद धड़कती है। तो जो मैंने इबारत लिखी है उसकी समीक्षा इन्होंने कर दी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम में दीवानी प्रेयसी, चांद तारों में प्रियतम की तस्वीर देख उसका इंतजार कर रही है, दिल में उठा दर्द आंखों से बयां हो रहा है। कौन सा गाना आपने सोचा था कि अब बजेगा ये, जिसमें इबारत में कौन सा शब्द आता है ये भी बताइएगा। फिल्म शगुन, आपको पहचाननी है आवाज किसकी है, किसकी आवाज में ये गाना है और संगीतकार का नाम भी। संगीतकार और जिनकी आवाज है उनसे एक खास रिश्ता भी है, जरा बताइएगा।

0: शगुन फिल्म का गाना, जगजीत कौर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, लेकिन एक सवाल और पूछा था कि जो संगीतकार हैं और गायिका हैं, इनका खास रिश्ता था, इसके बारे में हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। इसके जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। और एक श्रोता ने लिखा है कि मजबूरी से दिल तोड़कर चले जाने वाले उस सपनों के सौदागर का प्रेम धागा इतना पक्का था कि प्रियतमा के रूह में सदा के लिए फंस गया था। और एक श्रोता ने लिखा है कि ममता जी आज की अधूरी इबारत को पूरा नहीं करेंगी क्या? भाई, ये तो इबारत को पूरा तो आपको करना था, हमने तो आपसे ही पूछा है शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में, कि अंत क्या चाहते हैं आप, कि वो जो दरवाजे की दस्तक हुई थी वो आ जाए या नहीं, तो आप बताइए कि क्या करना है। वैसे दुख का अंत सुख से होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। सुनिए ये प्यासा फिल्म का गाना, बुझिए हीरो हीरोइन का नाम और आवाज किसकी है ये भी बताइएगा।
1: हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
0: दो आवाजें हैं, दोनों के नाम बताइए।

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजें थी, पूछा था हमने, सभी ने सही जवाब दिया है। साहिर लुधियानवी के बोलते सचिन देव बर्मन का संगीत था, फिल्म थी प्यासा और माला सिन्हा गुरुदत्त के अभिनय से सजी थी फिल्म। हमारे श्रोताओं ने यह भी सही बताया। और एक पहली हमने आपसे पूछी थी कि मेरे दीवानेपन की कोई दवा नहीं महबूब की मेहंदी, और पूछा था कि एक और गाना है जिसमें दीवानापन शब्द आता है, सभी ने सही जवाब दिया, यहूदी फिल्म ये मेरा दीवानापन है, मुकेश की आवाज। और हमारे कई श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत में जो कहानी बुनी बहुत पसंद आई, और एक श्रोता ने लिखा है कि ये जो आज की कहानी थी अगली बार जब आइएगा तो ऐसी ही कोई कहानी लेकर आइएगा। क्या बात है भाई, लेकिन कहानी का अंत आप सबने बताया नहीं, हमने पिछली दफा भी कहानी का अंत पूछा था, आप सभी ने बताया था वही अंत हमने किया था, लेकिन आज हमारे श्रोता हम ही से पूछ रहे हैं, तो चलिए अंत फिर अंत में जो लाइन लिखी है उसी अंत से उसी लाइन से हमें समापन करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है कि ये रचना केवल बिछड़ने का रोना नहीं है बल्कि ये एहसास कराती है कि सच्चा प्रेम पाना या खोना नहीं बल्कि किसी को अपनी रूह में हमेशा के लिए संजो लेना है। प्रेम का पैगाम कबूल हो गया है तो दोबारा भेजने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए अब जब असली प्रेम सच्चा प्रेम होता है तो दुख दर्द कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन इबारत का अंत यही था, तो इसी गाने से अंत करते हैं। फिल्म का नाम जरा बता दीजिए, क्या है फिल्म का नाम, और गीतकार संगीतकार का नाम पता है तो वो भी बताइए।

शहनाई फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज़ थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था और यही था प्रोग्राम का आखिरी गाना। सुरीला सफर का ये सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत।

नमस्कार। सारी दुनिया में 19 अगस्त का दिन विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए आपको इसका इतिहास बताएं। दरअसल विश्व फोटोग्राफी दिवस का जो ताल्लुक है वो है डगेरोटाइप नाम की एक फोटोग्राफी प्रोसेस से, जिसका आविष्कार किया था फ्रांस के लुईस डगेरो और जोसेफ निकोफोन ने 1837 में। फिर हुआ ये कि 9 जनवरी 1839 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंसेज ने डगेरोटाइप प्रोसेस की उद्घोषणा की और

19 अगस्त 1839 के दिन फ्रांस की सरकार ने इसका पेटेंट खरीद लिया और इसे सारी दुनिया के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवा दिया। तो इस तरह से ये मानना चाहिए कि 19 अगस्त के दिन फोटोग्राफी की सुविधा सारी दुनिया के लिए उपलब्ध हो गई थी और इसलिए विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जरा सोचिए कि वो जमाना कैसा था जब फोटोग्राफी बड़ा ही महंगा शौक होता था और बहुत ही रईस लोग अपने फोटो खिंचवा सकते थे।

फोटोग्राफी ने विज्ञान की प्रगति के साथ बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक जमाना था जब फोटोग्राफी के लिए फिल्म रोल की जरूरत पड़ती थी और एक निश्चित संख्या में फोटो क्लिक करने के बाद ही उस फिल्म को धुलने भेज दिया जाता था। जब वो डेवलप होके और प्रिंट होके आती थी तब हमें ये देखने मिलता था कि तस्वीरें किस तरह से आई हैं। इनमें से कई तस्वीरें बेकार भी हो जाती थी। जाहिर है कि फिल्म रोल वाले वो दिन बड़े ही सुहावने थे और बहुत ज्यादा जिज्ञासा और बेकरारी से भरे हुए थे, क्योंकि फिल्म रोल के खत्म होने का इंतजार करना पड़ता था। आज भी वो काली सफेद तस्वीरें पुराने जमाने की यादों को हमारे सामने ताजा कर देती हैं।

आगे चलकर जमाना बदल गया और अब तो वो जमाना आ गया है जब फोटोग्राफी के लिए लोग कैमरे से ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। जरा सोचिए कि एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मोबाइल आपके लिए कम्युनिकेशन मीडियम का काम भी करता है और दूसरी तरफ वो आपके लिए कैमरे का काम भी करता है। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण या आम पल को आप तस्वीरों में बांध सकते हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तस्वीरों का जो महत्व था वो बहुत कम हो गया, क्योंकि तस्वीरें बड़ी आम हो गई। ये तस्वीर खींची और ये सोशल मीडिया पर चढ़ा दी, या फिर मोबाइल कम्युनिकेशन मीडियम के जरिए आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज दी और उन्होंने फौरन देख ली और वो खुश भी हो गए। यानी चीजें आसान हो गईं तो उनका महत्व कम हो गया, पर फिर भी आज जिंदगी के कुछ पल तस्वीरों में कैद हो जाते हैं और हम विकल होकर उन पलों को याद किया करते हैं।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
3: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
6: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
5: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: वाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधा कृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता, मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। आज नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में कहा

0: कि देश 6 से 8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है।
1: इन्वेस्टमेंट स्टोरी
2: हमारी विकास यात्रा में निवेश की अहम भूमिका रही है। आज हम हर साल करीब 130 अरब डॉलर का सार्वजनिक निवेश कर रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में $1 के निवेश पर करीब $3.6 की आर्थिक गतिविधि होती है। इसके साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और ये सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
1: बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ रीच एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत के पास अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पिछले 10 वर्षों में करीब 65,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया गया है, जबकि हवाई अड्डों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि देश में रेल नेटवर्क में व्यापक सुधार हुआ है।
2: आज देश का 99.6% रेलवे नेटवर्क विद्युतीकृत हो चुका है। पिछले एक दशक में 38,000 किलोमीटर नई रेल लाइनें जोड़ी गई हैं और 162 सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू की गई हैं।
0: इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी साझा विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है।
3: उत्तर प्रदेश आज भारत की top 3 इकोनॉमी में शामिल होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की है। 96 लाख से अधिक MSME यूनिट्स, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22,000 से अधिक स्टार्टअप आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत और जापान सहयोग महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़े हैं।
4: जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप नहीं है, ये डेवलपमेंट की पार्टनरशिप है, ये डिप्लोमेसी की पार्टनरशिप है और ये डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश आपको केवल इन्वेस्टर नहीं मानेगा, आपको डेवलपमेंट पार्टनर मानेगा, क्योंकि हम मानते हैं इन्वेस्टमेंट का सर्वोत्तम रूप है जो कैपिटल के साथ साथ कैपेबिलिटी भी लाती है, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट लाता है और प्रॉफिट के साथ प्रॉस्पेरिटी भी लाता है और रेवेन्यू से ज्यादा रिलेशन मजबूत करता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरी कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने, रणनीतिक विश्वास और सहयोग बढ़ाने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। श्री कोइजुमी ने आज मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4थी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में भाग लेने के लिए आज प्रतिनिधिमंडल के साथ सिंगापुर पहुंच गईं। बैठक कल होगी। प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
5: इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण से मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने सिंगापुर में भारतीय उच्चायोग के नए चांसलरी परिसर की आधारशिला भी रखी। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी। ये दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग का एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय मंच है। इसके अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, संपर्क, डिजिटल क्षेत्र, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कौशल विकास तथा सतत विकास सहित 6 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाती है और नए अवसर तलाशे जाते हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैठक में भारत सिंगापुर आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नए अवसरों पर चर्चा होगी। सकलैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्न पत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए स्थायी तंत्र शामिल हो। NEET UG 2026 पेपर लीक से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे खिलाफ नामा दाखिल करें जिसमें ये बताया जाए कि राधा कृष्ण समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश में एक मजबूत

0: परीक्षा संस्थान हो जो विशेषज्ञता को बनाए रखने और तकनीकी परिवर्तनों के अनुकूल होने में सक्षम हो। नीट यूजी 2024 प्रश्न पत्र लीक विवाद के बाद पूर्व आईएसआरओ अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में के राधाकृष्णन समिति का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। न्यायालय ने गृह मंत्रालय और आयोग को नोटिस जारी किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहारनपुर तथा दिल्ली में 10 परिसरों पर छापेमारी की है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार इस महीने की 26 तारीख को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आधिकारिक पेंशन पत्र सौंपेगी। सरकार ने बताया है कि पेंशन की राशि अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिलाओं के खातों में जमा होना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना शुरू होने के मात्र 18 दिनों में ही लगभग 800,000 महिलाओं ने दिल्ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर पंजीकरण कराया, जबकि इसके बाद 500,000 से अधिक आवेदन जमा किए गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने आज विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विधानसभा के सभी सदस्यों को नया वाहन चालक और सहायक दिया जाएगा। इसके अलावा ईंधन खर्च के लिए हर महीने 75,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तरी चेन्नई में 300 करोड़ रुपए की लागत से 400 बिस्तरों वाला नया अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज के लिए बीमा राशि 500,000 रुपए से बढ़ाकर 25,00,000 रुपए करने की भी घोषणा की। पंजाब पुलिस ने नवनियुक्त रक्षा कर्मियों के सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। ये पोर्टल रक्षा मंत्रालय से जुड़ा है, जो नए भर्ती हुए कर्मियों के दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों का सत्यापन करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तरी छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, विदर्भ, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरलम और माहे में भी इसी तरह का मौसम रह सकता है। भुवनेश्वर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई हिस्सों में अब भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
1: उड़ीसा में बाढ़ का संकट अभी भी भारी मुश्किलें पैदा कर रहा है, खासकर भद्रक जिले में, जहां बैतरणी और सालंदी नदियों के उफान के कारण बड़े इलाके जलमग्न हैं। वासुदेवपुर, तिहिड़ी, धामनगर, भंडारी पोखरी और चांदबली ब्लॉक के गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज 297 स्कूल और 395 आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स ओड्राफ के जवानों ने केंद्रापड़ा जिले के कुलसाही गाँव में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 4 दिन से 230 छात्रों को बचाया है। आईएमडी ने शुक्रवार से रविवार तक उड़ीसा में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में कल देर रात हुई तेज वर्षा से धारचूला तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: धारचूला क्षेत्र में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण कुलागाड़ में बेली ब्रिज ध्वस्त होने से आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाला सड़क संपर्क भी बाधित हो गया है। मार्ग बंद होने से दारमा, चौदास और व्यास घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय और धारचूला क्षेत्र से कट गया है। प्रशासन ने पुल को जल्द बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। बीआरओ के अनुसार आज शाम तक डायवर्जन रूट का कार्य पूरा होने की उम्मीद है। उधर

0: देश के कई हिस्सों में बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक ग्रामीण सड़कें बाधित हैं। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी करी है। वहीं टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एहतियात के तौर पर यात्रा के लिए नए पंजीकरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट।
2: श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहले से पंजीकृत और वैध RFID कार्ड वाले श्रद्धालुओं को प्रशासन के निर्देशों के अनुसार यात्रा की अनुमति दी जा रही है। श्रद्धालुओं से श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। नए पंजीकरण पर फैसला मौसम और सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा का 455 श्रद्धालुओं वाला तीसरा जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पुंछ के राजपुरा गांव के लिए रवाना हुआ। इस बीच मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मीनाक्षी।
1: भारत ने गोल में दो मैचों की क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के पहले मैच में आज श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। भारत ने श्रीलंका को जीत के लिए 372 रन का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 206 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में नीदरलैंड्स में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। भारत ने दो मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स स्पर्धा में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मकाऊ की जोड़ी को उन्होंने हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का सामना चीन की जोड़ी से होगा। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी वॉकओवर मिलने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता पुलिस ने न्यू मार्केट इलाके में मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित एक होटल में लगी आग में 9 लोगों की मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। मृतकों में 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। 16 घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता अग्नि दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग 0.5% गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 365 अंक गिरकर 76,871 पर और निफ्टी 110 अंक गिरकर 24,045 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत सतत वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 130 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG पेपर लीक के बाद परीक्षा सुधार पर राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार से जवाब मांगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। भारत ने श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच 165 रन से जीता। मानव सुथार ने 6 विकेट लिए। और FIH हॉकी विश्व कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। ये खानदान फिल्म का गाना है। लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लालपुरी के बोल खयाम का संगीत है।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: दिल अपना और प्रीत पराई इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र की रचना थी, शंकर जयकिशन की धुन थी। फिल्म है 11,000 लड़कियां, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता का संगीत है।

11,000 लड़कियां इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, एन दत्ता का संगीत था। सदाबहार नगमे प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं धूल का फूल फिल्म का गाना सुधा मल्होत्रा की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोल, एन दत्ता का संगीत है। सुनिए ये प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। अगला कार्यक्रम है सखी सहेली, बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
3: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
4: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
3: हाँ।
4: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
3: हाँ।
4: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
3: हाँ? पता नहीं।
4: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
5: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
6: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर।

0: youtheexperedsnagaur@gmail.com पर और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: चंचल वर्मा का नमस्कार। और दीपा बैठी है मेरे सामने, कैसी हो दीपा?
2: बिल्कुल ठीक। और हमारे सभी साथियों को, यानी हमारे से
1: हेल्दी नमस्कार।
2: हाँ बिल्कुल, हेल्दी नमस्कार देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हम लगातार ना उस प्रेरणाओं में रहें, इंस्पिरेशन में रहें।
1: हाँ।
2: ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हम आपको दे रहे हैं, आप भी हमें देते हैं
1: जी।
2: हमारे साथी देते हैं जो हमें सुनते हैं, उनकी तरफ से भी। और अगर कभी कहीं कोई भूल चूक हो जाए, और इन दिनों ये दिन ऐसे चल रहे हैं, अगर कहीं थोड़ा सा भी आलस आ रहा हो ना, तो फिर से ऐसा लगता है कि हाँ हमारे किसी एक दोस्त ने कहा है अपनी सेहत का ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल
2: बिल्कुल, लगातार इस बात पर अपना ध्यान रहे कि अपनी सेहत का और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उसके साथ कोई हल्का फुल्का, उसे कहीं हल्के में ना ले,
1: कोई समझौता नहीं करना है। और आपके कहने से पहले ही मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि हेल्दी नमस्कार आएगा, इसीलिए बहुत उत्सुकतावश
2: हाँ,
1: मैंने कह दिया।
2: तो एक बार फिर से अपने साथियों को, सखियों को और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: चलिए और बता दें कि आज किस विषय पर हम बात करेंगे। देखो, सुंदर दिखने का शौक अगर सबको होता है तो सुंदर फोटो आए ये भी शौक सबको होता है।
2: हाँ बिल्कुल।
1: और कई बार ऐसा होता है ना कि हम यूं ही बैठे हैं, किसी ने फोटो खींचने का अंदाज उसका इतना अच्छा था ना, तो वो फोटो देखकर हमें लगता है कि उस दिन तो मैंने कोई तैयार भी नहीं हुए थे, हम बाल भी नहीं बनाए थे। और कई बार हम जिस जगह पर बैठे होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत नहीं होती, लेकिन ये फोटोग्राफी का कमाल है कि आपकी जो छवि है वो उभर कर इतनी सुंदर सामने आती है कि लगता है कि तारीफ कर दो जिसने फोटो खींची है।
2: ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जो सुनहरे पल कैद हो जाते हैं हमेशा के लिए, और फिर जब कुछ सालों के बाद हम एल्बम खोल के देखते हैं, वो वक्त याद करते हैं, तो भाई ये आविष्कार कितना ऐतिहासिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। और बहुत सारे संदेश इस विश्व फोटोग्राफी दिवस के लिए आए हैं।
1: और एक समय था ना कि कई बार जब कैमरे से फोटो क्लिक होती थी तो हम इंतजार करते थे कि कब वो पूरी रील पहले खींची जाएगी, फिर उसे धुलाई पे जाएगी।
2: हाँ।
1: और फोटो जब डेवलप होके आएंगे तब हम उन्हें देखेंगे। लेकिन अभी जिस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में, जिसे हम मोबाइल के नाम से जानते हैं, आपने जैसे ही क्लिक किया आपके हाथ में फोटो होता है
2: जी।
1: अगर आप किसी को दिखाना चाहते हैं तो आपके पास उसे भेजने के, यानी कि एक दूसरे के साथ शेयर करने के ऑप्शन भी होते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अब धुलाई करवाएंगे इतना इंतजार ही नहीं करना होता, और तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप तुरंत जाकर प्रिंट भी ले सकते हैं उसका, अगर आपको एक हार्ड कॉपी यानी कि अपने पास में रखनी है। आपको कई बार लगता है कि कहीं कोई डिलीट ना हो जाए, तो उसे हमेशा के लिए अगर सुरक्षित रखना है तो बहुत लंबा समय इंतजार नहीं करना है।
2: बिल्कुल सही कहा। और जो डिलीट वाली बात कही है ना आपने, दिल में कहीं कुछ ऐसी भावनाएं आ जाती हैं कभी कभी चंचल, जो हमें डिलीट कर देनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: है ना,
1: यानी कि जो नफरत की, क्रोध की भावनाएं हैं उन्हें भुलाकर हमेशा अपने दिल में एक इंसानियत की, जो मानवता की भावना है, दूसरों का भला करने की भावना है, उसे हम सहेज कर रख सकते हैं।
2: बिल्कुल सही, ताकि हम आगे जो जीवन में चलें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, यानी सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, और खुशियों को और मन की शांति और सुकून को प्राथमिकता देते हुए आगे निकलते चलें जीवन में। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए देखिए, आज है विश्व मानवता दिवस,
1: और यही हमने शब्द लिया है जब हम बात करेंगे कि शब्द हमारे और विचार आपके, तो मानवता को लेकर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें जरूर लिखकर भेजें। तो मानवतावादी दिवस के बारे में भी बात होगी, और मानवता के बारे में हमारे सुनने वालों की सोच क्या है, इस बारे में ही बात होगी।
2: और साड़ियां पहनना कैसा लगता है, ये विचार अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या क्या पसंद है आपको साड़ी पहनना?
1: भाई महिलाओं को साड़ी पहनना पसंद ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, और खास मौके जब आते हैं ना। वैसे हम जो भी कैजुअल कपड़े जो होते हैं हम पहन लेते हैं, कई बार सलवार सूट पहनते हैं, कई बार हम जीन्स टॉप भी पहनते हैं, कहते हैं कि वेस्टर्न आउटफिट कभी करने का मन करता है, लेकिन जब कोई खास मौका हो, किसी से मिलने जाना है, घर पे कोई उत्सव है, कोई त्योहार है, या कभी मन में लगाना कि नहीं आज कुछ मन में खास बनने का अवसर है, तो उस वक्त सबसे पहला परिधान जो हमारे जहन में आता है वो होता है साड़ी।
2: बिल्कुल।
1: और इतने सारे प्रकार है ना साड़ी के कि कई बार चुनना मुश्किल होता है, लेकिन अलग अलग मौके के हिसाब से साड़ियां चुनी
2: जा सकती है, जैसे कि सावन के महीने में लहरिया साड़ी।
1: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और लहरिया साड़ी की ही आज हम बात करेंगे। लहरिया साड़ी राजस्थान में तो बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन आजकल हर जगह ये पहुंच चुकी है, तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं इसके बारे में जरूर हमें बताएं कि हमारी सखियां किस तरह से लहरिया पहनती हैं, या उनके वार्डरोब में साड़ी है कि नहीं
2: है या नहीं। और जिस दिन आपको साड़ी पहन के कहीं जाना है तो फिर घर में एकदम अफरा तफरी होती है ना कि भाई मुझे जाना है, अब हम जल्दी नहीं आ पाएंगे, तो ऐसे में कुछ झटपट बना के रख दें, खिला दें, घर में जो पीछे

0: परिवार में बच्चे रह
1: हाँ
0: गए हैं या पतिदेव रह गए हैं या कोई और परिवार के सदस्य, तो क्या झटपट बनाया जा सकता है? कुछ संदेश आए हैं, हम चाहते हैं आप और कुछ रेसिपीज
1: बिल्कुल,
0: भेजिए।
1: हमारी सखियां बड़ी होशियार हैं, वो इस तैयारी में होती है कि भाई आज जल्दी से कुछ बनाना है, तो उनके पास, उनके पिटारे में झटपट वाले कौन से व्यंजन होते हैं, खासतौर पर जो स्नैक्स के आइटम होते हैं ना, तो वो हमें लिखकर भेजें। तब तक एक गाना सुन लेते हैं सबके साथ
0: चलिए
1: में।

0: दीपा, हम भी तो यही कह रहे हैं कि ये जो समय है, ये तनहा ना बीत जाए, इसमें सबको साथ लेकर हमें चलना है, और कई बार अपनी यादों को भी साथ संजोकर चलना होता है। फोटोज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जो हमारी तस्वीरें होती हैं पुरानी, वो
1: जी
0: हमें उन यादों से जोड़े रखती हैं, हमारे जो मिलने जुलने वाले हैं उनसे भी जोड़े रखती हैं। तो कई बार मन में आता है ना कि फोटोग्राफी क्या चीज है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि फोटोग्राफी रोशनी का इस्तेमाल करके चित्र बनाने की एक कला होती है, और 19 अगस्त का दिन होता है, इसे विश्व स्तर पर फोटोग्राफी के रूप में हम मना रहे हैं आज भी, और विविध स्तर और रचनात्मक तरीकों से फोटोग्राफी की कला और शिल्प का इस दिन सम्मान किया जाता है।
1: अगर इसके इतिहास में थोड़ा जाएं हम चंचल, तो शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रक्रियाओं में

0: डेगोरियोटिप ये
1: हाँ
0: आविष्कार किया गया था,
1: बिल्कुल
0: जिसे 19 अगस्त 1839 में फ्रांसीसी सरकार ने दुनिया को उपहार के रूप में ये घोषित किया था।
1: और ये उपहार देखो ना कितना बहुत काम की चीज बन गई हमारे।
0: बिल्कुल, तो ये लुई और जोसेफ निप्स इन दोनों ने मिलके इस टाइप को
1: ये जो आविष्कार है,
0: हाँ
1: हाँ
0: ये जो आविष्कार है इसको विकसित किया था और इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ, जिसने हमारी और आपकी छवियों को कैप्चर करने और उससे सुरक्षित और हमेशा संरक्षित रखने के लिए आप यूं कहें कि एक क्रांतिकारी बदलाव आ गया है ना
1: बिल्कुल सही कहा।
0: हम सबके ही जीवन में।
1: और इसी की याद में तो आज का दिन हम मना रहे हैं, और ये दिन जो इस आविष्कार का सम्मान करता है, फोटोग्राफी को इस तरह से मतलब पेश करता है, और सदियों में ये विकसित हुआ जिसने कला, विज्ञान, पत्रकारिता, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति सभी को प्रभावित किया है। फोटोग्राफी की दुनिया से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां वो जो अपना जुनून है, अपना शौक है, उसे साझा भी करते हैं, और जो उनका काम है इसके माध्यम से सबकी वाहवाही भी बटोरते हैं इसे दिखाकर, है ना।
0: अब अगर कभी पूछा जाए कि एक तस्वीर क्या है, तो एक तस्वीर किसी स्थान या अनुभव या विचार या किसी समय को जब कैद कर लिया जाता है, उस क्षण को,
1: जी
0: उसे एक हम तस्वीर कहते हैं।
1: बिल्कुल
0: भाई अगर कभी पूछ लिया किसी ने ये सवाल, तो हम कम से कम परिभाषा तो दे सकते हैं, है ना।
1: जी सही कहा दीपा आपने।
0: और फोटोग्राफी के रूपों का सम्मान करते हुए हर साल एक वैकल्पिक थीम के साथ इस दिन को मनाया जाता है। तो इस साल का जो थीम है वो है घर, यानी हमारा हाउस होम जो हम कहते हैं। तो ये थीम उस स्थान या उस एहसास को दर्शाती है जिसे हम अपना घर मानते हैं, जहां आप रहते हैं, या आपका कोई आपका गृह, आपका देश, या वो स्थान जिस जहां आपको अपना सा लगे, एक सुकून भरा महसूस हो, तो ये थीम है। तो आप घर को लेकर के तस्वीरें अलग अलग खींच सकते हैं और सोशल मीडिया पर अलग अलग जगह पर आज के दिन उस फोटोग्राफ को शेयर कर सकते हैं।
1: और देखो हमारे सुनने वाले लिख रहे हैं कि ये अद्भुत कला बीते हुए पलों को, भावनाओं को, यादों को हमेशा के लिए सहेज लेती है। अच्छी तस्वीर केवल एक दृश्य नहीं दिखाती, बल्कि अपने भीतर एक पूरी कहानी, एहसास और पूरा समय समेटे हुए रहती है। फोटोग्राफी ने दुनिया को देखने और समझने का नजरिया भी बदला है। तस्वीरें समय को रोक नहीं सकती, लेकिन बीते हुए समय को हमारी यादों में हमेशा के लिए जीवित रख सकती हैं, और ये बहुत अच्छी बात लिख रही
0: हैं। बिल्कुल। और एक संदेश और आया है बड़ा प्यारा सा। ये संदेश में कहती है हमारी सखी कि सच कभी कभी हमारा ऐसे ही खींचा गया फोटो इतना अच्छा होता है कि उसके सामने बहुत ही बन ठन के खींचे गए फोटो बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं। मतलब हम कभी कभी बिल्कुल तैयार होकर के खड़े होते हैं कि हाँ हमारा क्लिक करना चाहिए फोटो, लेकिन एक कैजुअल वाले भी जो पिक्चर है फोटो खींची हुई वो बहुत सुंदर लगती है उसके सामने।
1: और एक संदेश में बात लिखी गई है कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, ये बिना बोले सब कुछ कह देती हैं, और अपने नए दिन और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश कहता है कि पहले के समय में हमारे देश में लोगों के पास कैमरे नहीं होते थे, कैमरा बहुत महंगा हुआ करता था,
1: हाँ।
0: उसकी रील भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी वाली होती थी, और फोटो खिंचवाने के बाद धुलवाने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और तब जाकर के फोटो मिलते थे। अच्छी आई या बुरी वो तो बाद की बात थी, फिर कलर फोटो खिंचने लगी और पहले स्टूडियो में जाना पड़ता था फोटो खिंचवाने के लिए। आज के समय में मोबाइल से ही फोटो खींचे जा सकते हैं, किसी के पास भेज दो, कोई टाइम नहीं लगता। अब तो लोगों के पास मोबाइल है, कैमरे बहुत कम लोगों के पास लोग भी बहुत कम रखने लगे हैं, और वो भी उन्हें जिन्हें कैमरे का शौक है, या वो जो कि इसको प्रोफेशनली इसको
1: हाँ।
0: लेते हैं वो लोगों के पास कैमरे होते हैं,
1: लेकिन उन कैमरों में भी आजकल ये एक सुविधा आने लगी है कि आप तुरंत उसको डेवलप करा सकते हैं। पहले जो कहते हैं कि इंतजार करना पड़ता था ना,
0: हाँ जी।
1: जो इंतजार की घड़ियां हैं वो लोगों की कम हो गई हैं। कई बार हम शादी में भी देखते हैं ना, फोटोग्राफर जब तस्वीर खींचते हैं तो 4-5 फोटो एक साथ में खींच लेते हैं और फिर आपसे सेलेक्ट करवा लेते हैं कि किस फोटो को फाइनल करके रखा जाए।
0: बिल्कुल।
1: कई बार तो कि आंखें बंद हो गई, कहीं आप यहां वहां देख रहे होते हैं, तो वो फोटो पहले ऐसा ये सुविधा हमारे पास नहीं थी। अगर आपकी तस्वीर में आंखें आपने बंद कर ली, झपका दी, या आप कहीं इशारे से कुछ कह रहे हैं, आपका हाथ जहां का तहां है वही रह जाएगा।
0: हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। और आज के दिन क्या क्या होता है, तो आज के दिन के पे फोटोग्राफी की कला और शिल्प का सम्मान किया जाता है। चंचल दुनिया भर के फोटोग्राफर तरह तरह के प्रदर्शनियों में भाग लेकर के अपने काम को चित्रित करते हैं, फिर अलग अलग वर्कशॉप्स होती हैं, कई जगह पर ऐसा होता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं।

0: इसमें फोटोग्राफी के बारे में जानकारी दी जाती है, फिर फोटो वॉक करने वाले और टूर फोटोग्राफी के शौकीन को पास आसपास के स्थानीय लोगों का पता लगाने और उन्हें कैमरे में कैद करने के लिए भी एक साथ ले जाया जाता है। तो ऐसा भी होता है कि आपको फोटोग्राफ खींचने ऐसे छोटे से गांव, कोई ऐसे जगह हो, ट्राइबल एरिया कोई हो,
1: हाँ
0: तो वहां पे लेके जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये विशेष समुदाय, इनके इनका फोटोग्राफ खींचा जाए और फिर इन्हें अलग-अलग जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और साझा की जाती है वो सारी तस्वीरें।
1: हमारे एक श्रोता का संदेश है कि पहले तस्वीरें कैमरे में कैद होती थी, पर आजकल इसकी जगह मोबाइल ने ले ली है और डिजिटल रूप में ये होने लगी हैं। तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती हैं। तस्वीरों का होना हमारे अपनों को हमारे नजदीक रखता है, यादों से जोड़े रखता है। तस्वीर हमारे लिए खास थी और हमेशा खास ही रहेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि तस्वीरें बीते हुए कल और इतिहास को सुरक्षित रखती हैं। तस्वीरों की कोई भाषा नहीं होती, बिना बोले सब कुछ कह देती हैं। और ये दिन नए और पुराने फोटोग्राफरों को अपनी कला दिखाने का मौका देता है।
1: हमारे एक संदेश में लिखा गया है कि एक समय था जब राजा रजवाड़े या बहुत धनाढ्य परिवार के लोग होते थे, उनके पास कैमरा होता था या फोटो का चलन उस समय ज्यादा था। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया, वैसे वैसे सुविधाएं भी सुलभ होती गईं, जैसे सामान्य मानवीय तक फोटोग्राफी का जमाना था। पर्यटन, धार्मिक स्थल और सभी जगह फोटोग्राफी होने लगी और ये एक व्यवसाय था। जब लोग अपनी तस्वीरों को घर पर पोस्ट के द्वारा भेजा करते थे, ऐसे वक्त ने लोगों के साथ कैमरों को भी रखा और आज मोबाइल के माध्यम से जो चीज़ कभी दुर्लभ थी वो सहज हो गई है। तो चलिए अभी गीत सुन लें।
0: चलिए।

0: साथ ही आना, और मैं भी तुम्हें बुला रही हूँ दीपा सखी, बस आना क्योंकि बहुत सारे संदेश हैं, इन्हें भी पढ़कर सुनाना। तो पहले एक संदेश मैं ही पढ़कर सुना देती हूँ।
1: चलिए
0: और
1: सुनाइए।
0: फोटोग्राफी की हम बात कर रहे थे ना, इस पर अपना एक किस्सा हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कॉलेज के दिनों की उन्होंने बात लिखी है। कॉलेज में उन्हें एक कार्ड बनवाना था, उन्हें फोटो की जरूरत थी। तो शहर के पास, आगे लिखते हैं कि शहर के पास ही हमारी दुकान थी, उसके पास में एक फोटो स्टूडियो था। उसमें दोनों पिता पुत्र काम किया करते थे, लेकिन उस दिन लड़के के पिता दुकान पर नहीं आए थे। और उसी दिन क्योंकि मुझे फोटो की जरूरत थी और उनके लड़के के साथ मेरी आपस में बनती नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोला कि मैं तुम्हारी तस्वीर अच्छी बना दूंगा। लेकिन मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि शायद भूतकाल में उनके साथ ऐसी कुछ घटना हो चुकी थी उसके साथ में। लेकिन उस लड़के ने विश्वास दिलाया कि वो फोटो अच्छी लेगा, तो डरते डरते उसकी बात पर विश्वास करके वो तैयार हो गए फोटो खिंचवाने के लिए। और जब वो तस्वीर ले रहा था लड़का, तो मैं बहुत डरा हुआ था, घबराहट भी चेहरे पर थी, और मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। लेकिन कोई अनहोनी नहीं हुई, उसने तस्वीर मेरी बहुत अच्छी बनाकर दे दी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है, जब भी मैं उस तस्वीर को देखता हूँ तो उसमें मेरा चेहरा बहुत डरा हुआ और घबराया हुआ दिखाई देता है।
1: देखिए कितने मजेदार उनकी यादें हैं ना
0: जी
1: तस्वीरों को लेके। और 1962 की एक याद हमारे श्रोता भाई यहाँ पे साझा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया की शादी का फोटो एल्बम बनाने पहली बार फोटोग्राफर को बुलाया गया था साल 1962 में।
0: जी
1: उन दिनों ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था, हर जगह हर एक फोटो खींचने के बाद फ्लैश का लैंप बदलना पड़ता था। और उन दिनों मेरा बचपना था, तो

0: हर तस्वीर में नजर आए,
1: हाँ,
0: और
1: बिल्कुल
0: कहीं ना कहीं से वो झांकता हुआ चेहरा उनका नजर आ ही जाता है। पुराने एल्बम जब भी हम खोलते हैं ना, तो एक ना एक बच्चा ऐसा नजर आएगा जो हर फोटो में कहीं ऊपर से कहीं नीचे से अगल बगल से, या और जब तक फोटो उन्हें हटाया जाए वो फोटो क्लिक हो चुकी होती थी, वो एंड टाइम पर इस तरह से तस्वीर में घुस जाते थे।
1: और ये देखो एक और मजेदार संदेश आया है, हमारी सखी कह रही है कि फोटो में तो एक ऐसी ताकत है कि सिर्फ फोटो देखकर ही 18 साल पहले मेरी शादी हुई थी। वो कैसे? उधर से फोटो कागज में लपेट कर आई और इधर से हमने कागज में लपेट के दे दी फोटो और बस हो गई शादी। क्या बात है भाई, ये जमाना कितना सुलभ और सुंदर और एकदम सादा सा था, है ना।
0: बातें आगे बढ़ाएंगे, पहले एक गीत सुन लेते
1: चलिए।
0: हैं।

0: सखी सहेली कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: बारे में की और आज एक और दिवस हम मना रहे हैं। 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, और ये उन लोगों की याद में मनाया जाता है दीपा, जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट जो भी आए हैं उनमें या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण और अपने दूसरों की सहायता के कारण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया।
6: जी, और इसके पीछे अगर इतिहास जाने तो वो ये था कि 19 अगस्त 2003 को संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर हमला हुआ जिसमें करीब 22 मानवीय सहायता कर्मी मारे गए, और जिनमें संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि सर्जियो वियरा डिमेलो भी शामिल थे। तो साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस इसके रूप में नामित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, और फिर ये प्रस्ताव स्वीडन ने रखा था।
0: और जिस दुर्घटना की या जिस हादसे की आप बात कर रही हैं, ऐसा माना जाता है कि अब तक जितनी भी त्रासदी हुई उनमें ये बहुत खतरनाक थी, और करीब 4,000 से भी अधिक राहत कर्मी ने इसमें जान गंवाई थी, उनको निशाना बनाया गया था। और कि जो जानलेवा हमले हुए थे इसमें न जाने कितने घायल हुए, कितनों ने अपनी जान दे दी, और कुछ गिरफ्तार भी हुए, कुछ का अपहरण भी हुआ। इस तरह की घटनाएं ना हो, मानवता लोगों में बनी रहे, इसीलिए ऐसे दिन मनाए जाते हैं ताकि जो भी अशांति संघर्ष है उससे अलग किया जा सके खुद को और एक शांति की स्थापना की जा सके।
6: बिल्कुल सही कहा। और ये देखिए ना, ये विश्व भर में फैली अशांति और संघर्ष में लाखों लोग अपने सरजमी से भी अलग हो जाते हैं और किसी अन्य जगह पर उन्हें स्थापित किया जाता है, तो ऐसे लोगों की संख्या आज ये अनुमान किया जाता है कि 6.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे लोगों को एक जगह दे दी जाए, उनके भी एक ठिकाना उनका हो जाए और उनका जो जीवन यापन है बराबर चलते जाए, तो ये भी एक उद्देश्य है मानवतावादी दिवस का।
0: और इस पर बहुत सारे संदेश भी हमें मिल रहे हैं। मानवता, जो हमने एक शब्द दिया था कि शब्द हमारा है, विचार हमारे श्रोताओं को लेकर भेजने हैं, तो मानवता के बारे में जो विचार उन्होंने लेकर भेजे हैं, मानवता जो मानव से जुड़ी उसकी क्रियाशीलता को दर्शाती है कि वो दूसरों के प्रति कैसा भाव रखता है। मानवता के मूल में क्षमा, सहिष्णुता, दया, प्रेम, ये सभी भाव हैं जो आदमी का आदमी के प्रति उसकी सोच को दिखाता है। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ हमारे कुछ कर्तव्य हैं, उन सब में मानवता का भाव रखना सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी

0: संवेदनाएं हमारे परोपकार मानवता से जुड़े हुए विषय हैं, ये अलग नहीं है। दूसरों के प्रति दया भाव रखना, प्रेम रखना, अहंकार त्याग कर सरल ढंग से पेश आना, ये सब मानवता के ही स्तंभ हैं।
1: बिल्कुल। और एक और संदेश है, मनुष्य को जीवन में सत्य प्रेम, करुणा, दया, सहयोग, सद्भावना, आपस में मेल मिलाप की राह पर चलना चाहिए, नहीं तो कैसे मानवता महकेगी और वसुधैव कुटुंब की भावना होगी कैसे। तो विश्व हमारा परिवार है, ऐसी मानवता की महक और सार्थकता की आज हमें बहुत ज्यादा जरूरत है।
0: बिल्कुल सही बात लिखी। इसी तरह से एक छोटा सा संदेश है लेकिन बहुत बड़ी बात कहता है कि मानवता कहने में कोई बात नहीं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान लाने, किसी का हाथ थामने और बिना किसी के स्वार्थ के जब मदद करने में है, वही मानवता है। इंसानियत की सबसे खूबसूरत भाषा वही है जिसे बोलने के लिए शब्दों से ज्यादा एक संवेदनशील दिल की जरूरत है।
1: और एक और संदेश आया है चंचल, ये कहते हैं कि मानवता शब्दों और विचारों का वो सेतु है जो करुणा, सहानुभूति और निस्वार्थ सेवा के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को एक सूत्र में पिरोता है। ये किसी भी संकुचित दायरे या सीमा से परे जाकर मनुष्यता के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित करता है।
0: बड़े अच्छे अच्छे संदेश हमें मानवता के ऊपर मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता द्वारा जो बात कही गई है वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप सभी को। मानवता और इंसानियत, जिसका अर्थ होता है किसी दूसरे के प्रति दया, प्रेम और भलाई करना, सभी के प्रति प्यार की भावना रखना, अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का हित सोचना। और वाकई में ये चीजें अभी देखने को नहीं मिलती हैं। आगे लिखते हैं कि ये व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़ा हुआ है, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव, यही मानवता है।
1: बिल्कुल सही। और आज के समाज में देखो मानवता को लेकर बहुत उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। कभी कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं दुर्घटना हो गई, किसी संकट के समय लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं। रक्तदान करना, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहायता करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, पशु पक्षियों के प्रति दया रखना और पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी मानवता के रूप है।
0: बिल्कुल। आज जब विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को दीपा बहुत आसान बना दिया है, लेकिन जो कहते हैं ना कि मानवता, इसे तकनीक से हम जोड़ के देख ही नहीं सकते ना। कोई व्यक्ति कितना भी उसके पास धन है, लेकिन वो उसके धन का वो सिर्फ अपने लिए ही सहेज कर रखता है, किसी की सहायता नहीं करता, तो कहते हैं कि उसके धनी होने का भी कोई महत्व नहीं है। अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, भले आपने बहुत सारा धन खर्च नहीं किया, आपने कोई छोटी सी ऐसी काम कर दी, छोटी सी ऐसी कोई बात कह दी जो किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। अगर मान लीजिए किसी दुखी दिल है उसको सहारा दे दिया, सांत्वना के दो शब्द कह दिए, तो ये भी मानवता का परिचय देता है। हमारे समाज में मानवता के बहुत सारे उदाहरण हैं दीपा, जिसमें प्राकृतिक आपदा के समय या किसी दुर्घटना के समय जब लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं, रक्तदान करते हैं, बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, तो ये चीजें है ना, यही असली मानवता होती है।
1: हमारे एक सखी ने चार शब्द लिखा है मानवता के लिए, जियो और जीने दो।
0: क्या बात है, तो चलिए अब गाना सुन लेते हैं।

0: और भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होनी ही चाहिए। जब कोई उत्सव होते हैं ना, तो ये भावना हमारे देश में सब जगह देखने को मिलती है। सब मिलजुल कर उस त्योहार को मनाते हैं, और महिलाओं में सावन के महीने का एक खास आकर्षण होता है। सब मिलकर सखियां साथ झूला झूलने जाती हैं,
1: बिल्कुल
0: और तीज के दिन खास तौर पर लहरिया पहना जाता है। अभी हाल ही में तीज का त्योहार गया है, जिसे राजस्थान में बहुत धूमधाम से मनाया गया।
1: बिल्कुल
0: तो जो राजस्थान की हमारी सखियां ना, जो इस वक्त सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं, तो वो हमारी बात से जरूर सरोकार रखती होंगी कि उन्होंने भी लहरिया पहना होगा, नहीं पहन पाई किसी कारणवश, तो मन में मलाल जरूर रह गया होगी लहरिया नहीं पहन पाई।
1: तो कोई बात नहीं, इस दफा लहरिया साड़ी ले आए, क्योंकि सावन अभी बाकी है। तो और उसे पहन के खूब सुंदर सजे धजें और ढेर सारे तस्वीरें खींचे, और फिर अब तो कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म से आप साझा कर सकती हैं।
0: और जब आपने सजने धजने की बात कही ना, तो साड़ियों के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं। हर परिधान के साथ में एक अलग तरह का श्रृंगार किया जाता है। जो ज्वेलरी हम पहनते हैं ना, जो जेवरात हम पहनते हैं, तो हर परिधान के साथ अलग तरह के जेवर पहनते हैं। अगर आपने बनारसी साड़ी पहनी है, तो जेवर अलग तरह के
1: अलग
0: होंगे।
1: होगा
0: आपने सूती कोई साड़ी पहनी है, तो
1: जी।
0: अलग तरह के होंगे। जॉर्जेट की पहनी है, लहरिया पहना है। अब लहरिये में भी आपने भारी भरकम पहना है या हल्का फुल्का पहना है, तो आपके जो श्रृंगार की चीजें होती हैं, वो उस तरह से हो जाती हैं। बहरहाल हम बताते हैं कि लहरिया राजस्थान की एक पारंपरिक और बहुत खूबसूरत साड़ियों में से एक होती है, और इसकी खास पहचान होती है इसके जो लहरदार और तिरछे पैटर्न बने हुए होते
1: पैटर्न
0: हैं
1: जो बने होते हैं जी।
0: और खास तौर पर राजस्थान की जो रंग बिरंगी संस्कृति उत्सव है, वहां की जो संस्कृति है उससे जुड़ी हुए ये परिधान होते हैं।
1: अब देखो ना चंचल, ये लहरिया, ये शब्द ही लहर से आया है।
0: हाँ
1: इसमें कपड़े को विशेष तरीके से मोड़ कर या बांध कर रंगाई की जाती है, जिससे कपड़े पर लगातार लहरों जैसी धारियां बन जाती हैं। और ये खास तौर पे टाई और डाई, यानी वो तकनीक, बंदेज या रंगाई, इसकी तकनीक का ही एक रूप है। और इस साड़ी के लहरदार धारियां इसकी खासियत के साथ

0: इसकी सबसे प्रमुख पहचान भी है। लहरिया साड़ी ज्यादातर आप देखो तो एकदम चटक कलरों में होगी,
1: हाँ।
0: है ना, पीली, गुलाबी, लाल, हरा, नीला, नारंगी, सारे जो चटक कलर होते हैं
1: हाँ।
0: हमारे, वो इनमें इन साड़ियों को आप देख सकते हो। हालांकि आजकल अब थोड़े से इंग्लिश कलर, इंग्लिश टोन्स भी लेने लगे हैं, लेकिन फिर भी
1: जो
0: जो
1: पारंपरिक चीजें हैं,
0: पारंपरिक कलर जो इस साड़ी के साथ जाता है ना, गुलाबी पहन लीजिए आप, हरा पहन लीजिए, आहा,
1: जैसे
0: और
1: आपने पहना
0: लाल कलर
1: जो
0: की सुर्ख साड़ी हो तो क्या बात है।
1: आपने पीले कलर का अगर बेस है तो उसपे कुछ नारंगी या हरे रंग की
0: हाँ
1: धारियां होंगी, अगर
0: बिल्कुल,
1: गुलाबी बेस है साड़ी का तो कुछ ज्यादा गहरे रानी रंग की या हरी सी कुछ धारियां, तो जो बीच में धारियों का रंग अलग होता है ना वो इसे और खूबसूरत बना
0: बिल्कुल
1: देता है।
0: खूबसूरत बना देता है। और शादी ब्याह में तो आप देखिए थीम रखने लग जाते हैं आजकल तो, कि एक किसी फंक्शन पे हम ये वाली साड़ी या इसका लहंगा बना करके पहनेंगे। और फिर देखिए जब चटक कलर में पारंपरिक नृत्य होता है तो उसका तो जो नजारा ही कुछ एक अलग आनंद देता है।
1: हमारे बहुत सारे श्रोताओं के संदेश हमें मिल रहे हैं। एक संदेश में कहा गया है कि लहरदार यानी लहरिया साड़ी मूल रूप से राजस्थान, विशेषकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, यहाँ की पारंपरिक पहचान है। अपने खूबसूरत लहरनुमा डिजाइन के कारण राजस्थान के अलावा अन्य जो राज्य हैं जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सभी जगह सावन, तीज और मेलों के अवसर पर ये बहुत पसंद की जाती है। राजस्थान की इस कला का ये मुख्य केंद्र है। यहाँ के स्थानीय त्योहारों में और रोजमर्रा के पहनावे में लहरिया का विशेष स्थान है। उत्तर भारत में सावन मास, हरियाली तीज, रक्षाबंधन के मौकों पर इन लहरिया साड़ियों का बहुत भारी क्रेज देखने को मिलता है। और गुजरात, महाराष्ट्र के पारंपरिक बाजारों में शादी ब्याह के उत्सव पर भी इनकी बहुत मांग रहती है। सावन और मानसून के मौसम में हरी, पीली, लाल और मल्टी कलर की लहरिया साड़ी पहनी जाती है, जो
0: अभी तो
1: जॉर्जेट,
0: बहुत
1: कॉटन,
0: फैशन में है ये मल्टी कलर वाली।
1: जी, और
0: जी
1: अलग अलग फैब्रिक में लोग इन्हें पसंद करते हैं।
0: और हम अगला संदेश सुनाए चंचल, तब तक हम अपनी सखियों से भी पूछते हैं कि लहरिया साड़ी आपने इन दिनों में पहनी या नहीं पहनी, हमें जरूर बताइएगा। और सुनिए ये संदेश, ये भी यही बता रहा है संदेश कि ये टाई एंड डाई ये वाले कला से इसको बनाया जाता है, जिसमें पानी की लहरों की तरह तिरछे और सुंदर धारियों वाले पैटर्न बनते हैं। और राजस्थान का ये पारंपरिक पहनावा है। साथ में कह रहे हैं कि इसमें कपड़े को तिरछा मोड़कर धागे से बांधा जाता है, फिर चमकीले रंगों से रंगा जाता है। पचरंगा लहरिया जो है उसमें 5 रंगों वाली विशेष डिजाइन होती है। यहाँ की सबसे पुरानी और लोकप्रिय शान है ये वाली स्टाइल। और प्रमुख प्रकार और रंग है लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुरंगी शेड सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। अगर कपड़े की बात करें तो ये संदेश कहता है कि जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सिल्क जैसे इन जैसे हल्के और जो
1: हाँ,
0: लहरदार, जो एकदम बिल्कुल आराम से जो जिसे पहना जा सके ऐसे वाले फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। गोटा पत्ती का वर्क होता है फिर तो, त्योहारों और शादियों के लिए इस तरह महीन गोटा पत्ती या जरदोसी का काम इस पर किया जाता है। राजस्थानी सावन और उत्सवों के माहौल में सजी खूबसूरत लहरिया साड़ियां, ये ताजा डिजाइन आजकल खूब वहां के मार्केट में आप देख सकते हैं।
1: सिर्फ साड़ियां ही नहीं, जो पुरुष हैं वो दुपट्टे डालते हैं लहरिया के, जो दुपट्टे बनने लगे हैं वो कुर्ता पायजामा पहनकर उस पर लहरिया पहनना, सिर्फ हम कहते हैं ना कि महिलाएं शौकीन होती हैं, तो लहरिया के जो दुपट्टे हैं जहां महिलाएं उनको शौक से पहनती हैं, तो पुरुष भी इसे बहुत चाव से अपने कुशल कुर्ते पजामे पर सजाते हैं।
0: और सिर्फ दुपट्टा ही नहीं, पुरुष तो उसके कुर्ते बनते हैं, शॉर्ट कुर्ता जीन्स के ऊपर आप पहनिए, देखिए क्या खूबसूरत लगता है,
1: इसके अलावा
0: यहाँ तक कि
1: पगड़ियां भी
0: बांधने।
1: पहनी जाती हैं,
0: जी जी
1: पगड़ियों में भी लहरिया होता है। जो पगड़ी जिस कपड़े की आप बांध कर पहनते हैं उसमें भी लहरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एक अन्य संदेश में कहा गया है कि लहरिया, इसके ब्राइट कलर कॉम्बिनेशन और लाइट वेट होना, ये हर उम्र की महिलाओं पर बहुत फबता है। हाथ से बनी असली लहरिया साड़ी रंग की शुरुआत, इसमें रंग जो है वो धुलाई में थोड़ा सा निकल सकता है, क्योंकि ये टाई डाई से बनाई जाती है।
0: और लहरिया को एक प्रकार, एक संदेश में हमारी सहेली ने लिख भेजा है, एक दली यानी इसमें केवल एक ही रंग की लहरदार धारियां होंगी और इसमें 5 अलग अलग रंगों का इस्तेमाल होगा जो बेहद शुभ माना जाता है, जैसे कि लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। और एक होता है, एक और प्रकार है मोठड़ा। तो जब लहरिया की धारियां एक दूसरे को काटती हुई चेक्स वाला पैटर्न बनाती हैं, मतलब एक तरफ से और दूसरी तरफ से जब आती है तो उसे मोठड़ा कहते हैं।
1: तो चलो वे गाना सुन लेते हैं, सुंदर साड़ियों की बात हो रही है, सुंदर गीत।

0: और देखो जब हम तुम दोनों मिल जाते हैं ना, तो बहुत सारे संदेश लेकर आते हैं। और अब कुछ आगे संदेश की तरफ बढ़ते हैं, और हमने बात की थी ना कि कुछ छटपट बनने वाली जो चीजें होती है ना, उनकी बात की जाए, क्योंकि कई बार हमारे पास समय की कमी होती है, या अचानक से मेहमान आ जाते हैं, हमें कहीं जाना होता है, और हम ऐसे ही किसी चीज की तलाश में रहते हैं कि झटपट ऐसी कोई चीज बना दी जाए जो स्वादिष्ट भी हो और जिसे आहार बना रहे पेट में। तो
1: बिल्कुल सही।
0: सूजी के अप्पे ऐसे होते हैं जिन्हें झटपट बनाया जा सकता है। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए, हमारे श्रोता ने हमें लेकर भेजी है। 1 कप सूजी में आधा कप दही और आधा कप पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बना लीजिए। इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, घिसा हुआ गाजर मिलाएं, 2 हरी मिर्च और हरा धनिया भी काट कर डाल दें। अब ये जो सब्जियों की सामग्री बनाई गई है, इसमें आप जो चीजें नहीं खाते हैं उन्हें आप ना डालें, और कुछ स्वाद के लिए और चीजें डालना चाहते हैं तो उन्हें आप जोड़ भी सकते हैं। आगे इसे बनाने के लिए रेसिपी है कुछ इस तरह से है कि एक छोटे पैन में 1 चम्मच गर्म तेल करके डालें, राई, जीरा, नीम की छोटी पत्तियों का तड़का लगाकर इसमें एक गाढ़ा घोल तैयार कर दें। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख दें। अब आधा चम्मच इसमें कुछ भी आप या तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इस तरह कुछ भी डाल सकते हैं, और तुरंत अप्पे के सांचे में डालकर गर्मा गर्म फूले फूले अप्पे तैयार कर लीजिए। नारियल की चटनी या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ में इसे परोसकर खाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। और एक और ये रेसिपी भेजी हमारी सखी ने, भुट्टे की टिकिया बनाना बताया है कि कटोरी, 1 कटोरी उबले हुए भुट्टे आप ले लें, मिक्सी में पीस लें, 1 कटोरी उबले हुआ उबला हुआ आधा आलू ले सकते हैं, आधा कटोरी पनीर, और इन सबको मिक्स कर लें। हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक वगैरह डाल लें और थोड़ा सा

0: अगर मूंगफली घर में है तो उसको दरदरा पीस के वो भी डाल लीजिए। एक ब्रेड का टुकड़ा पानी में भिगोकर उसे भी निचोड़कर मसल कर अच्छे से डाल दीजिए। अब बारीक कटे हुए प्याज डालकर, आप अगर खाते हैं तो बारीक धनिया पत्ती प्याज अगर खाते हैं तो वो डाल लीजिए, हरी मिर्ची डाल लीजिए, और इसका एक थोड़ा सा डो जैसा मतलब आटे जैसा तैयार
1: हाँ
0: कर
1: मतलब
0: लीजिए।
1: ये एक साथ नहीं खट्टा हो जाए।
0: हाँ टिकिया का, टिकिया जैसा बनना है, और बस आप टिकिया का उसका शेप लेकर के झटपट से आप चाहें तो फ्राई कर लीजिए या शैलो फ्राई कीजिए, और देखिए बन गई आपकी बढ़िया सी टिकिया।
1: और बस हमारी सखियां ये टिकिया बनाकर खाएंगी, क्योंकि समय हो चला है पूरा। हम लेते हैं इजाजत, दीजिए चंचल वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी को इजाजत, नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
2: हेलो। हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
3: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
2: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
3: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
2: पर रेरा तो शहरों में।
3: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
2: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं डायरेक्टर एक्टर और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना से विधि जैन की बातचीत।
1: हमारे सामने है एक बहुत बेहतरीन कलाकार जिनके हाथ में सब कुछ है, सारी रेखाएं हैं कला की, और उन्हीं रेखाओं में से रेखाएं चुनने की बारी आई तो हम भी थोड़ा परेशान हो गए किस विषय पे बात की जाए। तो हम आपसे ही पूछ लेते हैं पंकज जी कि आप क्या ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, वॉइस ओवर डायरेक्टर भी हैं, और आपकी आवाज में भी बड़ा दम है जो अभी लोग सुनने वाले हैं। इसलिए विविध भारती में आपका स्वागत करते हैं बहुत हृदय से, बहुत प्यार से, और पहला प्रश्न हम आपसे पूछ चुके हैं, स्वागत है आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विविध भारती सारे दर्शकों को और विविध भारती से जुड़े हुए सारे लोगों को मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया, याद किया और कहा कि हम कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे
1: जी।
2: और जैसे आपने कहा कि मैं एक्टर भी हूं, सिंगर भी हूं, डायरेक्टर भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, वॉइस ओवर डायरेक्टर हाँ
1: जी,
2: एज ए डबिंग डायरेक्टर मैंने तकरीबन 18-20 फिल्में की हैं और अलग अलग विषय पे जो की हैं। तो आपने मुझे पूछा कि आपको कौन सा वाला सब्जेक्ट इसमें से पसंद है, तो मुझे सारे ही पसंद है। जब जब जो मेरे पास सामने जो प्रोजेक्ट होता है
1: जी,

0: उसको बहुत आनंद से, बहुत अंतरात्मा से करता हूँ
1: जी,
0: बहुत सिंसेरिटी से करता हूँ, ताकि इसमें मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी जो भी है
1: जी,
0: वट एवर आई एम कैपेबल ऑफ, मैं उसको अच्छी तरह से कोशिश करके बहुत अच्छी तरह उसको प्रस्तुत करूँ।
1: तो चलिए हम इसको और सरल बना देते हैं पंकज जी। छोटे वाले पंकज ने जो बहुत छोटा सा था उम्र में, वहां पे उस पंकज ने सबसे पहले क्या किया था?
0: ये बात जाती है, बहुत पीछे जाती है, व्हेन आई वाज इन कश्मीर
1: जी।
0: असल में मैं कश्मीरी पंडित हूँ, पंकज रैना, रैना से नाम तो समझ ही आया होगा आपको कि हम कश्मीरी पंडित हैं
1: जी।
0: कश्मीर में रहते थे, जवाहर नगर हमारा अपना घर था, और हमारा जो घर था वो एक कल्चरल हब जैसा था।
1: अच्छा,
0: ये पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है
1: जी
0: पंडित महेंद्र नाथ रैना, जो आत्मा से अंदर से बहुत अच्छे लेखक और शायर थे।
1: जी
0: वैसे वो जे एंड के असेंबली में काम करते थे, कार्यरत थे, लेकिन उनके अंदर की जो आत्मा थी वो एक कवि की थी और लेखक की थी
1: जी।
0: तो उनकी वजह से जो मेरे जो बाकी भाई बहन थे वो भी कला क्षेत्र से जुड़ गए थे।
1: अच्छा,
0: पिताजी वैसे बहुत सारे पेपर्स के भी एडिटर रहे हैं जो हमारे जे एंड के में हुआ करते थे। लेकिन हमारे घर में जैसे मेरे एक भाई, बड़े भाई थे भुवनेश, वो पेंटर स्कल्प्टर थे, पेंटिंग में स्कल्पचर का काम था उनका, उनको स्कल्पचर और पेंटिंग का शौक था। तो हमारा नीचे एक कमरा था जो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर वाला डेडिकेटेड था, उसमें पत्थर पे भी स्कल्प्टर बनते थे, लकड़ी पे भी बनते थे, ऑयल पेंट भी होता था, ये सब चीज़। हम बहुत छोटे छोटे थे।
1: अच्छा।
0: तो हमारे बड़े भाई थे, उनसे बड़े भाई थे जो फिजिक्स के डीन प्रोफेसर हुए हैं, वो मेरे पहले गुरु थे, जो प्रोफेसर तेज रायना, जिन्होंने कभी किसी संगीत सीखा नहीं, जिन्होंने उस तरह को कुछ किया नहीं, लेकिन मैं जब 10 साल की उम्र में था तो उन्होंने मुझे पहली एक गजल सिखाई थी इसकी, फैज अहमद फैज की, तो मैंने वो बच्चों के कंपटीशन में गा के मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई। तो दूरदर्शन नया नया आया था 1972 में कश्मीर में, तो फिर वहां से मैं बच्चों के प्रोग्राम में मुझे बुलाया जाने लगा।
1: मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपको फैज अहमद फैज की एक गजल गाने पर फर्स्ट प्राइज मिला था, तो हमारा अधिकार बनता है कि वो गजल हम भी सुने जिसपे आपको प्रथम पुरस्कार मिला था, और वो हमारा, हमारे श्रोताओं का अधिकार तो बनता है, तो अगर आप कुछ गुनगुना दें उसके कुछ हिस्से तो
0: मेरे। लेकिन बच्चों जैसी आवाज कैसे आएगी?
1: अब इस उम्र की उसी आवाज में सुना दीजिए, हम सुनना चाहते हैं।
0: दोनों जहान तेरी

0: बात है।
1: के दोनों जहान तेरी।
0: क्या खूबसूरत आवाज है, इतना तो विश्वास है कि हमारे श्रोता तालियां जरूर बजा रहे होंगे सुनते सुनते। अब हम आगे बढ़ेंगे कि वो जो बच्चा है वो रेडियो पे जा रहा है ना गाने के लिए या।
1: टेलीविजन पे और रेडियो पे, फिर टेलीविजन में बच्चों का प्रोग्राम होता था
0: जी
1: 1972 में, तो मैं वहां जाने लगा। तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं छोटा सा था, तो मैं गाता भी था। उससे पहले भी मैंने एक, जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, तो उनका एक एनुअल फंक्शन में मैंने ऑन द स्पॉट कहा था कि मैं भी गाऊंगा। उनका वो 15 अगस्त का प्रोग्राम था,
0: जी
1: तो मैंने वो बच्चों की आवाज में ही 8 साल की उम्र में ऐ मेरे वतन के लोगों गाया था। और मैंने कहा था मैं भी गाऊं, जिद की मैंने,
0: जी जी
1: और चारों तरफ लोग खड़े थे। बहुत पुरानी बात है, इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 70 की
0: हाँ
1: बात कर रहा हूं मैं। और लोग उस वक्त, उस तरह का स्टेडियम बना भी नहीं था, तो उस तरह के लोग आसपास खड़े थे, सब सबकी आंखों में आंसू थे। मैं, मेरी आवाज एकदम लता जी जैसी थी, बच्चों की आवाज थी, ऐ मेरे
0: हाँ
1: वतन के लोगों गा रहा था। तो यहां से एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना, वो समझ आने लगा कि हाँ, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलने लगा।
0: जी
1: फिर वो होते होते फिर वो बच्चों का प्रोग्राम आ गया दूरदर्शन का, फिर रेडियो में सुनने लगे। आकाशवाणी और विविध भारती का मेरे
0: जी
1: जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि बचपन से, जो कि तब तो टेलीविजन था नहीं, नया नया आया था, घर में एक रेडियो होता था, चाहे मर्फी का या फिलिप्स का, लेकिन वो तार से जुड़ा होता था, इलेक्ट्रिसिटी, वो चलता था, और गीत और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहते थे, हम सब सुनते थे।
0: जी
1: भाषा उच्चारण सीखने में तो काफी योगदान रहा है विविध भारती का और आकाशवाणी का, तो हम इनके हमेशा से शुक्रगुजार रहे हैं, अब भी रहते हैं। आज भी बहुत सौभाग्य है कि आकाशवाणी में आके हम कुछ चर्चा कर पा रहे हैं आकाशवाणी और विविध भारती के बारे में।
0: जी
1: तो इनका बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में, जबकि कहते हैं कि देखिए, हर प्रांत, हर राज्य का एक अलग भाषा होती है, हर राज्य के एक अलग डायलेक्ट होता है। हम जाते हैं तो वो दिखता है जब कोई बात करता है।

0: इन सब चीज़ों पे हमने जब वर्क किया तो हमें, क्योंकि अगर आप कश्मीरी नॉर्मल एक कश्मीरी से बात करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये
1: कश्मीर का
0: रहने
1: जी,
0: वाला है
1: जी,
0: या ये चेन्नई का रहने वाला है या ये कलकत्ता का रहने वाला है।
1: जी,
0: हमने लेकिन भाषा और उच्चारण पे बहुत काम किया कि ताकि हमें एक नॉर्मल एक जनरलाइज्ड एक हमारी भाषा हो, ताकि हम एक जिसको देवनागरी हिंदी में जब बात करें तो लगे कि हिंदी बोल रहे हैं, कश्मीरी हिंदी नहीं बोल रहे हैं, बंगाली हिंदी नहीं बोल रहे हैं।
1: जी,
0: तो इसमें हमारा आकाशवाणी और विविध भारती का बहुत बड़ा हमारे जीवन में योगदान रहा है, मैं हमेशा आभार व्यक्त करता हूँ।
1: विविध भारती के और आकाशवाणी के पुराने उद्घोषक जो रहे हैं उनकी बात बहुत निराली है और उनसे सीखकर हम भी
0: हमारे
1: बने हैं,
0: शिक्षक
1: और
0: रहे हैं, बिल्कुल
1: जी बिल्कुल, तो उन सबको हम सविनय प्रणाम करते हैं और
0: बिल्कुल करते
1: धन्यवाद
0: हैं,
1: देते हैं कि ये बात सुनने को मिल रही है और हमें भी बहुत अच्छा लग
0: बिल्कुल
1: रहा है।
0: मैं हमेशा इस बात को एक्सेप्ट करता हूं और मैं आज भी आकाशवाणी और विविध भारती का एक मतलब ये श्रोता हूं, मैं
1: जी
0: सुनता हूं जब भी ड्राइव करते करते कहीं जाते हैं लंबे सफर में, तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं 102.8
1: जी
0: सुनूं
1: जी जी
0: या एक और है 107. जैसे जैसे आकाश
1: आप
0: गोल्ड
1: जहां
0: है।
1: जहां शहर
0: हाँ
1: बदलेंगे हमारे नंबर्स
0: जी
1: बदल
0: जी
1: जाते हैं
0: नंबर्स
1: कि
0: बदल
1: आपको
0: जाते
1: अलग
0: हैं,
1: अलग शहर में अलग अलग दिखाई
0: लेकिन
1: दे
0: मुझे
1: जाते।
0: इनके ही प्रोग्राम सुनना अच्छा लगता है, बिकॉज
1: जी
0: एक तो मर्यादा में बोलते हैं, भाषा रेस्पेक्टेबल भाषा में बात करते हैं
1: जी
0: और कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही सुंदर एकदम मतलब प्रसारण होता है।
1: जी
0: मैं माफी चाहता हूं उस बात के लिए, लेकिन मैं FM सुनता नहीं आजकल के, क्योंकि वहां ना उच्चारण है ना भाषा है ना कोई उसका अंदाज है, लेकिन आकाशवाणी ने और विविध भारती ने हमेशा से वो कंटिन्यू रखा है कि किस तरह से एक भाषा को एक रेस्पेक्टेबल वे में प्रस्तुत किया जाए।
1: जी हम हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास को संभालने का विविध भारती प्रयास कर रहा है, और आप सब लोगों जैसे लोगों का साथ रहता है तो
0: हम
1: अच्छा
0: हमेशा
1: चलता
0: साथ
1: जाता
0: हैं,
1: है।
0: हम
1: जी,
0: हमेशा साथ,
1: तो अब हम वापस आपके
0: मेरे
1: जीवन
0: बचपन
1: पे
0: में
1: आ
0: चलते हैं। फिर
1: जाते
0: मेरे
1: हैं।
0: एक ब्रदर है चंद्रशेखर,
1: जी
0: वो हमारे थिएटर भी हमारे यहाँ होता था, हमारे कश्मीर में एक हॉल होता था जहाँ एक ही हॉल था, टैगोर हॉल,
1: जी
0: अब भी है वो, जहाँ
1: जी
0: पे प्लेज होते थे, म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे। तो हमारे घर में चूंकि इस तरह का वातावरण था ही, तो हम बच्चों छोटे थे हम भी फॉलो अप करते थे, तो इस तरह से ये क्रिएट हुआ।
1: जी
0: घर से हमारे उस वक्त चीजें ले जाते थे जो सेट डेकोरेशन
1: सेट
0: करने के
1: लगाने
0: लिए,
1: के लिए।
0: लगाने
1: जी
0: के लिए, और आकाशवाणी का भी विविध भारती का भी योगदान था, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर का भी बहुत योगदान था, वो वक्त वक्त पे बड़े बड़े पंडित और उस्ताद लोगों को वहां उनके प्रोग्राम्स होते थे, जैसे शिव कुमार शर्मा जी का, इनके हरिप्रसाद जी का, और बहुत अच्छे अच्छे परवीन सुल्ताना, ये बड़े बड़े जितने भी दिग्गज संगीत के जो मार्तंड हुए हैं उन लोगों का प्रोग्राम आकाशवाणी प्रस्तुत करवाती थी, और कभी आकाशवाणी में होता था कभी हॉल में होता था, तो हम लोग देखते जाते थे क्योंकि हमें बड़ा शौक था, हम लोग इस तरफ इंक्लाइंड थे, झुकाव
1: जी
0: था हमारा,
1: जी
0: तो हमने वहां से ही शुरुआत की है, वहीं से शुरुआत हुई है, उस तरह के ही वहां से असर पड़ा है। तो फिर धीरे धीरे हम लोग, फिर मैं और मेरी बहन प्रेरणा, हम लोग अपना म्यूजिक एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स था
1: हाँ
0: J&K एकेडमी का, वहां जाके हमने सारे गामा सीखना शुरू किया, छोटे
1: जी
0: छोटे थे
1: जी
0: तब, तो फिर हमें थिएटर में उतना मिलता नहीं था मौका,
1: जी
0: लेकिन गीत संगीत की तरफ पूरा ध्यान जाता था।
1: जी
0: फिर धीरे धीरे वहां थिएटर करना शुरू किया हमारे, क्योंकि घर में ही था, जितने भी अच्छे अच्छे कलाकार इतने बड़े बड़े जिन्होंने नाम किया बाद में, तो वो हमारे थिएटर ग्रुप में भी थे कश्मीर में, और उनकी वजह से हमें बड़ा आनंद होता था कि इन्होंने बॉम्बे जाकर और दिल्ली जाकर इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति पाई। तो देखा जाए तो बचपन से ही इसकी नींव पड़ी थी जो आज तक चली जा रही है। नाउ आई एम ए सीनियर सिटीजन, इट्स बीन लॉट ऑफ टाइम आई हैव बीन विद म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट ऑलवेज।
1: ये जो बीज सही पड़ा था, ये बीज आगे बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते एक होता है ना कि अभी तक तो आप सीख रहे हो या मजाक मस्ती में कर रहे हो या शौक के लिए कर रहे हो, प्रोफेशनली या कहा जाए जैसा शायद पूछा भी जाता है सामान्यतया, ये हालांकि मजाक का विषय लिया जाता है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं गायक हूं तो उससे उसका होने वाला ससुर पूछता है पर खाने के लिए क्या करता है। तो इसी विषय के नाते मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको अपने दाना पानी का विषय यानी अपने प्रोफेशन का विषय कब बनाया और कैसे बनाया।
0: वो थोड़ा बाद में बनाना पड़ा, बिकॉज जब मैं बहुत ही अर्ली एज से, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम में जाता था, फिर हमारे रेडियो कश्मीर में युववाणी की स्थापना हुई,
1: जी
0: और युववाणी में जब हम टीनेजर थे, 16-17-18 साल के थे, 16-17 साल, 15-16-17 साल के ही थे, तो तब हमें वहां पे हमें मौका मिला कि हम प्रसारण कैसे करें उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, तो फिर वो शामे गजल और आपकी फरमाइश इस तरह के प्रोग्राम हम युवानी में प्रस्तुत करने लग गए।
1: अच्छा।
0: फिर हमारे वहाँ ड्रामा प्रोड्यूसर थे प्राण किशोर कौल साहब
1: जी,
0: तो फिर उन्होंने बोला तुम्हारी आवाज अच्छी है तुम आओ तुम ड्रामा का भी ऑडिशन दो
1: जी।
0: मैं प्लेज करते रहता हूँ रेडियो प्लेज जो होते थे, तो हमारा फिर ड्रामा के लिए ऑडिशन हुआ रेडियो का, तो उसमें हम अच्छी ग्रेड में हुए तो फिर हम उसमें प्लेस करते थे, तो वहां से कुछ ना कुछ शुरू शुरू में कभी 15 रुपए का चेक मिलता था, फिर बाद में धीरे धीरे 50 रुपए का हुआ, ऐसी शुरुआत हुई, तो यहां से तो आना शुरू हुआ ही था एकदम कोई ना कुछ। लेकिन पिताजी की वजह से हमें इस तरह का वो नहीं था, उनका हम आज भी धन्यवाद करते हैं बहुत करते हैं कि उन्होंने कभी हमें सप्रेस नहीं किया, दबाया नहीं
1: जी,
0: कि उन्होंने हमें खेलने दिया जैसे हम खेलना चाहते थे।
1: जी
0: तो उन्होंने हमेशा कहा कि बेटा, उन्होंने सिखाया कि हाँ ये अब चेक मिला है तो कहाँ रखे, 15 रुपए का चेक मिला है, छोटे छोटे थे तो पिताजी अपने साथ बैंक ले गए, उन्होंने बोला कि ये अकाउंट खुलवाया तो इसमें चेक डाल दो, फिर जब वो पैसे जमा होते थे तो हम कभी वो हमारे लिए कभी कभी शूज लेके आते थे जाते थे, कभी वो लाते थे, तो उस तरह का उन्होंने सिखाया शुरू से बचपन से कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इकोनॉमिक जब से कुछ पैसे कमाए हैं तो उनको कैसा उपयोग होना चाहिए। फिर होते होते मैं घर से निकल पड़ा था एक्चुअली, सच बताएं तो
1: निकल पड़े थे, मतलब
0: ऐसा था
1: भाग
0: कि मैं,
1: पड़े थे या निकल पड़े थे?
0: नहीं, घर वालों की सहमति से ही आया था, ऐसा नहीं भाग के नहीं आया
1: जी।
0: तो मैं 1980 में दिल्ली आया और दिल्ली में मैंने भारतीय कला केंद्र में एडमिशन लिया, और मैं थिएटर भी करता था और मैं पंडित अमरनाथ जी से म्यूजिक भी सीख रहा था, और वो भारतीय कला केंद्र दिल्ली मंडी हाउस में बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है जो श्री राम लोगों का है, तो वहां हमने म्यूजिक क्लास में मुझे एडमिशन मिला अमरनाथ जी के यहाँ, तो पीछे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था भी थी, और बाकी टाइम सब हर वक्त क्लास नहीं होता था लेकिन बाकी टाइम 1-2 घंटे निकाल के मैं और हम लोग मेरे कुछ साथी थे उनके साथ हम थिएटर वगैरह प्लेज पढ़ना, प्लेज की रीडिंग करना और प्ले करना, तो वहाँ पे श्रीराम सेंटर, कमानी ऑडिटोरियम, फिक्की ऑडिटोरियम, बहुत सारे ऑडिटोरियम मंडी हाउस में थे, तो वहाँ हम कभी कभी फिर नाटक करते थे और कभी कभी यहाँ, छोटे ही थे, आई वॉज आई थिंक ऑलमोस्ट वो टीनेज की एंड ही था मेरा कुछ ऐसा जब मैं दिल्ली
1: 19-20 साल
0: की उम्र थी, तो वहाँ मैं 5 साल दिल्ली में रहा, वहाँ पे उस दौरान फिर मैंने कुछ वहाँ भी रेडियो में मैंने म्यूजिक में ऑडिशन दिया तो मैं मुझे पास हुआ था दिल्ली रेडियो से, मैं सिंगिंग में बी हाई ग्रेड में,
1: मतलब
0: पास
1: रेडियो
0: हुआ।
1: का साथ छोड़ा नहीं,
0: रेडियो मेरे साथ में हमेशा रहा है
1: जी।
0: और मेरी बहन का तो ये था कि हमारे एग्जाम्स होते थे ना तो उसका रेडियो चलता रहता था, गीत भी चलते रहते थे, वो प्रिपेयर भी करती रहती थी, मुझसे ऐसा नहीं होता था, उससे हो जाता था,
1: लड़कियां मल्टी टैलेंटेड होती हैं।
0: तो मेरी ट्रेनिंग ही इस तरह की रही है
1: जी।
0: लेकिन कभी उस तरह की वो रही नहीं डेस्परेशन कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कहीं नौकरी करनी है, ऐसा नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है ट्रेनिंग ऐसी होती रही, उसके साथ में इंडल्जेंस वैसी होती रही, जैसे कि जैसे म्यूजिक भी था, थिएटर भी था, और अपनी भाषा पे और उच्चारण पे तो शुरू से ही ध्यान देते थे, तो आवाज का भी कुछ एक समझ आया कि आवाज को कैसे इस्तेमाल करना है
1: जी।
0: कुछ वहां दिल्ली में प्रोग्राम करने का मौका मिलता तो एंकरिंग करने का मौका मिला
1: जी,
0: तो इस तरह की सारी चीजें होती रही अपने आप ही, सच बताएं तो,
1: मतलब आपके लिए अपने आप ही सब हो रहा था। और उसी अपने आप में आपने ना आवाज की बात के बारे में कई बार बोला
0: जी,
1: उच्चारण के बारे में कई बार बोला, तो मैं आपके जीवन की जो परिधि पे हम चल रहे थे उस परिधि पे एक मिनट के लिए रुक के एक बात पूछना चाहती हूँ। आप वॉइस ओवर डायरेक्टर हैं, हमारे श्रोताओं में कई सारे बच्चे हैं जिनकी आवाज बहुत अच्छी है, शायद उनको मॉड्यूलेशन भी आता है खुद से अपने आप से, और वो ऐसा सोशल मीडिया पे कई चीजें करके भी डालते होंगे, पर वो चाहते हैं कि वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन जाएं, तो उसके लिए वो क्या करें? अगर आप थोड़ा सा बीच में कुछ सिखा दें फिर हम आपकी यात्रा पे वापस आ जाएंगे।
0: मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई वॉइस ओवर या डबिंग करना चाहता हो या वॉइस एक्टर बनना चाहता हो
1: जी,
0: उसे सबसे पहले तो अपनी भाषा पे और उच्चारण, जो मैं बार बार कह रहा हूं
1: जी,
0: क्योंकि ये आजकल सबसे ज्यादा कमी अगर मुझे कहीं महसूस होती है, कहीं ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट और सुनने में, तो ये बहुत तकलीफ होती है कि लोग, उनका भी शायद कितना दोष है, उनके शिक्षक वैसे हैं क्या, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हाँ उच्चारण पे बहुत ध्यान देना चाहिए, वॉइस क्वालिटी पे देख उनकी वॉइस, कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज में बेस कैसे आएगा, ऐसा नहीं, मुझे कहीं लोग सवाल पूछते हैं कि हमारी आवाज ऐसे कैसी होगी, आपके जैसे हमारी आवाज कैसी होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की एक आवाज, एक अपनी क्वालिटेटिव आवाज वो नेचर से मिलती है
1: जी।
0: उसमें थोड़ा सा हम लोग एनहांसमेंट कर सकते हैं, अगर हम उसका थोड़ा रियाज करें, जैसे हम खरज का रियाज करें मॉर्निंग में उठ के, वो संगीत
1: खरज का रियाज कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा
0: वॉइस को थोड़ा सा नीचे के टोन, जैसे ऑक्टेव्स हैं, जैसे सप्तक है, मंद सप्तक है, मध्य सप्तक है और तार सप्तक है, तीनों ऑक्टेव्स

0: उसमें मध्य सप्तक से आपको मॉर्निंग में, चूंकि आप नींद से उठते हैं तो उसके बाद आपके पास थोड़ी सी बैठी होती है,
1: बेस
0: मतलब
1: काफी
0: बेस वहां
1: अच्छा
0: होती है,
1: होता
0: तो
1: है।
0: उसमें आप
1: हाँ
0: नीचे की तरफ सा
1: सा के
0: नी
1: बाद
0: हा
1: नी,
0: नीचे
1: जी
0: आए
1: जी
0: आ आ आ नीचे की तरफ जितना जाएंगे,
1: जी
0: और कहते हैं कि जितना नीचे जाएंगे उतना आप ऊपर छू सकते हैं। हमारे
1: अच्छा
0: बड़े बुजुर्गों ने ये कहा है कि वेन यू आप जब खरच का रियाज करते हैं तो तार सप्तक में आपकी आवाज और भी आगे
1: खुलती
0: जब
1: है
0: खुलती है,
1: जी।
0: तो इस तरह का मुझे लगता है वॉइस क्वालिटी में अगर थोड़ा बदलाव लाना है तो थोड़ा आपको खरच का रियाज करना पड़ेगा, चाहे आप संगीत का करें या
1: जी
0: आ करके ही कर सकते हैं।
1: जी
0: लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक शख्स की, हर एक स्त्री की अपनी अपनी एक वॉइस क्वालिटी है जो नेचुरली होती है, तो उसको ही कैसे अच्छा इस्तेमाल करना है वो आपको ढूंढना है। अगर आपका उच्चारण सही है, अगर आपकी आवाज अच्छी है, तो आपको उच्चारण पे पढ़ के आपको पढ़ाई बहुत करनी है,
1: जी
0: किताबें बहुत पढ़नी चाहिए आपको, और थोड़ा सा लाउडली पढ़नी चाहिए। जैसे आप अकेले अगर हो तो किताबें पढ़ना चाहिए उसको,
1: किस तरह की किताबें पढ़नी
0: कोई भी,
1: चाहिए?
0: जैसे उपन्यास हो कोई भी हो,
1: अच्छा
0: जिसमें अगर आपको, क्योंकि भाव की भी जरूरत होती है,
1: जी
0: आवाज के साथ में उच्चारण के साथ में भाव भी चाहिए,
1: जी
0: तभी आप अच्छे आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट या वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं।
1: जी
0: जब आपको मालूम, क्योंकि मेरे संगीत के योगदान ने मुझे उसमें एक अलग तरह का, एक मेरे जीवन में योगदान किया है, कि चूंकि मैंने बेसिकली थोड़ा म्यूजिक भी सीखा है, बहुत ज्यादा मैं उस्तादी म्यूजिक नहीं सीखा है, मैंने बेसिक
1: जी
0: म्यूजिक सीखा है, जो
1: जी
0: मैंने संगीत सीखा है उस वजह से मेरे डायलॉग डिलीवरी में, या मैं जब डबिंग करवाता हूं किसी से, तो मैं उनको वो गाइड कर सकता हूं कि इस सेंटेंस का भाव ऐसा है और किस शब्द को आपको कितना पुश करना है, कितना सॉफ्ट करना है, और उसको कैसे साथ में लेके चलना है,
1: जी
0: तो वो मैं इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मेरा संगीत से मेरा जुड़ाव है, संगीत की मेरी सोल है,
1: जी
0: मेरी म्यूजिक की सोल, मुझे वो जो सुरों की जान पहचान की वजह से मुझे लगता है कि जो डायलॉग को हम किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं
1: जी
0: वाइल एक्टिंग या रेडियो एक्टिंग या फिल्म की एक्टिंग या टेलीविजन की एक्टिंग करते हैं, तो वो भाव उसमें आना बहुत अनिवार्य होता है, आवश्यक है,
1: ठीक है
0: तभी तो आपके सेंटेंस में वो एक वो कन्वे होगा कि आप क्या कहना चाहते हैं।
1: जी
0: तो उसमें उच्चारण के साथ साथ, वॉइस के साथ साथ आपको भाव पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी
0: और जैसे आजकल तो बहुत सारे एपरेटस हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उसमें रिकॉर्डर होता है, उसमें कुछ चीजें रिकॉर्ड करके आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, दो एक छोटा पैसेज रिकॉर्ड कर लिया, फिर आपने उसको सुन लिया, तो अगर आप जेन्युइनली एनालिटिकली अपने उसको जो आपने रिकॉर्ड किया उसको सुनेंगे और समझेंगे कि कहीं त्रुटि है, कहीं गलती तो नहीं हुई है, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो नहीं, तो आप उसको दोबारा से कर
1: खुद
0: सकते
1: खुद
0: हैं
1: के गुरु भी बन सकते
0: खुद
1: हैं।
0: क्या। और वैसे भी बहुत सारी कुछ लोगों की क्लासेस चलती हैं जो वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस एक्टिंग, ये सब चीजें और ब्रॉडकास्टिंग के बारे में सिखाते हैं, काफी लोग इंस्टीट्यूशन हैं, वो वहां पे भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा उसका मंत्र जो है कुछ करने के लिए, दीवानापन और दीवानगी होनी चाहिए। अगर
1: जी
0: आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है,
1: जी
0: इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
1: जी तो वो पागलपन चाहिए, अगर पागलपन है तो
0: हाँ,
1: आप
0: वो
1: वहां पहुंच
0: दीवानापन
1: सकते हैं।
0: चाहिए।
1: और कुछ शिक्षाएं तो इसमें दी गई हैं, तो आप उन शिक्षाओं का भी ध्यान
0: जी
1: रखें,
0: जी बिल्कुल, बिना
1: उच्चारण
0: गुरु
1: और
0: के ज्ञान तो मिलता
1: जी
0: नहीं
1: जी
0: है, और
1: जी
0: गुरु आपको बनाना पड़ेगा किसी को गुरु, कि हाँ ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं
1: हाँ
0: इनसे सीखूं,
1: जी
0: तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही।
1: जी
0: तो हम बचपन में गए ना वापस।
1: नहीं अभी बचपन में नहीं जाते
0: हाँ
1: एक काम करते हैं, हम वापस आते हैं, और वापस आके जब आपने इतनी अच्छी शिक्षा दी और आपने कहा कि संगीत ने आपका बहुत साथ दिया,
0: जी जी
1: आपने बहुत अच्छे से दिल्ली में सीखा भी संगीत, तो अगर आप हमें एक कोई गीत गाकर सुना दे ताकि वही गीत हम हमारे श्रोताओं को सुना पाए।
0: ठीक है, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पता
1: जी
0: नहीं आपका दिल चाहे तो मतलब
1: नहीं स्वागत है, स्वीकार है जी
0: मैं चूंकि संगीत से मेरा बहुत पुराना साथ है, मेरा इट
1: जी
0: हैज बीन माय फ्रेंड ऑलवेज, मेरा साथी हमेशा संगीत रहा है, अकेलेपन का भी बहुत साथी रहा है।
1: जी
0: बीच में तो काफी साल मैं एक्टिंग करता रहा, 1987 में पहली बार मैंने बॉम्बे में सीरियल किया था, एक्टिंग करते करते करते मैं डबिंग करता रहा, वॉइसिंग करता रहा, फिर डबिंग डायरेक्टर बना करते करते, उसके बारे में बाद में तो बात करूंगा आपसे। तो उसके साथ साथ मैं अभी एक प्रोग्राम करने वाला हूं, मैं एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, हमारे बहुत बड़े आइकॉन फिल्म इंडस्ट्री के रहे हैं धर्म जी, धर्मेंद्र,
1: जी
0: उनको ट्रिब्यूट देने का मेरा बड़ा दिल किया, तो मैं उनको एक ट्रिब्यूट दे रहा हूं, प्यार ही प्यार बेशुमार
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: रखा है मैंने प्रोग्राम का, और आई थिंक अगले अगस्त के फर्स्ट वीक के आसपास में सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में वो शो कर रहा हूं। उसमें एक गीत मुझे बहुत पसंद है, धर्म

0: जी को मैंने डेडिकेट किया उसमें।
1: जी
0: गाने तो बहुत सारे हैं, हमने तकरीबन बहुत सारी लिस्ट बनाई है। उसमें एक गाना है जो मुझे बहुत बेहद पसंद है, उसकी दो लाइनें आपको सुनाता हूँ,
1: जी
0: क्योंकि
1: स्वागत।
0: आपने मुझे कहा है कि दो लाइनें सुना दीजिए।

0: बस कोई हिसाब नहीं, दुनिया ओ दुनिया।
1: कितना खूब गाया आपने, बेहतरीन। चलिए।

0: ये खूबसूरत गीत आपने गाया और हमने हमारे श्रोताओं को सुनाया, मतलब हमारे श्रोताओं की भूख बढ़ गई है कि अब जो भी गीत आप चुनेंगे वो उस गीत को आप गाकर सुनाएंगे और फिर हम आगे सुना देंगे।
1: वाह वाह, मेरा
0: ये
1: सौभाग्य,
0: है
1: मेरा
0: ना, ये
1: सौभाग्य।
0: होता रहेगा। पर अब आपने बताया कि 1987 में आप मुंबई आए थे और पहला
1: 1986 में आया था,
0: 1986 में।
1: इनफैक्ट जनवरी 20-40 साल हो गए तकरीबन बंबई में।
0: ऐसा बताने से उम्र पता चल जाती है
1: मुझे कोई गम नहीं है
0: तो
1: उसका।
0: पर आप 1986 में मुंबई आए और यहां पर आके आपने अपना एक नया कदम, एक नया पायदान चढ़ा, एक नई सीढ़ी चढ़ी यहां से
1: जी,
0: आपने। तो अब जरा उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें थोड़ा।
1: ऐसा सुनने में आया था कि बॉम्बे में बिना गॉडफादर के कुछ होता नहीं है, तो
0: अच्छा।
1: ये बात एक तरह से वाजिब भी है, अच्छी भी है, सही भी है। लेकिन अब जब मेरा कोई था ही नहीं बॉम्बे में, तो मुझे तो खुद ही अपनी पगडंडी बनानी थी, अपने रास्ते खुद बनाने थे। तो मैं उससे पहले भी कई बार, एक बार ऐसे छुट्टियां होती थी मेरे कॉलेज में, तो वो सब दिल्ली में भाग भाग के आता था, क्योंकि बम्बई अपनी तरफ खींचता था मुझे हमेशा शुरू से। फिर फाइनली मुझे बॉम्बे आना ही

0: पड़ा मुझे। बहुत लोगों ने वहाँ दिल्ली में कहा कि आप दिल्ली में क्यों रहते हैं, आप बॉम्बे जाना चाहिए, आपको बॉम्बे में इतना अच्छा आपके टैलेंट का विकास होगा, आपको बहुत सारे अच्छे मौके मिलेंगे। तो मैं बॉम्बे आया, तो उसके बाद फिर मैंने इधर उधर कुछ, मैंने एक फोटो सेशन करवाया था। उस वक्त के बेस्ट फोटोग्राफर जो थे, स्टिल फोटोग्राफर, उनका नाम था गौतम राजाध्यक्ष,
1: जी जी
0: अब वो
1: जी
0: है
1: जी
0: नहीं,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने बड़ी बहुत जद्दोजहद करी, बहुत मेहनत करी, तो मैंने उनका पता ढूंढा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फोटो सेशन कराना है तो सिर्फ आपसे करवाना
1: बड़े
0: है।
1: महंगे हुआ करते थे उस समय.
0: लेकिन बहुत प्यारे थे, बहुत प्यारे थे
1: जी
0: वो, बहुत ही
1: बिल्कुल.
0: अच्छे। एंड ही वॉज द बेस्ट पोर्ट्रेट फोटोग्राफर, बहुत बड़े
1: यस
0: बड़े लोगों का करते थे। एंड ही अग्रीड टू डू माई फोटो सेशन फॉर दैट टाइम। एंड तो फिर उनके घर पे उन्होंने मुझे, बाबुलनाथ मंदिर के पास में उनका घर था ह्यूज रोड पे, तो वहां उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, बोला यू कम ऑन सैटरडे वी विल शूट। तो उन्होंने खट खट खट खट मेरी तस्वीरें लेते गए वो, और कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने दी। तो फिर मेरे पास जब वो उस जमाना वो था, तो कुछ फोटोग्राफ्स तो दी थी, तो मैंने बहुत सारी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में मैंने
1: अप्लाई
0: वो
1: कर दिया.
0: दिया उनका अपना पीछे। अच्छा, उस वक्त ऐसा जमाना था कि फोन भी नहीं होता था सबके पास में, सबके मतलब केयर ऑफ नंबर होते थे। मेरे भी एक अंकल रहते थे बांद्रा में, तो पीछे उनका केयर ऑफ नंबर देके हम लोग रखते थे नाम और केयर ऑफ नंबर। कभी कभी वो फोन करते भी थे और मैसेज मिस भी हो जाते थे। और
1: हाँ.
0: मेरी आंटी घर पर रहती थी, वो बोलती थी अरे बेटा किसी का फोन आया था, वो कोई अच्छा सा था, नाम भी अच्छा सा था, कुछ क्या कुछ बताती नहीं, कोई कोई
1: भूल
0: मैसेज मिलता नहीं
1: गई
0: था,
1: भूल गई.
0: लेकिन हाँ वो भूल जाती थी। तो इस तरह का भी वक्त देखा है। तो फिर बहुत सारे लोगों से मिलना होता था। उस वक्त मुझे एक एड फिल्म मिली थी ब्रूक बॉन्ड की, थ्री रोजेस चाय,
1: अच्छा.
0: आई थिंक दैट वाज फॉर कुछ साउथ के लिए था।
1: हाँ.
0: उसमें एक मॉडल थी राधा और मुझे उन्होंने लिया था। ज्योति ठाकुर डायरेक्टर थे उस एड के,
1: जी
0: बहुत
1: हाँ
0: बड़े
1: जी जी जी
0: एड फिल्म मेकर थे ज्योति
1: जी
0: ठाकुर।
1: जी
0: तो उस एड में मुझे काम करने का मौका मिला था, ब्रूक बॉन्ड की थ्री रोजेस चाय। फिर मैंने जिंगल गाया, एक बन फूल आयुर्वेदिक तेल का जिंगल मुझे गाने का मौका मिला। मैं बहुत मतलब मैं जितनी मुझसे कोशिश खुद से हो सकती थी मैं करता था, क्योंकि मेरा कोई
2: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखिए, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
3: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: वैसे ही काम चलता रहा।
1: जी
0: फिर ये 1987 में दूरदर्शन में एक सीरियल आता था अधिकार, उसमें मेरा उसमें हुआ था, तो
1: जी
0: मैंने उसमें एक्टिंग की। फिर उनका ही नेटवर्क 7 का ही, मंजू सिंह, जोत सिंह का एक कहानी, उसमें मैंने एक्टिंग की। फिर उसके बाद तरह तरह के करता रहा। फिर मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, मैं आपको बताऊं,
1: जी
0: मैं जो मैंने शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं है। मैंने प्यार किया फिल्म की कास्टिंग हो रही थी,
1: हाँ.
0: तो मैंने प्यार किया कास्टिंग के लिए मुझे किसी ने मुझे मुझे भेजा था, बोला उनको जरूरत थी उस एक्टर्स की। तो उन्होंने शायद सलमान खान और भाग्यश्री का सिलेक्शन हो चुका था,
1: जी
0: उसमें किरदार था जीवन का,
1: जी
0: उसके लिए मुझे उन्होंने स्क्रीन टेस्ट किया। सूरज जिससे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया था, और उस स्क्रीन टेस्ट में सलमान खान भी मौजूद थे और भाग्यश्री भी। वो एक प्रॉपर सीन शूट हुआ राजश्री प्रोडक्शंस की सीढ़ियों में, जहां पे वो लिफ्ट है, और वहां सीढ़ियों से उतरते मैं एकदम सूटेड बूटेड आता हूँ, और नीचे आके सलमान और भाग्यश्री खड़े हैं। उनके साथ मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उस फिल्म के लिए। वो एक डायलॉग था, वाह सुमन वाह, पराए अजनबी घर में पराए लोगों से इतना दोस्ताना, ये सब डायलॉग्स थे। तो सलमान आके मेरा कॉलर पकड़ते हैं, सूट पकड़ते हैं, तो मैं ऐसे, फिर वो डायलॉग बाजी थी, वो मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसमें। और हमारे दो लोगों का, मेरा हुआ था और एक और लड़के का, तो मेरा सिलेक्शन मुझे मालूम पड़ा हुआ था। लेकिन फिर वो फाइनली दैट रोल वेंट टू अप टू टू मोहनीश बहल। तो वहां से थोड़ा मेरा लगा था कि हाँ सचमुच जो लोग कहते हैं कि गॉडफादर होता है तो गॉडफादर होना चाहिए। लेकिन मेरी कोशिशें एकदम बरकरार थी, चालू थी, मैं हमेशा कोशिशें करता रहा, करते करते करते फिर टेलीविजन में करते रहे, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए। महाराणा प्रताप मेरा एक तरह से लास्ट सीरियल, उसके बाद मैंने फिर टेलीविजन नहीं किया।
1: जी
0: महाराणा प्रताप था, अदालत, बहुत सारे सीरियल्स मैंने किए, कागज की कश्ती,
1: जी
0: तो अब तो नाम भी याद नहीं रहते कितने उस
1: इतने
0: जमाने में,
1: सारे
0: एटीज।
1: सीरियल्स कर
0: हाँ
1: लिए, गाने तो याद रहते हैं ना. अब आपने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि जिंदगी में जो कुछ आता जा रहा है वैसे ही चलता जा रहा है.
0: जी
1: तो एक गाना अगर आप हमारे श्रोताओं को कुछ

0: सुना दें और उनको एक डेडिकेट कर दें तो बड़ी खुशी होगी श्रोताओं को भी और हमको भी।
1: लेकिन मैं दो ही लाइनें गाऊंगा, उसके बाद आप ओरिजिनल गाना चलाइएगा
0: जी,
1: ना।
0: ओरिजिनल जो गाए हैं वो गा देंगे आप दो पंक्तियां।
1: मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।

0: तो ये गाना तो आपने सुना दिया और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे बात करने के लिए बुलाया है या गाना गाने के लिए। तो विविध भारती की एक बात है कि यहाँ पर अगर कोई हुनरबाज आता है तो हम सारे हुनर का आनंद उठाते हैं और सब में बांटते हैं। तो ये
1: नहीं,
0: प्रेम
1: मुझे
0: की
1: भी
0: बात है
1: खुशी है
0: आपका।
1: बिल्कुल आपके साथ जिस तरह हम जो वार्ता कर रहे हैं, जो भी एक चर्चा कर रहे हैं,
0: जी
1: मेरे बारे में चर्चा हो रही है, मेरे सफर के बारे में चर्चा हो रही है, उसमें मेरा साथी तो आकाशवाणी विविध भारती है ही, और विविध
0: जी
1: भारती के श्रोताओं को
0: जी
1: खासकर, उनको भी तो गीतों का आनंद मिलना चाहिए, उनको भी
0: जी
1: हमारी बातों का आनंद आना चाहिए।
0: जी बिल्कुल। तो अब जब बातों का आनंद चल रहा है तो अभी तक तो आप मुंबई आए, फिर से दूरदर्शन यानी प्रसार भारती ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बहुत सारे नाटकों का, धारावाहिकों का हिस्सा बनने का मौका मिल
1: जी
0: गया।
1: जी
0: अब आपने धारावाहिक कर लिए, उन्हें छोड़ दिया, लेकिन साथ साथ में कुछ फिल्में भी आपके हाथ में आ रही हैं और आप उन फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, एक
1: जी
0: एज ए एक्टर काम कर रहे हैं। तो वो जमाना कैसा था, आप काम करते थे तो कैसा लगता था, और आपने किन-किन जगहों पर क्या-क्या किरदार किए, ये बड़े प्यारे से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम जानना चाहते हैं।
1: असल में शुरुआती दौर में बेसिकली मेरे जहन में ऐसा बैठा था कि एज मैटर्स अ लॉट। जैसे मैं 20s में था तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी मुझे अगर लीडिंग कैरेक्टर्स मिल जाएं फिर मुझे

0: वो लीडिंग कैरेक्टर ही चाहिए थे। उसके बदले में मैंने बहुत सारी चीजें छोड़ भी दी उसको, क्योंकि शायद मेरा गाइड या मेंटोर या गॉडफादर कोई था नहीं, या जो मुझे मतलब समझा सकते थे। मैं खुद ही अपनी एनालाइज करके अपनी डिसीजंस लेता था।
1: जी
0: जैसे मुझे मैंने प्यार किया नहीं मिली तो मेरा दिल थोड़ा सा दुख
1: टूटा
0: गया
1: होगा।
0: था। तो
1: हाँ
0: देवानंद साहब से मैं बहुत मुतासिर था, बहुत उनसे प्रभावित था। तो उनसे मुझे मेरे मित्र ने मिलवाया था, देव साहब से। वो उनके असिस्टेंट, चीफ असिस्टेंट थे। तो देव साहब बहुत प्यार करते थे, मुझे कश्मीरी करके बुलाते थे। ए
1: जी
0: कश्मीरी, कम हेयर, कम कम, व्हेन हैव यू कम, उस तरह से बहुत स्टाइल से बात
1: आप थोड़ा
0: करते
1: और इसको क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे बात करते
0: थे।
1: समय देव साहब यहां पर आए थे, तो देवानंद को सुनना हम चाहते हैं, अगर थोड़ा और सुना
0: मैं
1: दें।
0: उनके अंदाज में बताऊंगा जो उन्होंने मुझे जवाब दिया
1: जी जी
0: था,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि एक फिल्म बन रही थी उस वक्त, अव्वल नंबर।
1: जी
0: देव साहब का ऑफिस खीरा नगर सेंटाक्रूज में भी था,
1: जी
0: जहां मैं कई बार उनसे मिला भी था।
1: जी
0: उनका आनंद डबिंग भी था,
1: जी
0: और महबूब स्टूडियो में वहां भी एक उनका कमरा था जहां पे वो अक्सर बैठते थे, बैंड्रा में। मुझे उन्होंने सूचना मिली तो मुझे उन्होंने वहां बुलाया था। वो शायद उसके बाद वो कहीं लंदन जाने वाले थे, लेकिन
1: जी
0: उससे पहले उन्होंने अव्वल नंबर फिल्म की उन्होंने बातचीत चल रही थी, तो मुझे भी उन्होंने वहां मिलने के लिए बुलाया। तो मैं वहां गया था, तो मुझे उन्होंने एक रोल ऑफर किया जो एक पुलिस वाले का रोल था।
1: अच्छा
0: तो वो मैंने उनसे बहुत ही रिस्पेक्टफुली कहा, मैंने कहा देव साहब मुझे पुलिस वाले का रोल नहीं करना है, इट्स द बिगिनिंग ऑफ माय करियर। तो मैं एक पुलिस वाले का रोल करके मतलब
1: उसी
0: इट इज
1: लूप
0: नॉट
1: में
0: मुझे
1: फंस
0: मुझे हाँ ऐसा लग रहा
1: जाएंगे।
0: था। उस फिल्म में आमिर खान साहब कास्ट हुए थे, और उन्होंने मुझे कहा, रायना आई एम रोल रियली सॉरी, आई कांट गिव यू दैट। मैंने उनको कहा था कि वो जो सेकेंड लीड रोल है, जो नेगेटिव रोल था, तो मैंने कहा था वो मुझे आप दे दीजिए ना इस फिल्म के लिए, तो मुझे वो पुलिस वाला रोल नहीं करना है। कहता आई एम सो सॉरी रायना, आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस आदित्य अबाउट दैट रोल एंड आई हैव टू गिव इट टू हिम, आई कैन नॉट गो बैक ऑन माई प्रॉमिस, सो वी विल, यू बेटर डू दैट वन, दैट्स अ गुड रोल ऑफ अ पुलिसमैन। तो
1: जी
0: मैं बहुत उनका फैन था, बहुत जबरदस्त फैन रहा हूं उनकी फिल्मों का भी। तो इस तरह से उन्होंने मुझे जवाब दिया, तो मैं फिर थोड़ा सा मेरा मैंने कहा ये पुलिस वाला रोल मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं देव साहब, मैं आपके साथ में नेक्स्ट फिल्म में ही काम करूंगा। इस फिल्म में पता नहीं ये क्या था, मुझे मालूम नहीं, ये
1: जी
0: मेरी, अब मैं अगर को कहूं गलतियां थी, लेकिन उस वक्त मुझे सही लगता था। मुझे लगता था कि मेरा करियर का बिगिनिंग है, मेरा कोई है नहीं, मुझे वन ऑफ द लीडिंग रोल करना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव रोल में। नेगेटिवली मेरा बहुत अच्छा एक
1: जी
0: शौक था कि मैं नेगेटिव रोल्स करूं, मेरी
1: जी
0: आवाज और मेरे पर्सनालिटी और मेरी आंखों की वजह से मुझे ऐसा लगता था कि नेगेटिव
1: कर
0: रोल विल
1: सकते हैं।
0: सूट मी। तो उन्होंने जब वो कहा कि मुझे आदित्य को प्रॉमिस किया है, तो मेरा फिर दिल थोड़ा सा वो हो गया,
1: फिर से टूट
0: फिर थोड़ा सा वो हो गया कि
1: गया
0: हाँ मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपका कोई होना चाहिए,
1: जी
0: देर हैज टू बी सम सपोर्ट। जैसे आप तो जानती हैं, इतिहास भी जानती हैं कि बहुत सारे लोगों को लॉन्च उनके घर वालों ने ही किया हुआ है, मैं किसी
1: जी
0: का नाम नहीं ले रहा,
1: जी
0: लेकिन किया तो है ना हमारा,
1: जी
0: मेरा ऐसा कोई था नहीं। कुछ लोगों को लेकिन भाग्य के अंतर्गत मिला भी है, जिनका कोई
1: जी
0: गॉडफादर नहीं था उनको भी मिला है,
1: जी
0: लेकिन मेरे साथ में ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देव साहब से अक्सर मिलना होता था, मुझे कश्मीरी बुलाते थे, ए कश्मीरी, जो कि म्यूजिक से भी मेरा रिलेशन था, तो इसलिए मैं म्यूजिक के प्रोग्राम भी करता रहता था,
1: जी
0: मैं शोज भी करता रहता था,
1: अच्छा
0: जैसा आपने अंदाजा लगाया एक्टिंग। और किशोर कुमार साहब हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं,
1: जी
0: तो इसलिए जैसे वो एक्टिंग और सिंगिंग दोनों
1: सिंगिंग
0: करते
1: दोनों
0: थे, तो ऐसा ही हमारा भी
1: करते
0: कुछ तो ऐसा ही था।
1: थे जी
0: लेकिन अब अच्छी अच्छी फिल्में, कुछ मैंने वीर ज़ारा, मुझे
1: जी
0: यश चोपड़ा जी के साथ में काम करने का मौका मिला, और उस कव्वाली में उन्होंने अपने किसी मित्र से कहा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए जो जिसको म्यूजिक का नॉलेज हो। तो मेरे साथ में यश जी के साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स की गई फिल्म सिटी में, तो वहाँ उन्होंने मुझे, आई वॉज कॉल्ड 10 बजे, मुझे उन्होंने फिल्म सिटी बुलाया था, तो मैं वहाँ ड्राइव करके आया, तो वो भी आए मेरे साथ में। तो यश जी से उन्होंने मुलाकात करवाई, तो उन्होंने मुझे पूछा अच्छा कश्मीर के हो, अच्छा, म्यूजिक आता है वो ये। तो फिर उन्होंने मुझे वो उस वीर ज़ारा में उन्होंने मुझे कास्ट किया,
1: जी
0: उस कव्वाली है बहुत अच्छी, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई हुई, आया तेरे दर पे दीवाना, ये सुना
1: वो
0: सकती हैं
1: थोड़ा
0: आप
1: सा आप
0: श्रोताओं
1: गा
0: के लिए?
1: के, नहीं आप थोड़ा, वही मैं कहने आई थी, आप थोड़ा गा के सुना दें तो आगे वो कव्वाली हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचा देंगे।
0: जो बन

0: तो इस पे मैंने एक्टिंग की है, तो मुझे खुशी तो इस बात की थी कि यश चोपड़ा जी मेरा नाम लेके मुझे एड्रेस करते थे, रहना चलो अब तुम्हारा शॉर्ट्स ऑन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सरोज जी वहां से कोरियोग्राफ कर रही थी, तो हाँ पंकज जी रहना जी चलिए अब आपकी शॉर्ट्स लेने, तो इस तरह से नहीं ये लोग जब मुझे एड्रेस करते थे आई यूज टू फील रियली गुड अबाउट इट। एंड तो वो कवाली हुई उसमें, उस पर मैंने एक्टिंग की। उसके बाद कई और फिल्में, अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है आमिर खान प्रोडक्शंस की, बंटवारा 1947, जिसका
1: अच्छा
0: नाम पहले लाहौर 1947 था,
1: अच्छा
0: अब उसमें सनी देओल और शबाना जी हैं, राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं,
1: जी
0: आमिर खान प्रोड्यूसर है, मेरा भी बहुत अच्छा है उसमें किरदार है,
1: जी
0: सनी के साथ बहुत सारे अच्छे हमारे साथ के रोल्स हैं। वो 14 अगस्त को रिलीज हो रही है, वो देखिएगा। और एक मेरी वेब सीरीज ऑन एयर है जियो हॉटस्टार पे, लुटेरे,
1: अच्छा
0: और तनाव भी एक वेब सीरीज जो सुधीर मिश्रा ने की है, वो हंसल मेहता की प्रोडक्शन है।
1: जी
0: तो इस तरह की इस गेटअप में मेरे कुछ चीजें
1: आपको
0: हैं
1: आने
0: अवेलेबल।
1: वाली फिल्म और सीरीज के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई।
0: बहुत बहुत
1: और
0: शुक्रिया।
1: जी अभी है ना, हमारे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं और आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, गढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमारे सामने जो इतना बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, जिसके पास में संगीत का भी ज्ञान है, आवाज का भी ज्ञान है, जिनके पास दिग्दर्शन का भी ज्ञान है तो निर्देशन का भी ज्ञान है,
0: जी
1: जिनको पता है कि किस तरह से किस अभिनय को करना है, जो नेगेटिव किरदार भी कर सकते हैं, जो मस्ती भरे माहौल में भी जी सकते हैं। इस सब का निचोड़ एक कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के लिए मिल जाए आपकी बातों से, आपके जज्बात से, ताकि हमारे जो श्रोता हैं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं वो आपकी उन बातों का सहारा लेकर आगे बढ़ सकें। तो एक कोई संदेश, एक कोई बात, एक कोई सीख हमारे आगामी पीढ़ी के लिए, या जो श्रोता भी इस राह में संघर्षरत हैं वो भी ये काम कर सके।
0: मैंने जैसे पहले भी आपसे जिक्र किया कि ये जो कला क्षेत्र है इसमें ये तो एक तपस्या

0: तरह है।
1: जी
0: कला क्षेत्र में जब तक इंसान तपस्या भाव से इस फील्ड में नहीं आता तो वो भाग्य के द्वारा हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन है तो तपस्या। आपकी चीजों का सराहा तभी जाएगा जब आप उस तरह का एक्ट करेंगे, उस तरह का गाएंगे, उस तरह का संगीत निर्देशन करेंगे
1: जी।
0: और उन सब चीजों के लिए तो स्टडी और दीवानगी की जरूरत तो होती है। आपको मीडियम का कितना ज्ञान है, उसमें आपकी कितनी दीवानगी है, आपने अपने आप को उसमें कितना
1: ढाला है,
0: एनग्रॉस किया हुआ उसमें ढाला है, तो वो सब तो नए लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए तो ऐसा ही है कि वो दीवानगी की तरह से ही करेंगे तब जाके होता है, तब जाके आपको सराहा जाएगा। अदरवाइज
1: अगर वो हारते हैं टूटते हैं तो क्या करें?
0: नहीं, हारना टूटना नहीं होता। देखिए, अगर आप सोच लेते हैं कि दीवानगी मतलब एक चीज ये करनी है तो करनी ही है
1: जी,
0: अब उसका निष्कर्ष कुछ भी निकले उसको, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक श्लोक है
1: जी।
0: इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि मेरा काम है कर्म करना, फल की इच्छा भी नहीं करना
1: जी।
0: तो हमको कर्म लगातार करने हैं, बिकॉज ये एक इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ वन जन्म।
1: जी
0: मुझे लगता है जन्म जन्मों की तपस्या के बाद अमिताभ बच्चन बनते हैं
1: जी,
0: जन्मों जन्मों की तपस्या के बाद इतने बड़े बड़े महान कलाकार बलराज सहनी जैसे होते हैं
1: जी,
0: जो मतलब अपनी छाप छोड़ जाते हैं सदियों तक
1: जी।
0: तो वो एक इट्स नॉट, अगर 13 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर को इंडियन कैप मिलेगी तो वो जन्मों जन्मों के कर्म होते हैं
1: जी।
0: ऐसा कौन सा चीज उन्होंने सीख लिया कि वो सचिन तेंदुलकर बन गए? लता जी 11 साल की उम्र में उनको सक्सेस मतलब गाने का मौका मिला और वो आगे बढ़ी और सारा जीवन 94-95 की एज तक गाती रही
1: जी।
0: मुझे लगता है कि इट्स ए कर्मा, इट इज द डेडिकेशन विच मैटर्स अ लॉट। आप अपने आप को निखार सकते हैं, कुछ चीजें बना सकते हैं, कुछ चीजों की त्रुटियों को खत्म कर सकते हैं, बट बेसिकली वो डेडिकेशन और वो जुनून जब तक नहीं होगा आप में तो, और आपने उसके लिए कुछ वैसा सैक्रिफाइस नहीं किया होगा ना, तो होता नहीं है। तो इट हैज टू बी डन विद द डेडिकेशन, टोटल डेडिकेशन,
1: बहुत मेहनत करनी पड़ेगी,
0: टूटना नहीं होता है,
1: टूटना नहीं है। जी, तो जब आपका इतना अच्छा विचार हमारे श्रोताओं तक जा रहा है तो एक कोई बात, एक कोई बड़ा सुंदर सा किस्सा और एक गीत, इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं।
0: चलिए मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से, जैसे मैंने बताया कि मेरे घर का माहौल बिल्कुल कल्चरल हब जैसा था, पेंटिंग भी थी, म्यूजिक भी था, शायरी भी थी, ये सब था
1: जी।
0: मैं जब रफी साहब और किशोर कुमार और मुकेश जी जो तीन बड़े जो स्टॉल वॉट्स हैं, मतलब इतने बड़े दिग्गज जो मेल सिंगर्स हुए हैं, उन तीनों का मेरे जीवन पे बहुत असर रहा है, बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग देयर म्यूजिक और मैंने उनकी सिंगिंग की स्टाइल्स और अदायगी पे जो लटके खटके झटके सब सबको मैंने शुरू से मैंने शोध किया, उस पर रिसर्च किया कि उनका क्या क्या कैसे कैसा स्टाइल है। फिर इस दौरान एक बीच में, ये तो गुरु हैं ही हमारे तीनों, और मेहदी हसन साहब भी बहुत अच्छा है उनका भी, वो भी हमारे वन ऑफ द गुरुज हैं, एक और शख्स बीच में आए जिनका नाम था भूपेंद्र। तो भूपेंद्र पहले वो भी आकाशवाणी में कार्यरत
1: अच्छा,
0: थे, दिल्ली रेडियो में काम करते थे ये, और 12 स्ट्रिंग एकॉस्टिक गिटार बजाते थे।
1: अच्छा।
0: और मदन मोहन जी एक बार दिल्ली गए थे तो उन्होंने उनसे मुलाकात करके उन्होंने बंबई बुला लिया भूपेंद्र को।
1: अच्छा।
0: तो चेतन आनंद साहब की फिल्म थी हकीकत, उसमें भूपेंद्र को उन्होंने एज ए म्यूजिशियन उन्होंने गाया भी है
1: जी।
0: वो होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा,
1: हाँ।
0: उसमें पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया।
1: अच्छा।
0: मैं बड़ा प्रभावित हुआ था भूपेंद्र की आवाज से, बहुत ही अलग तरह की आवाज थी, बहुत ही अलग तरह का उनका एक टोनल क्वालिटी थी
1: जी।
0: और एकदम बेस वाली और कमाल की आवाज थी। तो मैं पता नहीं क्यों शुरू से जब छोटा ही था तो बहुत प्रभावित हुआ उनकी आवाज से, उनके गीत गाता था उन दिनों, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, मौसम फिल्म का गाना उनका आया, गरोंधा का एक अकेला इस शहर में, इस तरह के कई गाने उनके भूपेंद्र जी के उन दिनों आते थे। तो मैं सब पिकअप करता था, सब सुनता था, गाता भी था। एक बार बड़ी चाहत हुई, मैं बॉम्बे आया तो मैं भूपेंद्र से मिलूं
1: जी।
0: तो वो उस वक्त पाली हिल बैंड्रा में रहते थे
1: जी,
0: हाईलैंड बिल्डिंग का नाम था
1: जी।
0: तो मैं उनसे मिलने एक बार आ गया, तो मिलने आया तो मैं लिफ्ट के बाहर खड़ा हूं तो लिफ्ट खुली तो अंदर से भूपेंद्र बाहर आ रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ। बोले कहाँ से आए? मैं बोला कश्मीर से आया हूँ। तो बोला चलो चलो चलो ऊपर,
1: मिलने
0: ऊपर
1: की चाहत ने मिला दी।
0: नहीं, मैं मिलने गया ही था उनसे तो देखा तो वो अंदर
1: लिफ्ट
0: से
1: में ही मिल,
0: लेकिन वो नीचे ही मिल गए
1: जी, जी।
0: तो फिर उनके साथ ऊपर उनके घर पे गए तो वहां पे फिर बोला अच्छा बताओ क्या क्या है, वो ये बातें बातें हुई, फिर उन्होंने गिटार उठा ली तो साथ में हम लोग, मैं और भूपेंद्र जी, मैं उनको सुनाता रहा उनके गाने
1: जी।
0: तो बहुत खुश हुए। बाद में वो बहुत मिलते थे, अक्सर उनसे मिलना होता था। राम

0: लक्ष्मण जी ने से भी उनसे भी मिलना होता था। राम लक्ष्मण जी ने भी कहा मेरे पास नया भूपेंद्र आ गया है, इस तरह की बातें। तो मेरे जीवन में इस तरह के कुछ अच्छे किस्से हैं जो
1: जी
0: महान महान लोगों से मिले भी हैं।
1: जी
0: तो बॉम्बे जब आए थे शुरू शुरू में, तो हमारी कश्मीरी पंडित एसोसिएशन है यहाँ पे,
1: जी
0: तो उनका फंक्शन था, तो मुझे उन्होंने कहा कि एक गाना सुनाओ जैसे आप कह रही हैं। तो
1: हाँ
0: मैंने पहला गीत यही गाया था
1: तो
0: जो मैं
1: जरा
0: दो लाइन आपको सुना के। हो एक अकेला

0: श्री पंकज रैना जी हमारे समक्ष हैं और उनके जीवन की बहुत सारी बातें हमने सुनी, संघर्ष को भी सुना और जीत को भी सुना, बहाव के साथ बहने को भी सुना और जीतने को भी सुना, और जहां नहीं जीते वहां अडिग खड़े रहने को भी सुना। ये सब सुनने के बाद जब पंकज जी हमारे सामने आए हैं, विविध भारती तक आए हैं, तो बहुत बड़ा परिवार है पंकज जी विविध भारती का।
1: जी
0: इसमें केवल उद्घोषक नहीं है, उद्घोषकों के साथ में बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पीछे से परोक्ष में रहकर बहुत सारा काम करते
1: जी जी
0: हैं,
1: जी मैं
0: और
1: अंडरस्टैंड करता
0: इन
1: हूँ।
0: सब के साथ बहुत सारे श्रोता हैं जिन्हें हम गिन नहीं
1: वाह
0: सकते। तो उस बड़े से परिवार की तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए, इतना साथ दिया, और बहुत आभार व्यक्त करते
1: मैं
0: हैं।
1: अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझे याद किया और मैं

0: रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग काजल भदरगे का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: आज के मेहमान।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे यादें होंगी।
2: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के अलावा अभी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन EIR इंटरनेट के माध्यम से, ऑलनेट रेडियो लाइव के जरिए और OTT प्लेटफॉर्म वेब्स के जरिए भी आप हमें सुन रहे हैं। इस समय शाम के ठीक 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों युवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त डी आर इंदा। कीजिए स्वीकार प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बदलते मौसम में भी अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज युवाणी में क्या खास है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बातचीत करेंगे विश्व फोटोग्राफी दिवस, स्मार्टफोन फोटोग्राफी युवाओं का नया फैशन। उसके बाद में हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी सी फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम, रोजगार के नए अवसर, और जाते जाते बातचीत करेंगे करियर गाइड के बारे में भी। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं सबसे पहले स्मार्टफोन और फोटोग्राफी युवाओं का नया फैशन के बारे में। दोस्तों फोटोग्राफी और स्मार्टफोन कैमरे का बदलता हुआ दौर है। आज 19 अगस्त है और पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। फोटोग्राफी केवल तस्वीर खींचने का माध्यम ही नहीं बल्कि ये यादों को सहेजने की एक कला भी है। एक तस्वीर कई वर्षों पुरानी यादों को कुछ ही सेकंड में हमारे सामने ला सकती है। पहले अच्छी तस्वीर लेने के लिए कई महंगे कैमरे और विशेष उपकरणों की जरूरत होती थी, लेकिन आज लगभग हर व्यक्ति जेब में एक कैमरा मौजूद है। ये कैमरा है हमारा स्मार्टफोन। स्मार्टफोन ने फोटोग्राफी को आम लोगों तक बहुत आसानी से पहुँचा दिया है। आज बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर कोई तस्वीर खींचना पसंद करता है। पहले लोग खास अवसरों पर ही फोटो खींचवाते थे, आज छोटी खुशी भी कैमरे में कैद कर ली जाती है। जन्मदिन, शादी, यात्रा, त्यौहार और पारिवारिक कार्यक्रमों की तस्वीरें तुरंत ली जाती है। स्मार्टफोन कैमरे की तकनीक पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदली है। अब मोबाइल फोन में केवल एक से अधिक कैमरे देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एंगल कैमरा बड़े दृश्य को एक फ्रेम में समेटने में मदद करता है। माइक्रो कैमरा छोटी छोटी चीज़ों की खूबसूरती दिखाता है। दोस्तों इस पर और चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
1: नमस्कार, संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है, संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय।

0: यशवंत गढ़।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: दोस्तों, टेलीफोटो कैमरा दूर की वस्तुओं को नज़दीक से दिखाने में मदद करता है। नाइट मोड ने कम रोशनी में भी फोटो खींचने को आसान बना दिया है। आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई भी कैमरा तकनीक का हिस्सा बन चुकी है। एआई तस्वीर के अनुसार रंग, रोशनी और कई दूसरी चीज़ों को अपने आप बेहतर कर सकता है। यही कारण है कि मोबाइल फोटोग्राफी अब केवल साधारण फोटो तक सीमित नहीं रही है। आज युवा मोबाइल से पोर्ट्रेट, प्रकृति, भोजन और यात्रा की शानदार तस्वीरें लेते हैं। सोशल मीडिया ने भी स्मार्टफोन फोटोग्राफी को बहुत लोकप्रिय बनाया है। लोग अपनी तस्वीरें और रचनात्मक फोटोग्राफी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। कई युवाओं ने मोबाइल फोटोग्राफी को अपने करियर का हिस्सा भी बनाया है। आज मोबाइल से अच्छी फोटोग्राफी खींचकर फ्रीलांस काम भी किया जा सकता है। फोटो खींचने के साथ साथ फोटो एडिटिंग का महत्व भी बढ़ गया है। कई मोबाइल ऐप तस्वीरों को आकर्षक बनाने के विकल्प को उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन अच्छी फोटोग्राफी केवल महंगे मोबाइल फोन पर निर्भर नहीं करती। तस्वीर लेने वाले व्यक्ति की सोच और रचनात्मकता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। रोशनी, कोण, दूरी और फ्रेम की समझ तस्वीरों को बेहतर बना सकती है। प्रकृति की सुंदरता को कैमरे में कैद करने के लिए सही समय का चुनाव जरूरी है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तस्वीरें अक्सर बहुत आकर्षक होती है। दोस्तों, फोटोग्राफी हमें अपने आसपास की छोटी छोटी खूबसूरत चीज़ों को देखने की दृष्टि भी देती है। दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे।

0: दोस्तों, फोटोग्राफी करते समय कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए। किसी व्यक्ति की तस्वीर उसकी अनुमति के बिना लेना उचित नहीं है। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करने से पहले भी सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर बच्चों और परिवार की निजी तस्वीरों को सार्वजनिक करते समय सोच विचार जरूरी है। आज स्मार्टफोन कैमरा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हमारे लिए कैमरा, एल्बम, यादों का संग्रहालय तीनों का काम करता है। पहले फोटो खिंचवाने के बाद उसका प्रिंट निकलवाना पड़ता था। आज तस्वीर कुछ ही सेकंड में हमारे फोन में सुरक्षित हो जाती है। इस बदलाव ने फोटोग्राफी को तेज आसान और अधिक लोकप्रिय बनाया है। विश्व फोटोग्राफी दिवस हमें इस कला की ताकत और महत्व को समझाने का अवसर देता है। एक अच्छी तस्वीर केवल सुंदर ही नहीं होती, वह कोई कहानी भी कहती है। इसलिए अगली बार जब भी आप अपने स्मार्टफोन से तस्वीर लें तो केवल फोटो न लें, एक याद को भी कैद कर रहे हैं। तकनीकी हमारे हाथ में है, लेकिन तस्वीर को खास बनाने वाली हमारी नज़र और भी ये हमारी कल्पना से परे है। आइए इस विश्व फोटोग्राफी दिवस पर फोटोग्राफी की इस खूबसूरत कला को सलाम करें और अपनी तस्वीरों के माध्यम से जीवन के खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए सहज कर रखें। इसी संदेश के साथ इस छोटे से टॉपिक को मैं यहीं विराम देता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कार्यक्रम के अगले पड़ाव पर चलते हैं।
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बातचीत करते हैं फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम रोजगार के नए अवसर के बारे में। समय के साथ साथ काम करने का तरीका भी तेजी से बदल रहा है। पहले नौकरी का मतलब अवसर अक्सर एक निश्चित कार्यालय और निश्चित समय माना जाता था, लेकिन डिजिटल तकनीक ने काम की इस पुरानी सोच को काफ़ी हद तक बदल दिया है। आज व्यक्ति अपने घर से कई प्रकार के काम कर सकता है। इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वर्क फ्रॉम होम। इसी के साथ ही फ्रीलांसिंग भी युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। फ्रीलांसिंग का अर्थ है किसी एक संस्था में स्थायी कर्मचारी

बने बिना अलग अलग ग्राहकों के लिए काम करना। फ्रीलांसर अपने कौशल के आधार पर अलग अलग प्रोजेक्ट्स ले सकता है। ऐसे काम के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और ज़रूरी कौशल की आवश्यकता होती है। आज लेखन, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसे कई काम ऑनलाइन किए जा सकते हैं। वेबसाइट बनाना और सॉफ्टवेयर से जुड़े कई कार्य भी घर से किए जा सकते हैं। अनुवाद और ऑनलाइन शिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी अवसर बढ़े हुए हैं। सोशल मीडिया प्रबंधन भी फ्रीलांसिंग का एक लोकप्रिय क्षेत्र बन चुका है। आज छोटे व्यवसाय भी अपने सोशल मीडिया के लिए विशेषज्ञों की मदद लेते हैं। इससे युवाओं के लिए घर बैठे काम करने के नए अवसर पैदा हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा लाभ समय और आने जाने की बचत है। व्यक्ति को रोज़ कार्यालय जाने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी पड़ती। इससे यात्रा पर होने वाले खर्च भी कम हो सकता है। घर से काम करने के कारण परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। घर पर काम करते समय ध्यान भटकने की संभावना रहती है, इसलिए काम के लिए निश्चित समय और स्थान तय करना जरूरी है। फ्रीलांसिंग में भी अनुशासन बहुत जरूरी है। ग्राहक द्वारा तय समय पर काम पूरा करना फ्रीलांसर की जिम्मेदारी होती है। अच्छी गुणवत्ता का काम भी अब ही आगे नए अवसर दिला सकता है। इसलिए न केवल काम प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपने कौशल में लगातार बेहतर करना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा और भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं।

0: दोस्तों, युवाओं को अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कोई एक कौशल चुनना चाहिए। इसके बाद उस कौशल की नियमित रूप से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी को लेखन पसंद है तो वह कंटेंट राइटिंग सीख सकता है। जिसे डिज़ाइन पसंद है वह ग्राफिक डिज़ाइन सीख सकता है। जिसे वीडियो बनाने में रुचि है वह वीडियो एडिटिंग कर सकता है। कंप्यूटर में रुचि रखने वाले युवा वेब डिज़ाइनिंग या प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाले लोग अनुवाद या कंटेंट से जुड़े काम कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाने में रुचि रखने वालों के लिए नए अवसर उपलब्ध हैं। फ्रीलांसिंग में शुरुआत करने से पहले अपने काम का अच्छा पोर्टफोलियो बनाना उपयोगी होता है। पोर्टफोलियो से संभावित ग्राहक आपके काम की गुणवत्ता समझते हैं। इंटरनेट ने काम की सीमाओं को भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। आज किसी छोटे शहर में बैठा व्यक्ति दूसरे शहर या देश के ग्राहक के लिए काम कर सकता है। यही डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विशेषता है। हालांकि ऑनलाइन काम करते समय धोखाधड़ी से भी सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, फ्रीलांसिंग और वर्क फ्रॉम होम केवल सुविधा ही नहीं बल्कि बदलती अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ज़रूरत है तो बस यही सही कौशल, सही दिशा और मेहनत की। इसी सकारात्मक सोच के साथ हम इस टॉपिक को यहीं विराम देते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
2: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मनापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
1: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
2: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
1: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
5: आरबीआई कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, करियर गाइड के बारे में चर्चा करते हैं और आज बातचीत करेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग में करियर और कोर्सेज के बारे में। आज हम ऐसे क्षेत्र की बात करेंगे जिससे मांग लगातार बढ़ रही है। हमारा विषय है कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर और उससे जुड़े कोर्सेज। आज का समय कठिन दोस्तों, आज का समय डिजिटल तकनीक का समय है। लोग जानकारी प्राप्त करने से लेकर खरीदारी तक इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में व्यवसाय के लिए ऑनलाइन मौजूद रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। यही डिजिटल मार्केटिंग की भूमिका सामने आती है। सरल शब्दों में कहें तो इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों के जरिए किसी उत्पाद सेवा का प्रचार करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। डिजिटल मार्केटिंग में कई अलग अलग क्षेत्र शामिल होते हैं। इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रचार इसका एक हिस्सा है। दोस्तों, दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है सर्च इंजन। SEO का उद्देश्य वेबसाइट को सर्च इंजन में बेहतर स्थान दिलाने में मदद करता है। दोस्तों, कंटेंट मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें उपयोगी और आकर्षक सामग्री के माध्यम से लोगों तक पहुंच बनाई जाती है। ब्लॉग, वीडियो पोस्ट और अन्य सामग्री इसके उदाहरण है। ईमेल मार्केटिंग भी डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रभावी माध्यम है। इसके जरिए ग्राहकों तक जानकारी और ऑफर पहुंचाए जा सकते हैं। डिजिटल विज्ञापन भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण

बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कंपनियां अपने विज्ञापन सही दर्शकों तक पहुंचाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती रही है। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए सबसे पहले इंटरनेट और कंप्यूटर की बुनियादी समझ होना बहुत ही उपयोगी है। इसके बाद विद्यार्थी डिजिटल मार्केटिंग का कोई प्रमाण पत्र या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। कई संस्थान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। कुछ कोर्सेस कुछ महीनों में पूरे किए जा सकते हैं, वहीं विस्तृत पाठ्यक्रम की अवधि से अधिक भी हो सकती है। कोर्सेज चुनते समय केवल प्रमाण पत्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये देखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में व्यावहारिक प्रशिक्षण कितना दिया जा रहा है। डिजिटल मार्केटिंग में प्रैक्टिकल अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विद्यार्थियों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाकर अभ्यास करना चाहिए। अपना ब्लॉग या सोशल मीडिया पेज चलाकर भी अभ्यास किया जा सकता है। इससे डिजिटल मार्केटिंग की वास्तविक समझ विकसित होती है। डिजिटल मार्केटिंग में नौकरियों के अलावा फ्रीलांसिंग का विकल्प भी मौजूद है। अनुभव व्यक्ति कंपनियों का छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल मार्केटिंग सेवाएं दे सकता है। सोशल मीडिया मैनेजर के रूप में भी कैरियर बनाया जा सकता है। SEO विशेषज्ञ के रूप में काम करने का अवसर भी मिलता है। कंटेंट राइटर और कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट के लिए भी इस क्षेत्र में अवसर है। डिजिटल विज्ञापन से जुड़े कार्यों में भी प्रशिक्षण लोगों की मांग रहती है। ई कॉमर्स के बढ़ने के साथ ही डिजिटल मार्केटिंग का महत्वपूर्ण महत्व और बढ़ा है। आज छोटे दुकानदार भी अपने उत्पादों को कंटेंट के माध्यम से ग्राहकों तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप और स्थानीय दुकानदार भी इसका उपयोग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सफलता के लिए रचनात्मक सोच बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये आंकड़ों को समझने और परिणामों का विश्लेषण करने की क्षमता भी उपयोगी होती है। डिजिटल मार्केटिंग लगातार बदलने वाला क्षेत्र है। कई तकनीकी और नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार आते रहते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को लगातार सीखते रहना पड़ता है। विद्यार्थियों को कोर्स चुनते समय संस्थान की विशेषता की जांच करनी चाहिए। कोर्स की फीस, अवधि, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की जानकारी पहले लेनी चाहिए। केवल ये देखकर कोर्स नहीं चुनना चाहिए कि उसमें नौकरी की गारंटी या दावा किया गया है। अपने कौशल और रुचि के अनुसार क्षेत्र चुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डिजिटल मार्केटिंग युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार दोनों अवसर पैदा कर सकते हैं। छोटे शहरों और कस्बों के युवा भी इंटरनेट के माध्यम से इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। जरूरत है सही प्रशिक्षण, निरंतर अभ्यास और मेहनत की। इसलिए यदि आप इंटरनेट, सोशल मीडिया, लेखन और रचनात्मक काम में रुचि हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। करियर चुनते समय जल्दबाजी नहीं करें और जानकारी पूरी लें। दोस्तों, इसी संदेश के साथ करियर गाइड और कार्यक्रम की यही विराम देते हैं। अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक भी लेते हैं।

तो दोस्तों, ये तो था आज का युवाणी कार्यक्रम। अब मुझे दीजिए इजाज़त इस कार्यक्रम से। अगले किसी ऐसे ही प्रोग्राम में फिर से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त टी आर इंदा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोपानी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पणिहारी।

0: पाबंदी हो जाए। और दूसरी बात, सबों बड़ी आया करे, अगर आप समय री निश्चितता ने देखता हुआ आगे चलता रहे वहां, तो जिकी बात अपने देखे नहीं वह लोग अपने आप करे। और तो और कठे अपने जाना है और सोचे कि भाई समय दियोड़ है कि भाई आपने 8 बजे पहुंचना है और आप समय माते पहुंच जाओ तो वे लोग भी खुश हुए। कई लोग क्या करे, अरे हाल तो 8 बजे ठीक है, 9 बजे तक चालना पड़ा की नहीं है, उठे कोई नहीं हुए या कोई काम ने अपने जाना है, अरे हाल तो बड़ा लोग भी नहीं आया आप जान कहीं करा, मतलब छोटी छोटी बातें होती रहे। लेकिन अगर आप समय रहा पाबंद हाँ तो अपने आ मायने बात होया करे कि निश्चितता एक बनियोड़ी रहे, अपने जिको दिमाग है वो एकदम सही चालिया करे। और नहीं तो आप भूल जावा और के अरे अरे लेट हो गयो। कई बार आप जिन वाहन जा रहे हैं वो में समस्या आ जावे, कई बार मौसम परिवर्तित हो जावे, कई बार अपनी जिकी चीज़ा कोई ले जाओनी चीज़ें साथ करण में वह भी नहीं हो पावे। और कई बार आप सोचा अरे अपने समय रो तो ध्यान ही नहीं दियो, अपने जिका मेहमान वगैरह है या जिका अपने मिलना है जिका अपने सु बातचीत करना है वो तो गया परा। तो एक छोटी छोटी बात एक समय रे पाबंदी ने रखता हुआ बहुत बड़ी होया करे। इन वास्ते बहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप समय रा पाबंद रहो। समय री पाबंद री बात अगर आप करा तो अपने बचपन में आदत हो जाया करे किन तरह स्कूल जावा समय एक भोर में आप उठ्या करा। आज समय परिवर्तित हो गया है, लोग रात्रा ज़्यादा जागे और सुबह लेट उठ्या करे। कारण कही है आधी बीमारी रो कारण है। अच्छा वे एक काम नहीं किया करे नहीं, दिमाग में 5 या 6 बात एक बार चल सके, पर अपन तो 17 बातें चलावा, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है और सब एक समय अनुसार करना, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है अपने वास्ते कि वो काम आप की कर करा। चाहे अच्छा इन बीच में क्रोध भी आवेला, इन बीच में आप अगर 4 काम सोचोड़ा है तो 2 ही होवेला, इन बीच में आप जिको जरूरी काम है उन्हें आप भूल जाओला, इन बीच में समय ने देखे और वो समय जाते रहेला, इन समय माते मने ओ काम करना है वो नहीं जावेला, तो आज की उलझन है दिमाग रे माइंड है आ एक बेचैनी पैदा कर दिया करे, एक दिमाग रो संतुलन बिगाड़ दिया करे। और तो और जिकी अपन माइंड ने ऊर्जा है जिकी आप ऊर्जावान री तरफ रहना चाहो वह एकदम समाप्त हो जावे। क्योंकि बहना कई बार आप सोचा कि अरे वो काम नहीं पहले अपन वो करना चाहिए, एक तो असमंजस में पड़ जावा, एक थोड़ी सी घबराहट हो जावे कि अरे भाई मैंने उन समय माते वो काम करना और मैं नहीं कर पाई, एक वो हो जावे अरे दूसरों को ही कहला ओल बुआ जाला वो टाइम माते अगर आप काम नहीं करियो तो यूं हो जावेला वो हो जाला, तो 100 तरह री उलझन आवे। इन वास्ते एक समय निश्चितता रखता हुआ आप काम करा आगे चला तो इनसे बड़ो बात अपन वास्ते कही वे। और मैंने कई बार आप सोचता दिमाग में आ ही जावे, परेशानी आ जावे, कई बार क्रोध आ जावे, कई बार हंसी भी आ जावे, कई बार लागे कि उल्हानो मिलेला, कई बार अपने लागे कि लोग कही केवला, कई बार अपने डांट भी मिल जावे, कई बार आप खुद इन परेशानियों जूझता जिको काम करना चाहे वो आप भूल जावा। तो जरूरी है समय रा पाबंद होना। समय रा पाबंद अपने जीवन रो सबहु अनमोल रत्न है जिन्हें आप पूरी करने चाहवा। तो बहना जरूरी है ऐसा सब बात अपने करनी। और चला आप एक संदेश
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: तो बहना अब आप संतोष रागिनी और साथियों और गीत सुनियो हो और सावन चल रही हो तो सावन का महीना में सावन का गीत वे तो और ही कहीं बात है ना। इन वास्ते अपना गीत संगीत अपनी परंपरा अपनी वेशभूषा अपना खान पान राजस्थान री एक अनूठी बात है। लोग अठान बहुत खुश होया करे बहुत प्रसन्न होया करे और जिठे भी अपने देश में जावे अपने जिका दूसरा शहर में जावे अठेरी बात जब तक करे ना तो बहुत आनंद है। अब लहरिया री बात चल रही है सावन री बात चल रही है सावणिया री तीजा री बात चल रही है तो जगह जगह इनरो भी एक प्रचार प्रसार भी लाग रही हो कि बहना वाकई अपने अठेरी जी की पहचान है अपने अठेरी जी की बातचीत है अपने अठेरा खान पान है उनमें खुशी तो अपना होया करे आप राजी तो होया करा कि देखो लोग भी अपने अपनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही बात है ना। इन वास्ते ध्यान रखना भी जरूरी है और जो मैं आपने बतायो कि आप कोई भी काम करा दूसरा जो कोई भी अपने वह कह दिया कह के अरे यूँ है कि वो काम करना चीज़ है। हाँ बिल्कुल अगर अपने समझ है और अपने आगे कि अगला रही बिल्कुल आइडिया है जो को बिल्कुल सही है और उन अनुसार अपने काम करना है। कई बार आप सोचा कि नहीं नहीं नहीं और जो कि बता रहे हैं वो गलत है मैं मारे अनुसार करूं ठीक है आप अपने अनुसार भी पर जो परिणाम आए वो एकदम सत्य और सही आना चीज है। कई बार आप गलत विचारा में कई बार आप गलत लोगा रे संगत में कई बार आप बिना सोचा समझा करा तो अपनी जी की समझनी बात है वह आप दूजा ने तो बहुत कह दिया करा क्योंकि क्या करने के खुद को गुरु जी बैंगन खावे दूजा ने आशीष देवे बात सही है। आपने खुद ने खुद रूप पूर्व ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर किन्हीं बात मत अगर आप चर्चा कर रहे हो है ना। और अगर उन्हें बाद में भी आपने ध्यान नहीं पड़े कि आप कोई चीज़ माते अनाप शनाप बाल रहे हैं जिकी चीज़ जिको मैटर जिको टॉपिक आपने चीज़ है उन माते अगर आप बात करनी चाहवा फिर भी नहीं कर रहे हैं तो इन सुख ही लागे कि बेफालतू लोग कहवे लाई सीधी सी बात है। आप भी कहवा दूसरा ने किसी भाई आप स्वयं रही तो कोई बात समझ ही नहीं रहा हो दूसरा ने आप बताने की कोशिश कर रहे हो या दूसरा ने ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हो तो इन एक संयम रखना चीज है। एक आप जी की भाषा प्रयोग कर रहे हो आप जी की वार्ता कर रहा हो आप जी की चर्चा कर रहा हो आप लोगों से बात कर रहा हो उन एक अलग एक तो उन रे बारे में ज्ञान होना चाहिए एक जी की चीज़ आप करे किया करें नहीं आपा कि भाई आपा जी को चाला कि भाई तर्क वितर्क कहीं होया करे दुनिया में छोटी बात है। घर में भी आपा करा आपा कहवा कि नहीं आ बनानी है दो जोड़ के नहीं हो बनाना आपा कहवा यूँ जीवना दो जोड़ के नहीं हो जीवना तो ए तो कहीं चलता रहे ए आपा मानव शरीर है इन्हें हर लोगों रो हर इंसान रो दिमाग अलग होया करे उनकी सोच अलग होया करे उनके साथ ही आप एडजस्टमेंट करया करे। कई बार सोचा कि अगर अपनो तालमेल नहीं बैठ रहे तो अपने शांत होना पड़े क्यों कि कलह रो कारण कई वे कि क्रोध आ जा आप एक दूसरा बहस करता रह रिया बहस करते और जिकी बात है वो समय भी जाप रो और अपने काम भी नहीं हुए और आप तनाव में आ जावा कई बीमारियां ने झेल लेवा कई परेशानियां अपने इतनी आवे कि आप सोच भी नहीं सका। इन सो अच्छा है कि ठीक है एक दो बार अपन लाग रहे कि भैया गलत और अगर इन्हें फिर भी करना है और इनकी इच्छा है तो ठीक है आप उन्हें एक दो बार परिणाम के बारे में भी बता दियो एक दो बार दूसरी चीज़ भी कह दियो पर फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं एक ने तो क्या करें ना कि नीचे देखना ही पड़े या एक ने हार माननी पड़े कोई बात नहीं इनमें कोई आदमी बड़ो थोड़ी हो जाया करे बहना आप दूसरा ही सोचो पहले आप खुद आपने सोचना अगर इन तरीकों बना लो ला जीवन बहुत सरल हो जाला। हर बहस ने अगर एक छोटी सी बात ने क्या करे ना कि बात रो बतंगड़ बन गयो उनका कारण कही है राई रुपाड़ बन गयो अरे भाई हाँ ठीक है मान रहे हैं अगली बार एक बार दो बार तीन बार मान गया अच्छी बात है नहीं मान रहे कोई बात नहीं अपने थोड़ी हार अपने थोड़ा नीचे देख लेना चाहिए अपने थोड़ा सो सामंजस्य बैठा देना चाहिए। जन आप सोचा आप भी सोच ला कि बिना आप ही आपा क्यों करा दूसरा क्यों नहीं करे आ बात भी सही है मैं अपना बात समझानी चाहूँ कि हाँ लेकिन जितनी अकल अपन में आप वो सोचा कि मैं इतनी है नहीं है ना इन सोच नहीं इन खुशी में आप हाँ बढ़ ला तो अच्छी छोटी छोटी बातों अगर अपने काम हो रही हो तो आप क्यों टेंशन ले वहाँ आप क्यों आगे बढ़ा। इन वास्ते जरूरी है कि कोई भी काम में सरलताओं सादगियों और एकदम ठंडा विचारों करा तो एकदम अच्छो सो अपनो काम होला और खुशी खुशी होला। तो चला आप अगले गीत क्रम पर बीच में लेवा एक संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई रेरा में शिकायत दर्ज कराई मिला तुरंत पजेशन हुआ समाधान साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का

0: भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पोजीशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम आइडियल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420022233।

0: हेलो, हाँ हाँ आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील विल हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: तो बहना आपा गीत सुनियो, बहुत ही सुरीलो, और आपा बातचीत करे हैं अपने कार्यक्रम में सशक्त महिला सशक्त बालिका। देखो इंडो कहिए कि आपा अगर एक दूसरा रो उदाहरण दे वाला, तो आज अपने जी की बच्चिया है, आज अपने जी की बहना है, वह भी कोई भी क्षेत्र हो उनमें आगे बढ़े और वह एक संबलन मिलिया करे, वह एक आप मिलिया करे कि जिको काम मैं कर रहा हाँ उनमें अगर लोग माने शाबाशी देवे तो इनसे बड़ो कई काम है। और जब अपना बहना रही होया करे बहना, तो कई बार कहिए आपा शहरी क्षेत्र में तो ही अपन ग्रामीण बहना ने देखो मन में बहुत ज़्यादा मजबूती होया करे। एक तो देसी खान पान पर्यावरण रो बहुत ज़्यादा फर्क पड़िया करे बहना, और दूसरी बात आ है कि वह जिकी काम में लगन रखे नहीं उन काम ने वे बहुत ही आगे बढ़ाया करे। और जो आपा महिला सशक्तिकरण बहनारी बातचीत करता रहे वहाँ उन दौरान कई आज अबर आप देख रहे हैं कि ओलंपिक गेम्स में कितनी मेडल ले रही है, सोना रह किया करे, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और अब हर बड़ी बड़ी बात आप करते बालिकाओं की भी बात आवे। तो आप सोचा कि जिकी आर्थिक रूप स्वतंत्र या सामाजिक रूप में मजबूत हुए, कई बार नहीं भी होया करे, कई बार होया करे कि सरकार द्वारा कई अड़ी योजना चलावे जिकी की कल्याणकारी होया करे, इन मायने कई वे अपनी बहना ने एक तो स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता अड़ी कई चीज़ा दिया करे, जिनसु की वेणो जी को काम है वो आगे आगे बढ़ते रहे। और बालिका ने अगर शिक्षा रे साथ साथ ही आप थोड़ा सा दूसरा काम भी लगावा थोड़ा सा, और खासकर अब आज की आप बातचीत कर रहे हैं स्पोर्ट्स में, खेल में कितनी बच्चियां आगे बढ़ रही है, पढ़ाई में कितनी बच्चियां आगे चढ़ रही है, तो छोटी छोटी बातों अगर अपने काम निकल रहे हैं वह आगे एक नया कोई भी चीज़ में प्रोत्साहित रूप में लावे, तो आप खुद भी गदगद हो जावा। तो एडी बालिका एडे विश्वास रे साथ अपनों बहनों सहयोग हमेशा साथ है और अग्रणी रहना जरूरी है। तो बहना चलता चलता आपने एक गीत सुंदर सो और सुनावनी चाहूँ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पाणियारी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
1: पांच बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले चार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और पांचवा प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले चार प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और पांचवा प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसाई तक ये फोर लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोन बरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा फोर लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि को अब वैश्विक स्तर पर मान्यता मिल रही है। नई दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान निवेश शिखर सम्मेलन में श्री वैष्णव ने कहा कि देश 6-8% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी विकास, प्रौद्योगिकी और समृद्धि पर आधारित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। सर्वोच्च न्यायालय ने भविष्य में प्रश्नपत्र लीक जैसे मामले रोकने के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को संस्थागत रूप देने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिसमें सुरक्षित बुनियादी ढांचा, समर्पित परीक्षा केंद्र, साइबर सुरक्षा प्रणाली, संस्थागत विशेषज्ञता और परीक्षा संबंधी कार्यों के लिए एक स्थायी तंत्र शामिल हो। न्यायालय ने शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सचिव को निर्देश दिया कि वे हलफनामा दाखिल करें, जिससे ये बताया जाए कि राधाकृष्णन समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा नंदन नीलेकणी समिति द्वारा सुझाए गए आवश्यक संशोधनों को भी इसमें शामिल किया जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन

0: अध्ययन की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है, जबकि 4611 लोग घायल हुए हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नीदरलैंड्स में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अब से कुछ देर में शुरू होगा। भारत ने अब तक 2 मैचों में 3 अंक हासिल किए हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को भी बाई मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से। एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से विदेश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म जन्नत के इस गीत से। इस गीत को आवाज दी है केके ने।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
5: अप टू 85% एलटीवी के साथ अब मन्नापुरम आईजीएल गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
4: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
5: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए। मन्नापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
4: मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का एसडी कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
3: दोस्तों, आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म किक से, आवाज दी है मोहम्मद इरफान ने।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुंचिए। मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: दोस्तों, कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत सुनते हैं फिल्म काइट से। आवाज दिए केके ने।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बुंदू खां के गाए कुछ लोकगीत।
1: नमस्कार। संस्कार, संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का अनूठा संगम सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़, छात्र एवं छात्राओं दोनों के लिए वैदिक पढ़ाई का एकमात्र संस्थान, राजस्थान का पहला बालिका वेद विद्यालय भी यहीं संचालित होता है। छात्र छात्राओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित पृथक पृथक छात्रावास की उत्तम सुविधा है। प्रवेश प्रारंभ है। संपर्क करें सेठ श्री सूरजमल तापड़िया आचार्य संस्कृत महाविद्यालय जसवंतगढ़।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे लोकगीत और भजनों पर आधारित कार्यक्रम माटी के स्वर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे बंदूक खां के गाए कुछ लोकगीत। ये कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चेयरमैन शरण से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ की FM फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें अलग अलग माध्यमों से भी देश और दुनिया में सुन रहे हैं। इस समय शाम के 6:30 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों का प्रसारण आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, आचार संहिता लागू। 309 स्थानीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को दो चरणों में मतदान होगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा का छठा सत्र कल से। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने सदस्यों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने सरकारी कैंसर इंजेक्शन के दिल्ली में कथित रूप से अवैध बिक्री के मामले में गहन जांच करने के निर्देश दिए। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 309 स्थानीय निकायों के चुनाव दो चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने आज जयपुर में प्रेस वार्ता कर शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि एक राज्य एक चुनाव के तहत ये चुनाव करवाए जाएंगे। निकाय चुनाव में 39 जिलों को शामिल किया गया है। पहले चरण का मतदान 9 सितम्बर, वहीं 11 सितंबर को दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 सितंबर को की जाएगी। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव 21 सितंबर को होगा। निकाय चुनाव सदस्य पद की अधिसूचना 27 अगस्त को जारी की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
1: इसके चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो 27/8/2026 है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2026, नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1/9/2026, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 4/9/2026 और मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026।
0: राज्य के 309 नगरीय निकायों में 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल हैं। इन चुनावों में 1,44,00,000 से अधिक वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि जयपुर नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता हैं, वहीं बूंदी के इंद्रगढ़ में सबसे कम वोटर हैं।
1: इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं, ये 24,20,839 और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला उसमें सबसे कम मतदाता हैं, 4,744। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
0: ये चुनाव ईवीएम से करवाए जाएंगे। इसके लिए आयोग ने सभी जिलों को पर्याप्त मशीनों का आवंटन कर दिया है। चुनाव कार्य के लिए 1,15,000 से अधिक कार्मिक नियोजित किए जाएंगे।

0: गौरतलब है कि दो से अधिक संतान वाले प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने पर रोक हटाई जा चुकी है। निकाय चुनाव को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा का छठा सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे से होगी। मॉनसून सत्र के लगभग 5 दिन चलने की संभावना है। इस दौरान राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 और राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक पेश किए जा सकते हैं। साथ ही वाणिज्य कर और अन्य संशोधन विधेयक भी सदन में रखे जा सकते हैं। सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में कल सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सदन के संभावित कामकाज और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की गई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मॉनसून सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने अपने सदस्यों के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की। इससे पहले विधानसभा का 5वां सत्र इस साल 28 जनवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक चला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें 4 रेलवे और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं पर करीब 13,041 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन विस्तारित रेलवे लाइनों के पूरा होने से आवागमन में सुधार होगा, साथ ही रेलवे की परिचालन दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी।
1: पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक ये 4-लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए।
0: प्रदेश में उद्योग और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए किए जा रहे कामों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इस साल अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान प्रदेश में लगभग 2,37,00,000 रुपए के निवेश आशय मिले हैं। डीरेगुलेशन फेज 1 की इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बताया कि इसमें जुलाई महीने में 93,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश आशय शामिल है। उन्होंने बताया कि उद्योगों से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने सरकारी कैंसर इंजेक्शन की दिल्ली में कथित रूप से अवैध बिक्री के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को प्रकरण की तथ्यात्मक जांच करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए उपलब्ध कराई जा रही महंगी जीवन रक्षक दवाओं की किसी स्तर पर कालाबाजारी और अवैध बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीकानेर के सरकारी कैंसर अस्पताल के लिए RMSCL के माध्यम से भेजे गए इंजेक्शंस की दिल्ली में कथित रूप से बिक्री की बात सामने आने के बाद चिकित्सा मंत्री ने पूरी सप्लाई चेन, स्टॉक रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड की तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। श्री खेवसर ने अधिकारियों को सरकारी दवाओं की सप्लाई और वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने को कहा है। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में आज एक कार से करीब 18 किलो से अधिक अफीम जब्त की गई। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से नशा मुक्त अभियान के तहत बोहेड़ा गांव से ये जब्ती की गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि पकड़ी गई अफीम की कीमत 75 लाख रुपए से अधिक है। ये अवैध अफीम बाड़मेर ले जाई जा रही थी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इनके माध्यम से लोगों को साइबर ठगी और मनी म्यूल अकाउंट के बारे में बताया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पाली में राजस्थान

0: ग्रामीण बैंक की ओर से जन जागृति कार्यक्रम रखा गया। बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक भुवन व्यास ने डिजिटल लेन देन में सावधानी बरतने और किसी भी अनजान व्यक्ति से निजी जानकारी साझा नहीं करने के बारे में लोगों को जागरूक किया। कोटा में आज राजभाषा हिंदी के महत्व और डिजिटल युग में उसकी संभावनाएं विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से हुई इस संगोष्ठी में हिंदी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। क्षेत्रीय आयुक्त सुधीर बत्रा ने कहा कि प्रशासन में व्यवहारिक हिंदी का उपयोग पारदर्शिता और जनसंपर्क को अधिक प्रभावी बनाता है। वहीं सीबीसी के सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा ने राजभाषा हिंदी के स्वरूप और डिजिटल युग में उसकी बढ़ती उपयोगिता पर प्रकाश डाला। श्री मीणा ने कहा कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा और एआई के दौर में हिंदी तकनीक की सशक्त भाषा के रूप में उभर रही है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। ये दिन छायांकन कला के इतिहास और समाज में इसके महत्व का जश्न मनाने के लिए समर्पित है। एक अच्छी तस्वीर समय, समाज और इतिहास के पलों को सुरक्षित करती है। एक रिपोर्ट।
1: एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। दुनिया भर में किसी हादसे, प्राकृतिक आपदा या त्रासदी की बात हो या फिर मिलना बिछड़ना, राजनीतिक घटनाक्रम, कैमरा इन सभी को कैद कर यादगार बनाता है। इन्हीं पलों और यादों को सहेजने वाले छायाकारों के महत्व को रेखांकित करता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। हालांकि सोशल मीडिया के इस दौर में अब हर हाथ में कैमरे से लैस मोबाइल फोन है। आज स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरों ने फोटोग्राफी कला तक हर व्यक्ति की पहुंच आसान बना दी है। विश्व फोटोग्राफी डे के अवसर पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में कल से 3 दिन की फोटो प्रदर्शनी नजर का आयोजन किया जा रहा है। न्यूज डेस्क से सुदर्शन नाहर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भरतपुर के पैराशूटर रुद्रांश खंडेलवाल को अर्जुन पुरस्कार के लिए चयन होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि रुद्रांश ने शूटिंग में असाधारण प्रदर्शन कर पूरे प्रदेश को गौरवान्वित किया है। गौरतलब है कि एक हादसे में अपना पैर गंवाने वाले रुद्रांश ने हिम्मत नहीं हारी और निशानेबाजी को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। उन्होंने शूटिंग में 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। वे पेरिस पैरालंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साथ ही एशियन गेम्स 2023 में भी उन्होंने 2 रजत पदक अपने नाम किए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा, आचार संहिता लागू। 309 स्थानीय निकायों में 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा का 6ठा सत्र कल से। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपने सदस्यों के साथ बैठक कर रणनीति तय की। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने सरकारी कैंसर इंजेक्शन के दिल्ली में कथित रूप से अवैध बिक्री के मामले में गहन जांच करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष मेहता। जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में 72 प्रतिभाओं को राजकीय सेवा, चिकित्सा, शिक्षा, खेल, कला और सामाजिक सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं को नमन किया गया। शिक्षा मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की और कहा कि जीवन में मानवीय मूल्यों तथा संस्कारों का महत्व है। उन्होंने नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात की। समारोह में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे और विद्यार्थियों ने भी इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मुख्य आतिथ्य में निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस अवसर पर सियाम ऑडिटोरियम

0: में सांस्कृतिक संध्या आयोजित हुई। विभाजन विभीषिका के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। शहीद परिवारों का सम्मान भी किया गया। नगर निगम कोटा में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विभाजन के दौरान विस्थापन और लोगों की पीड़ा को चित्रों और ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से दिखाया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा विकास प्राधिकरण, नगर निगम और सार्वजनिक निर्माण विभाग सहित विभिन्न विभागों के 690 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 430 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभी 100 वार्डों को स्मार्ट वार्ड के रूप में विकसित करने और लोगों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। सांगोद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने 12 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा बूंदी की पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने और सुपोषित माँ अभियान के माध्यम से मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान देने की बात कही। कोटा शहर को प्रधानमंत्री ई बस सेवा के तहत नई बसों की सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर से वर्चुअल माध्यम से कोटा में गुलाबी रंग की ई बसों को रवाना किया। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी बसों को हरी झंडी दिखाई। इन बसों से शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ने और प्रदूषण कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कोटा से रामेश्वरम और मदुरई के लिए तीर्थ यात्रा पर विशेष ट्रेन रवाना हुई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस ट्रेन को शिक्षा और पंचायती राज मंत्री ने हरी झंडी दिखाई। कोटा से 616 और 12 से 354 तीर्थ यात्री इस यात्रा में शामिल हुए। अलवर में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण कोटा के सियाम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 10,548 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। इनमें कोटा जिले के भी 314 अभ्यर्थी शामिल हुए। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किया। कोटा के कलेक्ट्रेट सभागार से करीब 250 युवा इस कार्यक्रम से जुड़े। उन्होंने नशे से दूर रहने और जागरूकता अभियान में भाग लेने का संकल्प लिया। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में देश की पहली वंदे भारत प्लेटफॉर्म आधारित फ्रेट ईएमयू सुपरफास्ट पार्सल रैक के तकनीकी परीक्षण के क्रम में कोटा से रोल खुर्द खंड के बीच इस विशेष रैक का एक ट्रायल रन किया गया। इस दौरान रैक को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की परीक्षण गति से चलाकर महत्वपूर्ण परीक्षण किए गए। ट्रायल में मुख्य रूप से रीजेनरेटिव एनर्जी, थर्मल क्षमता, ट्रैक्शन और ब्रेकिंग प्रणाली की कार्यक्षमता और लोड कंडीशन में जर्क टेस्ट किए गए। कोटा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव रो ऐलान। चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हुई। 309 स्थानीय निकाय में 9 और 11 सितंबर ने वोट पड़ेला। 16वीं विधानसभा रो छठो सत्र काल शुरू भेला। सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति तय कीनी। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सरकारी अस्पताल में कैंसर रा मरीजा ने मुहैया कराया जावन वाला इंजेक्शन दिल्ली में कथित रूप गैर कानूनी तौर बेचा जावन रे मामला में जांच रा हुकम दीना। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरे बस समाचार विगतवार। प्रदेश रा 309 स्थानीय निकाय रा चुनाव 2 दौर में कराया जावेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह आज जयपुर में खबर नवीसा ने शहरी निकाय चुनाव कार्यक्रम री जानकारी दीनी। वे बतायो कि निकाय चुनाव सदस्य ओहदा सारू अधिसूचना 27 अगस्त न जारी करी जावेला। इस आगे नाम पाना दाखिल करन रो काम शुरू है जावेला। एक राज्य एक चुनाव री सोचरा तहत कराया जा रहा निकाय चुनाव में 39 जिला शामिल करी चाह है। पहला दौर में 9 सितंबर ने जबकि दूजा दौर में 11 सितंबर न वोट पड़ेला। वोटानी गिनती 14 सितंबर न करी जावेला। नगर परिषद सभापति और नगर पालिका अध्यक्ष ओहदा सारू चुनाव

0: 21 सितंबर न फैला।
1: इसके चुनाव दो चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो 27/8/2026 है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2026, नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1/9/2026, अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 4/9/2026 और मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026।
0: राज्य 309 नगरीय निकाय आए, 10 नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिका शामिल है। इन चुनाव में 1,44,00,000 होमबत्ता मतदाता वोट दे सकेला। राज्य निर्वाचन आयुक्त बतायो के वोट देवण रा पात्र लोगां री तादाद जयपुर नगर निगम माए सब 32 जबकि बूंदी जिला रा इंद्रगढ़ माए सब कम है।
1: इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं, ये 24,20,839 और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला उसमें सबसे कम मतदाता हैं, 4,744। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
0: चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कराया जावेला। इन सारू राज्य निर्वाचन आयोग सगला जिला ने जरूरी तादाद में ईवीएम अलॉट कर दीनी है। चुनाव रा काम में 1,15,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जावेला। ध्यान योग है कि 32 संतान वाला उम्मीदवार रे चुनाव लड़बा माथे लगाई जी रोक हटा दी रिची है। निकाय चुनाव रा ऐलान सा गई संबंधित हलका में चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू भी की है। राज्य की 16वीं विधानसभा रो छठो सत्र काल समारा 11 बजे शुरू फैला। सदन रा पावस सत्र रे दौरान राजस्थान समान नागरिक संहिता बिल 2026 और राजस्थान वृक्ष संरक्षण बिल और वाणिज्यिक कर और अन्य संशोधन बिल पेश करया जावण रा आसार है। सत्रों पहले विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री सदारत में काल सगली सियासी पार्टियां ना नेताओं री मीटिंग बुलाई जी जिन में सदन रा कामकाज ने ठीक ढंग चलावण रे बारा में चर्चा करी जी। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग कहो के सरकार हर मुद्दा माथे चर्चा सारू तैयार है। विधानसभा रा पावस सत्र सारू सत्ता पक्ष और विपक्ष आप आपरा सदस्यों ने मीटिंग बुलार रणनीति बनाई। इनु पहले विधानसभा रो 5वां सत्र इस साल 28 जनवरी 10 मार्च ताई चालियो हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री सदारत माए आज नई दिल्ली माए फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल री मीटिंग माए कई खास फैसला करी चिया। मीटिंग पाछे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव खबर नवीसा ने आने बारा माए जानकारी दीनी। वे बतायो कि कैबिनेट 5 परियोजनावां ने मंजूर कीनी। आमाए 4 रेलाऊं जुड़ी और 1 हाईवे जुड़ी परियोजना शामिल है। श्री वैष्णव बतायो कि आ परियोजनावां माथे कोई 13,041 करोड़ रुपया खर्च करया जावेला। वे बतायो कि आ रेलवे लेना रा काम पूरा होवण पाछे आवण जावण माए और सुधार फैला।
2: पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd और 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा एकदम नेपाल के बॉर्डर तक, ये 4-लेन हाईवे बनाने का टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किए हैं।
0: प्रदेश में आए इन साल अप्रैल और जुलाई महीना रे दौरान करीब 2,37,00,000 रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास बतायो कि डी रेगुलेशन फेज 1 री इम्पैक्ट असेसमेंट रपट्र मुजब जुलाई महीना में 93,000 करोड़ रुपए बतारा निवेश प्रस्ताव मिला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर प्रदेश रा सरकारी अस्पताल में कैंसर री बीमारी रा मरीजा सारू मुहैया कराया जावन वाला इंजेक्शन री दिल्ली में कथित तौर गैर कानूनी बिक्री रे मामला में कड़ी कार्रवाई रा हुकम दीना है। वह एहलकारा ने मामला री जांच करन सारू कहो।

0: चिकित्सा मंत्री कह्यो कि सरकारी अस्पतालों में इलाज सारू मुहैया कराई जा रही महंगी दवाइयां री किण ई लेवल माथे कालाबाजारी और गैर कानूनी बिक्री बर्दाश्त नहीं करी जावेला। बीकानेर रा सरकारी कैंसर अस्पताल सारू RMSCL रजरिये भेजी जाए इंजेक्शन री दिल्ली में कथित तौर गैर कानूनी बिक्री री ठा पड़िया पाछे चिकित्सा मंत्री पूरी सप्लाई चेन स्टॉक रजिस्टर और दूजा रिकॉर्ड री तुरंत जांच करन रा हुकम दीना। चित्तौड़गढ़ जिला रा बड़ी सादड़ी कने बोहेड़ा गांव में आज एक कार 18 किलोग्राम बत्ती अमल जब्त करी ची। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो री ओर नशा मुक्त अभियान रा तेज करी ची कार्रवाई में पकड़ी ची अफीम रो बाजार में मोल 75 लाख रुपये बत्तों में नीचियो है। उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदल बतायो कि आ अफीम गैर कानूनी तरीकों बाड़मेर ले जाई जा रही है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह रा तहत प्रदेश में भांत भांत रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। अरे जरिए लोगों ने साइबर ठगी और मनी म्यूल खाता ने बारा में जानकारी दी जा रही है। आज पाली में राजस्थान ग्रामीण बैंक री ओर उनजाग जगावन रो कार्यक्रम रखी जियो। इन माए बैंक रा क्षेत्रीय प्रबंधक भुवन व्यास डिजिटल लेन देन माए सावधानी रखन और अनजान जना ने निजी जानकारी नी बतावन री राय दीनी। कोटा में आज राजभाषा हिंदी का महत्व और डिजिटल युग में उसकी संभावनाएं मुद्दा माथे संगोष्ठी राखी ची। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्रीय संचार ब्यूरो रा क्षेत्रीय कार्यालय रे ओर राखी जी संगोष्ठी में असरदार हिंदी काम लेवन ने बधावो देवन रो संकल्प करी चियो। संगोष्ठी में क्षेत्रीय आयुक्त सुधीर बत्रा कहो के प्रशासन में व्यावहारिक हिंदी काम लेवण साफगोई और जनता सागे संपर्क असरदार बनाया है। केंद्रीय संचार ब्यूरो रा सहायक निदेशक रामेश्वर लाल मीणा राजभाषा हिंदी रा रूप और डिजिटल जमाना माए मारी बधती उपयोगिता री चर्चा कीनी। श्री मीणा कहो का सोशल मीडिया ऑनलाइन शिक्षा और AI रा दौर माए हिंदी तकनीक री मजबूत भाषा रा तौर सामी आ रही है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े भरतपुर रा पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने अर्जुन पुरस्कार सारू चुनिया जावन पर बधाई और शुभकामनावां दीनी है। मारा संदेश माए श्री बागड़े कहो कि रुद्रांश निशानेबाजी माए असाधारण खेल रो दर्शाव कर राज्य रो मान बधायो है। ध्यान जोग है कि एक हादसा रे कारण पग गमावन वाला रुद्रांश हिम्मत नी हारी और निशानेबाजी ने जिंदगी रो मकसद बना लीनो। वह शूटिंग में 4 दफा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वह पेरिस पैरालंपिक में देश की नुमाइंदगी कीनी। रुद्रांश साल 2023 रा एशियाई खेला में चांदी रा 2 तमका हासिल कीना है। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है। ओ दिन छायांकन कला रा इतिहास और समाज में इनरा महत्व रो जश्न मनावण ने समर्पित है। एक अच्छी तस्वीर समय समाज और इतिहास रा लम्हा न हेर रखे है। पेश है एक रपट।
1: एक तस्वीर 1000 शब्दां रे बराबर वे है। आखे दुनिया माए किणी हादसा कुदरती आपदा और त्रासदी री बात हो या मिलन बिचो सियासी घटनाक्रम कैमरा आ सगला ने कैद कर यादगार बनावे है। आ लम्हा और यादा ने हेर राखण वाला छायाकार रा महत्व ने बतावे है। हालांकि सोशल मीडिया रही दौर माए अब हर हाथ माए कैमरा वाला फोन है। आज स्मार्टफोन और डिजिटल कैमरा फोटोग्राफी कला ताई हर एक जना री पहुंच आसान बना दीनी है। विश्व फोटोग्राफी डे रे मौके जयपुर रा जवाहर कला केंद्र माए कालू 3 दिन री फोटो प्रदर्शनी नजर शुरू वेला। न्यूज डेस्क हूँ सालेहा गाजी।
0: राखी रे मौके राज्य माए महिलावां और टाबरियां राजस्थान रोडवेज री बसा माए प्रदेश री हद माए 28 और 29 अगस्त ने मुफ्त सफर कर सकेला। रोडवेज री और आज ई बारा माए हुक्म जारी कर दिया चिया। हालांकि वोल्वो बसा माए किरायो लागेला। 27 अगस्त रात 12 बजे 29 अगस्त आधी रात ताई ओ सुबितो मिलेला। ई सारू रोडवेज री बसा माए सीट रिजर्वेशन करायो जा सकेला। ई बीच राज्य माए राखी रो रंग नजर आवण लग्यो है। बाजार रंग बिरंगी राखियां सजोड़ा है। डाक विभाग न्यारा न्यारा जिला माए राखियां हिफाजत सागे पुगावन सारू वाटर प्रूफ लिफाफा री व्यवस्था कीनी है। त्योहारा ने ध्यान रखता थका राजस्थान पुलिस ऑनलाइन ठगी और फर्जी उपहार लिंक बचबा सारू सावचेती राखण बाबत कहो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त दीतवार ने

0: ऐलान, चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू हुई। 309 स्थानीय निकाय में 9 और 11 सितंबर ने वोट पड़ेला। 16वीं विधानसभा रो छठो सत्र काल शुरू हैला। सत्ता पक्ष और विपक्ष रणनीति तय कीनी। और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर सरकारी अस्पताल में कैंसर रा मरीजा ने मुहैया कराया जावन वाला इंजेक्शन दिल्ली में कथित रूप गैर कानूनी तौर बेचा जावन रा मामला में जांच रा हुक्म दीना। ऐसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेतीबाड़ी।

खेती बाड़ी सुन लाला सगला भाई ने बहन ने और टाबरिया ने गणे है तो और कोट सो राम राम। देखो किसान भैया जद भी चौपाल कहानी आवणो वह आउंडी वह तो देखो खेती इन परिबती बात तो आपा कई तरह की करा, पर देखो किसान भैया जे सब वो आपा फायदारी बात समझा बा है। देखो आपा हाँ किसान और आपाणो काम है खेती करनो, और खेती के साथ कह सका कि अपना जगह डाव डंडा है अपना जगह पशुधन है तो बीरी भी सार संभाल कराएं, क्योंकि खेती के साथ आप कह सका अपना पशुओं बिन है जो अपारो काम नहीं चले। तो आ चीज जा रही है जो आप सावधान रखा ध्यान रखा। और खेती में देखो किसान भैया आज कद एड़ा नया नया जका ने नवाचार कह दिया के एड़ी नया नया विचार हुआ, तो किसान वास्तव में जकी फसला बोवे चाहे खरीफ फसल वो चाहे रबी फसल हो तो बारो जे फायदो डंगू लेने चाहो तो बिल्कुल किसान भैया ले सके, क्योंकि नवाचार है जो को एड़ा है बा नवाचार साथ आप काम करा अपना जगह कृषि विषय की बहु है जो को बातचीत कर बहु आप संवाद करा बाने अपनी जी भी जकी खेती समस्या बाने पूछा और बिन मुझे काम करा और एड़े जब अपन कीटनाशक और टेम पर प्रयोग करा तो अपन वास्तव में हेजो को खेती रो फायदो ले सका। तो आज अपन बात कर रही है कभी खेती में देखो आधुनिक जो को ड्रोन है नहीं तो ड्रोन को खेती में जो को बढ़तो उपयोग है वो किसान वास्ते वास्ते की तो फायदेमंद है। तो किसान भाई देखो खेती में ड्रोन जी जो बात करा इरो उपयोग आजकल बड़ी तेजी में चाल रही है और इस प्रचलन बहुत ज्यादा है और किसान अब देखो कम टेम रे मायने और मेहनत में जगह कीटनाशक है उर्वरक है बारो छिड़काव है चाहे पच फसल की निगरानी है और पैदावार है बिरो आकलन करने वास्ते देखो ड्रोन को खुलकर हेजो को प्रयोग कर रही हो इस्तेमाल करिए और हेजो को बड़ो फायदेमंद साबित हो रही हो। जिनों कहीं है कि खेती की लागत किसान भैया कम हो रही है और आपने जो को मुनाफो है आपने जो को लाभ है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन बढ़ रही हो तो बड़ी खुशी की बात है। अब आप बात कर लिया कि भाई खेती में ड्रोन का जगह उपयोग है मुख्य उपयोग है जो कहीं है तो देखो किसान भैया सीधी सीधी बात है कि देखो ड्रोन री आप बात कर ली तो देखो कीटनाशक और खाद रो छिड़काव आप कर सका फसला की जकी सेहत है बिनी निगरानी है बारी आप ध्यान कर सका और बीजरी बुआई है बीरो भी आप किन हिसाब से काम करा कर सका। और इरे साथ देखो बड़ी जकी बात है किसान भाई देखो टेम और श्रम समय और श्रम की बचत है जो को आप बिल्कुल कर सका। तो कीटनाशक और खाद के जे छिड़काव की बात करा तो ड्रोन देखो कुछ ही मिनटा में जो को एकड़ भर का खेत है बामे दवा या जका खाद का जका समान रूप छिड़काव है वो बिल्कुल समान रूप कर सके तो आ है जो को बड़ी बात है। और फसल जी सेहत री निगरानी री बात करा तो कैमरा लगेड़ा जका सेंसर है बाकी सहायता हूँ बाकी मदद हूँ ड्रोन फसला में जो कि बीमारी वे जो कि पानी की कमी है या पच कीटा को जो को प्रकोप है वो समय रे तो देखो प्रकोप है तो वो समय रे तो आप बीरो पता लगा सका तो वो ड्रोन आपने वास्ते है जो बड़ो फायदेमंद साबित हो सके। और यही है जो को बीजरी बुआई कम समय में बड़ा पैमाने पर बीजा को छिड़काव है जो पौधरोपण है वो इन उपयोग है तो वो आप आसानी कर सका। और सब बड़ी बात है देखो टेम और श्रम री बचत मजदूरों पर निर्भरता कम वे जावे और किसानों का जगह खतरनाक रसायन है वहां को सीधे संपर्क में नहीं आना पड़े तो देखो एड़ी जकी बात है तो नवाचार री बात है और ड्रोन को जो को उपयोग है वास्तव में आपने लिए बड़ो लाभदायक है बड़ो फायदेमंद है। और किसान

0: ना भैया देखो, आज है जो को आपने सजीव फोन इन कार्यक्रम है और इमें जगह आपना किसान भाई है, आपनी समस्या है बिरे समस्या रो समाधान वास्ते आपने कृषि विशेषज्ञ भी आयड़ा है, तो डॉक्टर हरिराम जी चौधरी जगह कृषि विज्ञान केंद्र अट्यासन आयड़ा है। तो आप बिल्कुल आपरी जकी बात है सीधी बात डॉक्टर साहब कर सको और आपरी जो भी समस्या है बिरो निवारण आप कर सको। तो इर वास्ते जकी समस्या है जकी जिज्ञासा है बिरो निवारण वास्ते टेलीफोन नंबर है किसान भाई देखो 240 168 और 7 बजे लगार 7:30 के बीच अपा है जो को अपना जगह विशेषज्ञ ऐड़ा है तो अपा कॉल करा बाने फोन करा। तो एक बार पुनः सुन लियो कि जगह फोन नंबर है 240 168 और नागौर का जो एसटीडी कोडरी बात करा तो वह है भैया किसान भैया 015-82। तो आपा बिल्कुल है जो आमत खोल करा और आऊं है जो समाधान लेवा। और अब सुनो एक कामरी बात,
1: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही है, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं। तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर है 240 168 और नागौर का एसटीडी कोड है 015-82। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: तो किसान भैया देखो कि सजीव फोन इन कार्यक्रम है और अपने बीच जो विशेषज्ञ है डॉक्टर हरिराम चौधरी कृषि विज्ञान केंद्र अटियासन। तो सगड़ों पहली डॉक्टर साहब रो करा स्वागत। तो डॉक्टर साहब आपरो घणो घणो स्वागत, राम राम सर।
3: राम राम साहब।
0: तो किसान भाई आज देखो आप बाता जीता करा ला, देखो जो अपनी फसला है फसलार में जो सूक्ष्म पोषक तत्व है बार उपयोग अपना किण मुजब करा और कहीं आप है जो कि बिरी जानकारी रा कर किन हिसाब आप काम करा कि आपनी जकी फसला है वह है जो बिल्कुल बराबर बढ़वार करती रहे और बराबर काम हुआ। तो
3: सर,
0: आपरा जो सवाल है बिल्कुल आप
3: हेलो
0: पूछो। हाँ जी।
3: हेलो, लाल टमाटर क्या ले? कितना खुदाई करनी चाहिए और बीज कहाँ से प्राप्त करें?
0: एक मिनट, आप अपना नाम बताओ सर।
3: अनवर हुसैन बोल रहा हूँ, बी आर मिर्जा कॉलेज से।
0: अनवर हुसैन जी, बी आर मिर्जा कॉलेज नागौर। तो आपने जो की समस्या है बीरो समाधान है जो डॉक्टर साहब करेला, बताओ सर आपकी क्या समस्या है?
4: हाँ साहब,
3: हाँ सर,
4: बताइए समस्या बताइए।
3: सर लाल टमाटर कह रही है, क्या क्या खुदाई करनी पड़ेगी और बीज कहाँ से प्राप्त करें और खाद कितनी दें?
4: देखो, टमाटर अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। तो एक तो आप पौध भी डायरेक्ट ले सकते हैं और कुछ पहले बीज बो के नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और नर्सरी तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले अपने जमीन को, वो जो नर्सरी है उसको समतल कर ले, लेवल कर ले, और उसमें फिर बीज, जो बीज है टमाटर के, उसमें बिखेर दे। और फिर उसमें पानी देके थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद या जो केचुआई खाद है उसमें बिखेर दे और फिर गीली बोरी से उसको ढक दे। फिर 2-3 दिन में उसको हटा ले तो आपके वहां पे वो पौध तैयार हो जाएंगे। अगर आपको पौध लेने हैं तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र अट्यासन में भी अच्छी किस्म के टमाटर के पौधे हैं। और दूसरे जो पौधे हैं जैसे बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, बंद गोभी, फूल गोभी, वो सारे वहां पे उपलब्ध है। अभी कुछ फसलों के हैं लेकिन 10-15 दिन बाद में आपको कृषि विज्ञान केंद्र अट्यासन पे उपलब्ध हो जाएगा और वहां से आप पौधे ले सकते हो। 1 रुपए से लेके 1.5 रुपए, 2 रुपए तक पर पौधे की कॉस्ट है।
0: तो अनुरोध आपको है जो को समस्या रो समाधान डॉक्टर साहब कर दियो। और अब देखो साहब,

0: बात कर रही है जो अपनी जकी फसला है, तो जका में देखो खरीफ फसला की बात करा चाहे रबी फसला की बात करा, तो बाम जे सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करा तो भाई कौन कौन सा तत्व है सा? और एक फोन आ रही है, एक भाई अपना और जुड़ रहा है। हेलो हेलो भाई जुड़ रहा है। हेलो हेलो बोलो जी। हाँ तो अपनी जकी फसला में हम सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो डॉक्टर साहब कौन कौन सा जगह सूक्ष्म पोषक तत्व है बे अपनी फसला में हुए?
1: देखो, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे पौधे की संपूर्ण विकास के लिए, उसकी उत्पादकता के लिए
0: जी
1: और उसके अधिक से अधिक उत्पादन के लिए, ये जो आवश्यक पोषक तत्व वे 17 प्रकार के होते हैं,
0: अच्छा जी
1: जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अपने को हवा से, पानी से, मिट्टी से ऑटोमेटिक मिल जाती है प्राकृतिक रूप से।
0: अच्छा
1: बाकी जो दूसरे जो 14 जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो मुख्य पोषक तत्व है, वो हमें आपको अप्लाई अपने को अप्लाई करना पड़ता है,
0: एक भाई
1: अपने
0: और
1: को
0: जुड़ रहा
1: ग्रहण
0: डॉक्टर
1: करना
0: साहब।
1: पड़ता है।
0: हेलो हेलो आवाज नहीं आ रही है
1: हाँ,
0: भाई, जुड़िया
1: तो
0: कौन?
1: मैं बता रहा था कि जो 14-17 पोषक तत्व है,
0: जी
1: उसमें से जो 14 पोषक तत्व है वो हमें किस पौधे में स्प्रे करना होगा या मिट्टी के द्वारा पहुंचाना होगा, कैसे भी पौधे की आवश्यकता के लिए, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो पौधे की जो ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो उसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम,
0: जी
1: जो मुख्य पोषक तत्व भी कहलाते हैं। अब इसके बाद जो पौधे को आवश्यकता होती है वो द्वितीय मुख्य पोषक तत्व है, कैल्शियम,
0: हेलो
1: मैग्नीशियम और सल्फर।
0: जी सर, एक भाई जुड़ रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा।
1: कनेक्ट
0: हेलो
1: प्रॉब्लम हो रहा है।
0: हेलो
1: हेलो,
0: हेलो हाँ सर
1: तो अब मैं बता रहा था कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व, जो मुख्य पोषक तत्व है तो उसमें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, और द्वितीय मुख्य पोषक तत्व है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर।
0: जी सर
1: इसी प्रकार सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि पौधे के विकास के लिए बहुत ज़्यादा, विकास में हर चीज़ में उसको चाहिए होता है, लेकिन उसकी मात्रा पौधे को कम चाहिए होती है, इसलिए उनको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं। तो ये 8 प्रकार के होते हैं, जिससे जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, निकिल है। तो ये पौधे के संपूर्ण विकास के लिए 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि फसलों के लिए बहुत जरूरी
0: हेलो
1: है।
0: हाँ जी हेलो भाई रो डॉक्टर साहब, फोन भी आ रही हो भाई
1: अच्छा,
0: यार और
1: हाँ,
0: कनेक्ट नहीं हो रही है। हेलो
1: क्या आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? हेलो,
0: तो सर साहब जान, आप आपने खड़ी फसलारी बात करा तो बा में जका सूक्ष्म पोषक तत्व है बारो है जो उपयोग आप खेड़ तरह कर सका?
1: अभी जो अगर फसलों में देख रहे हैं अपन, कई फसलें तो वनस्पति अवस्था में है और कई कई फसलें अपनी ऐसी अवस्था में जिनमें फलियां बन गई है,
0: जी
1: कई में फूल आ रहे हैं, तो ऐसे में अपन उनमें स्प्रे करेंगे अपन, क्योंकि जो मिट्टी में जो डालने वाला जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है, वो अपन बुआई के दौरान ही डाल देते हैं,
0: जी
1: जिसमें कि जैसे फूल आने के लिए और पौधे की बढ़वार के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है,
0: जी
1: तो बढ़वार करने के लिए इन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे आपके उसमें फूल ज़्यादा लाना है या फलियों की संख्या बढ़ानी है, तो उसमें बोरोन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इधर से आपका पोटेशियम है, तो इनको अपने को अप्लाई करना पड़ता है।
0: अप्लाई
1: तो जैसे जैसे इन्हें रोग की क्षमता भी उसमें बढ़ती है, इस प्रकार से नाइट्रोजन ज़्यादा, यूरिया ज़्यादा डालोगे तो आप पौधा बढ़ जाएगा, लेकिन वो उसके फलियाँ और फूल कम बनेंगे,
0: कम
1: और
0: बनेंगे
1: बनेंगे तो फूल जड़ जाएंगे,
0: जी
1: तो ऐसी अवस्था में यूरिया नहीं डालना है। अब अपने को बोरोन, कैल्शियम, माइक सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपन स्प्रे करना
0: अब
1: चाहिए,
0: जो डॉक्टर साहब खड़ी फसल है उसमें केवल स्प्रे करना है यही
1: स्प्रे कर
0: बात?
1: सकते हैं अपन।
0: स्प्रे में कई खड़ी फसलें जैसे मूंगों की बात करें या गवार की बात करें
1: गवार की
0: तो
1: बात
0: अब
1: करें,
0: आर प्रेजेंट में डॉक्टर साहब जी ने जो गवार है बिना जगह पत्ता है वह जो को पीड़ा पड़ जाए तो बिर वास्ते पर किसी और सूक्ष्म पोषक तत्व है?
1: देखो, इसमें किसी भी फसल में तीन तीन कारण हो सकते हैं। एक तो उसके पीले पड़ने के कारण पोषक तत्व भी होता है, किसी प्रकार का रोग भी हो सकता है और किसी पानी की कमी से भी हो सकता है। अगर पोषक तत्वों की कमी है पौधे के अंदर
0: जी
1: तो आपको सबसे पहले तो उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व डालने हैं, जिसमें आपको मैं बताया था 8 प्रकार के जो कई
0: जी
1: पोषक तत्व होते हैं, बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे तो उसमें डालने हैं। साथ में आपको जिंक सल्फेट भी आपका उसका स्प्रे करना है, और एनपीके का 19:19 का भी आता है, यदि फूल अवस्था के पहले नहीं है उसके पहले पहले आपको उसका स्प्रे करना है। और यदि वो सिंचाई के अभाव में पानी की कमी है तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है, उसके कारण भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी उस कारण हो जाता है। तो समय पर सिंचाई, हल्की सिंचाई करना जरूरी है। और यदि वो उसमें रोग है तो उसका पुनरुत्थान
0: हेलो।
1: के लिए
0: हाँ
1: वो
0: जी,
1: जरूरी है।
0: हेलो।
1: हाँ जी,
0: कौन बोलो साहब, नाम बताओ आप रो।
1: जखानियों बोलूं साहब, गणेश राम नाई। हाँ
0: गणेशाराम जी,
1: जी,
0: काई समस्या आपकी?
1: समस्या तो साहब की नहीं है, भगवान की कृपा है। तो
0: अच्छा
1: नींबू लगा उड़ा है, 2020 में लगाया, बाहर फूल खिलता है, कहीं करा।
0: तो आप री समस्या और समाधान डॉक्टर साहब बता रिया है। हाँ सर डॉक्टर साहब,
1: नींबू के अपने कितने पौधे हैं साहब?
0: 2 पौधे जी।
1: हाँ 2 पौधे हैं। तो देखो, इसमें दो तीन चीजों का ध्यान में रखना है आपको।
0: अच्छा
1: जैसे आपको पानी है ना, ज्यादा पानी नहीं देना है, अंतराल में देना है, 15-20 दिन के अंतराल में देना है पानी, और ज्यादा पानी भर के उसमें नहीं रखना है। और दूसरा कारण ये है कि जो उसका हार्मोन, जो उसका बैलेंस में नहीं रहता है, तो आपके उसके लिए हार्मोन के लिए इंडाइलिक एसिडिक एसिड आता है। एक आपका अगर दुकान में इसको रेडीमेड के रूप में देना है, प्लानोपिक्स के नाम से आती है, और प्लानोपिक्स का आपको लगभग 2 ml 10 लीटर पानी में डाल के उसका स्प्रे करना है। और यदि इसके 7 दिन बाद में आपको क्या करना है, फेकला बिट्राजोल आता है, फेकला बिट्राजोल आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये दवाइयों का नाम लिख लीजिए आप, और इसको भी लगभग 4 ml प्रति 10 लीटर पानी में डाल के स्प्रे करना है। 7-7 दिन में ये दोनों स्प्रे आपको 2 बार दोहराना है।
0: तो गणेश राम जी, आपकी समस्या रो समाधान हुई गो, जान डॉक्टर साहब बताई भी हिसाब है जो लार बात दवाई रो आप इस्तेमाल करो सा। हेलो, एक भाई को और फोन आ रही हो, जुड़ रहा है। हेलो, हाँ तो डॉक्टर साहब आप बात कर रही हैं। हेलो हेलो,
1: कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
0: तो अपन लोग साहब बात करिए, जी आप बता रही है भाई जो कि खड़ी फसला है, बा मैं जब पीलापन हो जाए, चाहे गंवार री बात करा चाहे मूंग री बात
1: मूंग
0: करा,
1: की बात
0: तो
1: कर
0: बा
1: रहे
0: मैं स्प्रे ही काम में लेना।
1: हैं, ये स्प्रे काम में लेना है। अभी देखते हैं तो अभी सीजन में ग्वार की फसल में, मूंगों की फसल में बहुत इस प्रकार की समस्या आ रही है
0: समस्या
1: किसान
0: है।
1: के।
0: हाँ
1: कुछ किसानों के 5-10% ग्वार के पौधे पूरे गिर जा रहे हैं, वो रूट रोड के जो रोग है उसके कारण है। तो ऐसे रोग के लिए उनको समय समय पर दूसरे स्प्रे भी करना चाहिए। जैसे अपने जो कवकनाशी है, जिसमें कार्बेंडाजिम है,
0: हाँ जी
1: मैंकोजेब है, इनका स्प्रे 2 ग्राम पर लीटर के पानी से करना है। इधर मेटालोक्सिल है, मैंकोजेब है, आजकल मार्केट में ये दोनों रेडी मिक्स के नाम से भी आते हैं,
0: जी
1: और मतलब ये मिले हुए रहते हैं कि डिब्बे में, तो ज़्यादा प्रभावी होता है।
0: ज्यादा बड़ा।
1: अगर किसान इसको 30 से 40 दिन पे अगर स्प्रे कर दे पहले एडवांस, तो इस प्रकार के उसके रोग खेत में नहीं आए, लेकिन किसान तब आता है जब उसके खेत में रोग आ जाता है, तो उसका पूर्ण निदान बहुत कम संभव है।
0: तो इस वास्ते डॉक्टर साहब देखो, जन अपना जगह पूर्वज हा जगह वडेरा कहता के जब कोई पानी हाजी जग पेड़ी जे पहाड़ बांध देवे तो आपा भी मैं जो सुरक्षित रह सका। तो अपना किसान भाई कहीं करे कोई तरह को रोग वे या कीटनाशक वे कीटारो प्रभाव ज्यादा हो जाए, बिर बाद में है जो को संभले
1: बिल्कुल
0: और पचे बीरो प्रयोग करे तो जीतो अपन
1: हाँ,
0: फायदो वेणो चाहिए, भाई तो फायदो
1: और
0: नहीं हुए।
1: नुकसान भी हो जाओ, और उसमें पैसों का नुकसान भी ज्यादा होता है, दवाइयाँ भी ज्यादा डालनी
0: एक
1: होती
0: फोन
1: हैं।
0: आ रही हो सा। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, काई नाम सा आप रो?
1: नमस्कार सर, मैं चैनाराम फड़ौदा बात कर रहा हूँ, धोरिमना बालोतरा से। समस्या
0: चैनाराम जी, हाँ काई समस्या बताओ सापरी।
1: ये कि मूंगफली बोई हुई है, हाँ,
0: मूंगफली,
1: तो मूंगफली पे पत्तों पे एक झुंड में जैसे लटे हैं, वो एक झुंड में रहती है और काफी सारे पौधों पे वो झुंड झुंड में ऐसे लटे पैदा हुई है, तो इसके लिए क्या करना
0: तो ये

0: धन्यवाद आप डॉक्टर साहब, आपने बता दिया है। हाँ डॉक्टर साहब,
1: हाँ तो देखो आप दवाई का नाम लिखो, क्योंकि
0: हाँ
1: जो
0: सर
1: लट
0: डॉक्टर
1: भी
0: साहब,
1: है या वो दूसरे भी है उसमें दूसरे कीड़े भी है या ओनली लट ही है।
0: नहीं कीड़े नहीं है, लट है जो झुंड में रहती है, पत्तों के निचली साइड झुंड में लट हुआ, मतलब एक साथ 20-20 लट साथ में रहती है।
1: हाँ तो देखो वो लट हो गई तो अपने को क्या है ना, एक स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ डालनी पड़ेगी उसमें। तो दवाई का नाम लिखो, एक तो इमामेक्टिन बेंजोइट लिखो आप, और इसके लगभग आपको कंट्रोल लगे तो 10 दिन बाद में एक दूसरी दवाई डालनी है, प्रोपेनापोस और प्लस में साइप्रमेथ्रिन। तो ये दोनों एक ही डिब्बे में आएगी और इसका स्प्रे आपको लगभग,
0: इसको हम स्प्रे करना है या फिर पानी के
1: नहीं
0: साथ दे दे
1: इसका स्प्रे
0: फुहारों
1: करना है इसका, और
0: में? अच्छा
1: दोनों का ही, क्योंकि आपको अगर पहले अगर अंडे अवस्था में आप उसको डालते तो ये लट नहीं बनती, क्योंकि अब स्ट्रोंग दवाई दोनों डालनी पड़ेगी आपको, जिससे ये पूर्ण
0: जी,
1: निदान हो जाएगा।
0: तो आपकी
1: ओके
0: समस्या और
1: थैंक
0: समाधान हुई हो। और अब अपन करा कामरी बात।
2: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
3: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
2: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
3: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
2: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 7 बजे सुनिए किसान वाणी, प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: लीजिए एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, अब से प्रत्येक बुधवार को हमारे केंद्र से कार्यक्रम खेती बाड़ी में सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, जिसमें हमारे किसान भाई बहनों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद विषय विशेषज्ञ। तो आप भी प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे से 7:30 बजे के बीच अपनी खेतीबाड़ी एवं पशुपालन संबंधी समस्याओं पर फोन करके सीधे विषय विशेषज्ञ से समाधान पा सकते हैं। हमारे फोन नंबर तो आपको पता ही हैं, फिर भी एक बार पुनः बता देते हैं, तो नोट कीजिए, हमारे फोन नंबर हैं 240-168 और नागौर का SDD कोड है 01582। और हाँ, आपको यह भी बताते चलें कि अब से कुछ दिनों पहले तक हमारे केंद्र से प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाले सजीव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा, क्योंकि अब से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को किसान वाणी कार्यक्रम हम हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले कर रहे हैं। सूचना समाप्त हुई।
0: तो सुनी कामरी बात। और डॉक्टर साहब, आप बात कर रही है जगह पोषक तत्व है इन बीच। देखो मैं आपने एक सवाल आपको करूं कि देखा अपना किसान भाई है, बे कहीं करे कि जकी अपनी जकी फसल आए बा में स्प्रे करे, कई तरह का स्प्रे करे, बे स्प्रे करे। देखो नहीं
1: डॉक्टर
0: तो नहीं
1: साहब,
0: तो कोई न पूछे, नहीं कोई बातचीत करे। एक भाई रो
1: हेलो,
0: बीच ही फोन आ रही हो। हाँ सा राम राम सा। हाँ
1: कू डॉक्टर साहब, गुआर के मायने फाल को नहीं आ रही हो, बड्डू को फूल
0: बडवार खूब कर दी, फाल्गुन आ रही हो, आपकी समस्या रो समाधान करिए डॉक्टर साहब।
1: हाँ साहब, तो नहीं आ रहे हो अभी, कितने दिन का हो गया अपना ग्वार? 2 महीने के आसपास हो गया।
6: हाँ दो ऊपरी को।
1: हाँ, तो आप दवाई लिखो, देखो ये
6: हाँ
1: तीन
6: ये लिखो।
1: दवाइयाँ आपको एक साथ मिलानी है।
6: हाँ
1: एक आता है पोटेशियम, आता है पोटेशियम की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 0 रहेगी, फास्फोरस इसमें 12% के आसपास रहेगा, और जो पोटेशियम है वो लगभग 40 के आसपास रहेगा।
6: एक तो पोटेशियम,
1: हाँ पोटेशियम और फास्फोरस, इन तीनों का, दोनों का मिक्स आता है, एक में आता है, और
6: हाँ
1: इसके साथ आपको डालना है सूक्ष्म पोषक तत्व,
6: अच्छा
1: सूक्ष्म पोषक तत्व, और इसके साथ ही आपने बोरोन, 11% बोरोन आता है, एक वो आपको इसमें डालना है,
6: एक
1: ठीक
6: तो
1: है।
6: पोटेशियम, ये सल्फोर हो गई, सूक्ष्म पोषक बोरोन 11%।
1: हाँ अब एक इससे छोटी सी आती है, 500 लीटर की जो टंकी है अपनी, लगभग
6: हाँ
1: उसमें आपको 100 ml तक आपको प्लानोपिक्स के नाम से एक दवाई आती है, उसको भी आपको उस टंकी में ऐड करना है। ये जो चारों मैंने जो आपको बताई है, इनको चारों को एक साथ मिला के आपको स्प्रे करना है।

0: फलाना
1: प्लानो पिक्स।
0: फलानो पिक्स।
1: और इसके साथ बाकी कोई दवाई आपको नहीं मिलानी है, इन चारों को सब बराबर रेशो से मिलाइएगा।
0: ठीक है डॉक्टर साहब।
1: आप, मैं वापिस आपको मात्रा बता देता हूँ। एनपीके जो है, नाइट्रोजन 0 रहेगा, फास्फोरस 12 रहेगा और पोटेशियम 40 रहेगा। इसकी मात्रा आधा किलो होगी, और जो आप माइक्रो न्यूट्रेंट हैं उसकी मात्रा 1 किलो होगी, और बोरॉन की 400 ग्राम होगी, और प्लानोपिक्स की 100 ml होगी। इसको 500 लीटर की टंकी में डाल के आप 5 बीघा में इसका स्प्रे करना है।
2: अपनी समस्या रो समाधान हुई गोसा। तो डॉक्टर अपन बात कर रही है कि अपना किसान भाई है, बिना कोई ने देखो जगह विशेषज्ञ है, कृषि का जगह एहलकार है, बिना पूछा बिना मतलब कोई स्प्रे कर रही है कि फलाना ले लियो और वो ले लियो, तो इस बारे में है जो किसान भाई ने आप रोकाई बेचारा आप रोकाई कहने को की हिसाब काम करना चाहिए।
1: देखो, वो बिना विशेषज्ञ अपने दवाइयाँ डालते हैं, और जिससे क्या है ना, किसान वो दवाई वालों के पास जाते हैं, जहाँ उनको 1,000 की दवाई डालनी है तो वो वहाँ 3,000 रुपये की दवाई
2: जी
1: डाल
2: जी
1: देते
2: जी
1: हैं,
2: जी
1: जिससे कि उसकी जो लागत है जो फसल की वो बढ़ जाती है। और जो उसको डालना चाहिए, उसको सिर दर्द की तो दवाई अपन देना देना चाहिए,
2: जी सर
1: और उसको पूरे पैरासीटामोल दे के बुखार की दे देते हैं।
2: जी जी सर
1: जब अपना सिर दर्द ही हो रहा है तो सिर दर्द की गोली लेनी है। तो वैसे जो पोषक तत्व है, अलग अलग पोषक तत्वों की कमी होती है, तो वही उस समय पर उसका इस्तेमाल करना है। और ऐसे सभी किसानों को मैं भी कहना चाहूँगा कि दवाई लेने से पहले एक बार जो कृषि संबंधी विशेषज्ञ हैं, कृषि विभाग में, कृषि विज्ञान केंद्र में हैं, उनसे एक बार सलाह ले ले, और
2: जी
1: अपनी
2: सर
1: फसल पे वो पोषक तत्व प्रबंधन करें।
2: बिल्कुल बिल्कुल सर बहुत बढ़िया सर। और अब अपना किसान भाई सुन रही अबाने आपने सब ने वही निवेदन है कि जको भी आप स्प्रे करो या एडी कोई दवाई रो छिड़काव करो तो जरूर जगह अपना कृषि एहलकार है कृषि विशेषज्ञ है बहु संपर्क करो और बहु है जो पूछताछ कर और फिर बाद में आप है जो स्प्रे करो। और अब किसान भैया आज जो आपनों कार्यक्रम हो फोन इन लाइव कार्यक्रम तो आप सुनियो डॉक्टर साहब आपने जो आपरा सवाल है बारी समस्या रो समाधान दियो तो डॉक्टर साहब रो घणो घणो धन्यवाद। और अब अपना ऐडा है किसान भैया बाजार भाव तो क्यों ने आपने बताया जो मैं बाजार भवानी पानरी तो किसान भैया देखो जे मूंगरी बात करा तो मंडी में मूंग है जो 5,000 लगान 7,500 रुपया कुंटल तय भी किया। और तिल री बात करा तो तिलारो भाव है जे को सफेद तिल ही तो निचार मायने है जे को 10,000 रुपया कुंटल और ऊपर में ना 11,500 रुपया कुंटल। और जवार री बात करा तो मंडी में जवार रो आज भाव रियो 4,000 लगान 6,000 रुपया कुंटल। और इन मुझे गवार री बात करा तो गवारो भाग रियो 5,400 लगान 5,900 रुपया कुंटल। और तारामीरो मंडी माए बिकियो 5,800 लगान 6,000 रुपया क्विंटल। और ये जे रायडा की बात करा तो रायडा रे भाव मंडी में भाई ये किसान भैया 7,900 रुपया क्विंटल। और जीरा री बोली लगी निचर माई है जो 16,000 और ऊपर माई ने 20,200। और इस सब गोल रा भाव रिया 9,000 लगान 12,500। और सौंप भी की किसान भैया मंडी में 7,000 लगान 12,000 रुपया क्विंटल। और चन्ना रा भाव रिया है जो 5,400 लगान 5,650 रुपया क्विंटल। तो जका भाई ने लागे कि मार्क ने जींस है और बावड़ा ठीक है तो आपकी जींस है जो तुरंत मंडी में ले जाओ और बिल्कुल है जो आप नकदी ले जाओ। तो आ तो हुई किसान भैया बाजार भाव री बात। और अब देखो जो को चौपाल जो को कुंतियों टेम है वो पूरा हो रियो है तो बिल्कुल है जो को अपन ने टेम रे साथे भी की चालनो सही जे तो क्यों न है जो को अपन टेम रे साथे चला तो इस टेम रे साथे ही आप रे सर्व भरी दिराओ सीख। और करा किसान भैया राम राम सा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमे चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय शाम के ठीक 7:30 हुए हैं।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: उमंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
3: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: घड़ी की सुइयां कभी नहीं रुकती, समय भी किसी का इंतजार नहीं करता। जो हर पल का सम्मान करता है, भाग्य भी उसी का साथ देता है। समय बहुत अनमोल है, उसकी कद्र करें।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर संदेश के लिए, जिसने सच में हम सबको समय का महत्व समझाया। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता के साथ साथ डिंपल देवांगन।
2: ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, नगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी।
3: और माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल।
2: छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी।
2: सभी श्रोताओं को उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे कार्यक्रम उमंग से।
3: श्रोताओं एक बार फिर से करते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: जी
3: श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी कुछ ऐसे शब्दों की जो हैं तो हिंदी, संस्कृत और उर्दू के, लेकिन अब वे विश्व की कई भाषाओं में विशेषकर अंग्रेजी में इस्तेमाल किए जाते हैं।
2: आज एक बार फिर से हम लेकर आए हैं कुछ और शब्दों को जो हिंदी, संस्कृत, उर्दू और क्षेत्रीय भाषाओं से आए हैं, लेकिन अब दुनिया भर में प्रयोग में लाए जाते हैं। श्रोताओं, आपने बंगलो यानी बंगला शब्द अवश्य सुना होगा। शायद ही कोई सोचे कि ये शब्द भारतीय है। अक्सर ऐसा लगता है कि ये शब्द अंग्रेजी का है, लेकिन तथ्य कुछ और है।
3: जी श्रोताओं, तथ्य ये है कि अंग्रेजी का बंगलो शब्द बंगला या बांग्ला से निकला है।
2: जी।
3: इसका अर्थ था बंगाल शैली का मकान। ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में जब देखा कि भारत के बंगाल क्षेत्र में एक मंजिला चौड़े बरामदे वाले घर गर्मी के मौसम के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं।
2: जी।
3: तो उन्होंने भी अपने रहने के लिए इसी प्रकार के मकान बनवाए और उन मकानों को उन्होंने बंगलो कहना शुरू किया।
2: जी।
3: धीरे धीरे ये शब्द पूरे ब्रिटिश साम्राज्य और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। तो श्रोताओं, जानकारी ये थी कि बंगला शब्द बांग्ला शब्द से निकला है।
2: जी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अनेक देशों में आज भी जहाँ जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव रहा, एक मंजिला स्वतंत्र मकान को बंगलो ही कहा जाता है।
3: आशा है श्रोताओं कि आपको हमारी आज की जानकारी जरूर बड़ी रोचक लग रही होगी, है ना? आइए अब सुनते हैं एक और नया शब्द और वो शब्द है खाकी। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस और सेना की वर्दी का प्रसिद्ध रंग खाकी कहाँ से आया?
2: तो हम आपको बता देते हैं, ये शब्द फारसी उर्दू के खाक शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है धूल, मिट्टी या राख। तो जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में खाकी शब्द कहाँ से आया।
3: होता ये था कि भारत में अंग्रेज सैनिकों की सफेद वर्दी बहुत जल्दी गंदी हो जाती थी।
2: जी,
3: इसीलिए उन्होंने धूल जैसे भूरे रंग की वर्दी पहननी शुरू की। ये रंग इतना उपयोगी सिद्ध हुआ कि बाद में पूरी ब्रिटिश सेना और फिर अनेक देशों की सेनाओं तथा पुलिस ने भी इसे अपना लिया।
2: जी,
3: इसलिए आज खाकी केवल एक रंग ही नहीं बल्कि अनुशासन और सेवा का प्रतीक भी माना जाता है।
2: और अब बात करते हैं एक और बहुत प्रचलित शब्द की। शब्द है लूट। अंग्रेजी का लूट शब्द भी भारत से गया है। ये शब्द हिंदी के लूट या संस्कृत के लुंट शब्द से संबंधित है। इसका अर्थ है छीन लेना या लूट लेना।
3: श्रोताओ, अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेज लोग अधिकतर जज, सैनिक या प्रशासनिक अधिकारी होते थे।
2: जी।
3: न्याय करने की प्रक्रिया में या प्रशासनिक मसलों में अंग्रेज अक्सर ये शब्द भारतीयों द्वारा

0: सुनते थे।
1: जी
0: उन्होंने इस शब्द को यानी लूट शब्द को अपनी भाषा में अपना लिया।
1: जी
0: आज अंग्रेजी समाचारों, फिल्मों और पुस्तकों में लूट शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में होता है।
1: और अब लेते हैं दो और शब्द जिनसे सभी परिचित हैं। वो शब्द हैं योग और गुरु। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां योग शब्द न सुना हो। योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना।
0: श्रोताओ, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की जीवन पद्धति है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद ये शब्द पूरी दुनिया में और अधिक लोकप्रिय हो गया। इसी प्रकार से गुरु शब्द भी संस्कृत से आया है।
1: आज भारतीय अंग्रेजी में ये प्रचलन हो चला है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे टेक्नोलॉजी गुरु,
0: मार्केटिंग गुरु
1: या म्यूजिक गुरु।
0: श्रोताओ, दूसरी भाषाओं में शब्दों का यह स्थानांतरण भारत की ज्ञान परंपरा का विश्व पर गहरा प्रभाव दर्शाता है।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओ, भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती बल्कि संस्कृति की वाहक भी होती है। जब किसी देश के शब्द दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचते हैं तो वे अपने साथ उस देश का इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन भी लेकर जाते हैं। जिस भाषा के शब्द दुनिया अपनाने लगे, समझिए उस संस्कृति ने दुनिया को कुछ अमूल्य दिया है।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। तो अब हो जाइए तैयार आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न है, खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: खाकी शब्द किस मूल भाषा से आया है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं
0: और इन्हीं पुस्तकों को आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर भी सुन सकते हैं।
1: जी
0: श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला कार्यक्रम, नदी का सफर।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में नदी की यात्रा के बारे में बताते हुए उसके उद्गम, प्रवाहित होने के क्षेत्रों, जल प्रपात बनने और अंततः समुद्र में मिल जाने के बारे में रोचक ढंग से बताया गया है।
2: नमस्कार साथियों, कल कल करती नदियाँ धरती की नसों में बहता हुआ जीवन है जो हर प्राणी को जीवन दान देती हैं।
3: नदियाँ प्रकृति का अमूल्य उपहार हैं, जिनकी गोद में न जाने कितनी मानव सभ्यताएं पनपी, फूली फली और विकसित हुई। नदियाँ न केवल जल का स्रोत हैं बल्कि जीवन, संस्कृति और सभ्यताओं की आधारशिला है। अक्सर एक जिज्ञासा हमारे मन में उठती है कि नदियों का उद्भव कैसे हुआ। तो आइए सुनते हैं एक रोचक कहानी, नदी का सफर।
2: एक समय था जब पृथ्वी पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ये लगभग 20 लाख वर्ष पहले की बात है। इस काल को हिमयुग यानी आइस एज कहते थे। धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी थी और पेड़ पौधे भी उगने लगे थे।
3: इस तरह से हजारों वर्ष बीत गए। हिमालय पर्वत पर कहीं एक बर्फ की चोटी थी और वहीं रहती थी एक चंचल और चमकदार बर्फ की बेटी, नाम था हिमशिला। वो बहुत बड़े ग्लेशियर यानी हिमनद में रहती थी।
2: एक दिन सूरज ने मुस्कुरा कर कहा,
4: पुत्री हिमशिला, अब तुम्हें धरती पर उतरना होगा। वहां नीचे बहुत से जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, उन्हें तुम्हारे जल की आवश्यकता है।
5: क्यों, मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं तो यहाँ ऊपर बहुत खुश हूँ। बादल मेरे साथ आंख मिचौली खेलते हैं, यहाँ

0: यहाँ सब कुछ कितना शांत है, मैं नीचे क्यों जाऊं?
1: पुत्री, ऊपर रहोगी तो केवल ठंडी बर्फ बनकर यहीं पड़ी रह जाओगी। हमें यूं ही पड़े नहीं रहना चाहिए, किसी के काम भी तो आना चाहिए।
0: अच्छा, वो सोच में पड़ गई। फिर सूरज ने अपना ताप और बढ़ाया। फिर धीरे धीरे हिमशिला ने मन बना ही लिया पर्वत से उतरकर नीचे जाने का। वो एक छोटी सी धार बन गई और बहने लगी तीव्र गति से ढलान की ओर।
2: रास्ते में कई भूमिगत जलधाराओं ने भी यात्रा में उसका साथ दिया। उसकी गति और बढ़ गई। अचानक उसने महसूस किया, कोई उसे खींच रहा है। वो डर गई और बोली,
0: अरे, ये कौन मुझे नीचे खींच रहा है? पर्वत पर तपस्या करने वाले एक बूढ़े साधु ने हंसकर कहा,
1: पुत्री, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। डरो नहीं, धरती माँ तुम्हें अपने पास नीचे बुला रही है ताकि उसे जीवन मिल सके।
2: वो खुशी खुशी बहने लगी।
0: देखो देखो देखो देखो, जरा देखो, अरे ये क्या, और भी इतनी सारी छोटी छोटी धाराएं बहती हुई आ रही हैं मेरी तरफ। हाँ देखो ना, मेरी तरफ।
2: ये सभी आपस में मिल गईं और सभी मिलकर बहने लगी। अब उन्होंने नदी का रूप धारण कर लिया था। कहने लगी,
0: सखी, अब हम सब मिलकर बहेंगी, हम सब एक दूसरे की सहायक हैं।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब मिलकर बहेंगी।
2: अब मिलकर बहने के कारण उनकी बहने की ऊर्जा और बढ़ गई। फिर क्या था, छोटी सी जलधारा ने अब एक विशाल नदी का रूप धारण कर लिया। मार्ग में कई पत्थर मिले, चट्टाने मिली, मार्ग रोकने की भी कोशिश की, लेकिन नदी को तो अब बस एक ही धुन थी,
0: मुझे तो बस आगे बढ़ना है, आगे और आगे।
2: एक दिन की बात है, बहते बहते नदी एक बहुत ऊंची चट्टान के पास आ गई। नीचे देखा तो बहुत गहराई थी, उसे बहुत डर लगा। क्षण भर के लिए वो रुक गई और सोचने लगी,
0: हाँ, अब मैं क्या करूं?
2: उसने दाएं बाएं देखा, तब पर्वत ने कहा,
1: कूद जाओ ना।
0: कूद जाऊं?
1: डरो मत।
0: हाँ?
1: धरती माता तुम्हें अपनी बाहों में ले लेंगी।
0: अच्छा, तो कूद जाती हूँ। कूद गई।
2: लोगों को खुश देखकर नदी को बड़ी खुशी हो रही थी। और हाँ, एक बात और है, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वो रुकी नहीं, अपने लक्ष्य की ओर बहना जारी रखा। कई बार रास्ते में या पहाड़ों पर वर्षा हुई तो उसका जल प्रवाह और भी बढ़ गया।
0: फिर क्या था,

0: भला भूमिगत झरने भी क्यों चुप रहते? उन्होंने भी पूरा योगदान दिया और वो भी शामिल हो गए नदी की इस रोमांचक यात्रा में।
1: वो आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसने कई गांव देखे जहां लोग और पशु पक्षी प्यासे थे। पेड़ पौधे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारे खेत सूख गए थे। नदी बोल उठी,
2: अब समझी, सूरज दादा ठीक ही कहते थे, मेरा बहना दूसरों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जहां जहां मैं जाती हूँ वहां हरी हरी घास उगाती है, पेड़ खुशी से झूमने लगते हैं, पशु पक्षी प्रसन्न हो जाते हैं, लोग मुझे माता कहते हैं, मेरी पूजा करते हैं। न जाने कितनी सभ्यताओं को मैंने अपनी गोद में फलते फूलते और पनपते देखा है, लेकिन कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मुझ में कूड़ा फेंकते हैं, शहरों की प्रदूषित नालियां तक मुझ में बहा देते हैं और मैं बीमार हो जाती हूँ।
0: जब वो सागर तक पहुंची तो सागर ने कहा,
3: पुत्री तू इतनी दूर कैसे आ गई?
2: माँ धरती का गुरुत्वाकर्षण मुझे यहाँ तक बहा कर ले आया।
3: पुत्री तू बहती रही, इसीलिए जीवन चलता रहा।
2: अच्छा,
3: तू रुकती तो हाँ? जीवन चक्र ही रुक जाता। चलती रहो।
2: मैं चलती रहूंगी। हाँ, मैं हमेशा चलती रहूंगी।
0: चरैवेति, यही तो जीवन है।
1: चरैवेति, नदियों का संदेश यही महान। चलते रहना कर्तव्य पथ पर, हो यही बस तुम्हारे जीवन की पहचान।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम नदी का सफर। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विनीत कुमार शर्मा, कलाकार पूनम एस कुदुसिया, सुनील लोहिया, शशांक शर्मा और बबीता त्रिपाठी, आलेख अजीत होरो, संपादन एवं निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है हेलेन केलर।
2: इस कार्यक्रम में दिव्यांग अमेरिकी महिला हेलेन केलर के जीवन और दिव्यांगता से उनके संघर्ष और विजय की गाथा का सप्रसंग उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार

0: आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनका नाम है हेलन केलर।
1: हेलन केलर का जन्म 27 जून 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 2 साल की हुई तो बहुत बीमार पड़ी और
2: डॉक्टर, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना?
3: मिसेस केलर, मुझे बेहद अफसोस है, पर हेलन अब कभी देख, बोल और सुन नहीं पाएगी। हिम्मत रखिए मिसेस केलर, हिम्मत रखिए।
0: हेलन की शिक्षा उसकी मां के लिए अब एक चुनौती बन गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। हेलन की देखरेख और शिक्षा के लिए उन्होंने एक अनुभवी अध्यापिका को चुना, जिनका नाम था मिस सेलिवन।
4: आओ हेलन, मेरे पास आओ। हाँ, इधर। मैं हूँ सेलिवन। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, बहुत सारे काम एक साथ करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। अच्छा देखो, मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, ऐसे। दोस्त हूँ ना तुम्हारी। शाबाश।
1: इस तरह एनी सेलिवन ने हेलन को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी शब्द हेलन को सिखाना होता वो उसके हाथ पर लिख देती थी। इस तरह पढ़ते हुए हेलन ने सबसे पहले गुड़िया शब्द सीखा।
4: हेलन, आओ, आज तुम्हें एक शब्द लिखना सिखाती हूँ। हेलन है गुड़िया जैसी, तो हम लिखते हैं तुम्हारे हाथ पर गुड़िया। लाओ हाथ दो। गुड़िया।
0: अचानक एक दिन बाग की सैर करते हुए पानी का नल देखकर मिस सेलिवन के मन में एक विचार आया।
4: अरे, ये पानी का नल? हाँ, अगर पानी का स्पर्श कराकर हेलन के दूसरे हाथ पर पानी लिखूं तो कितना अच्छा होगा। अभी देखती हूँ। ये रहा पानी का नल। हेलन, हेलन, अपना हाथ मुझे दो। हाँ, शाबाश। अच्छा, अब अपनी हथेली खोलो। ऐसे। हाँ, अच्छा, अब मैं एक शब्द लिखूंगी तुम्हारी हथेली पर। देखो, मैं लिख रही हूँ पानी। हाँ हाँ, शाबाश। पानी। हाँ, पानी। एक बार फिर कोशिश करो।

0: यूं शुरू हुआ हेलेन का पढ़ना। अब तो वो चीजों को छू छू कर इशारे से उनके नाम पूछने लगी।
1: जल्दी ही वो अपनी अध्यापिका के मुंह और गले को छूकर बोलना भी सीख गई, यहां तक कि वो संगीत का भी आनंद लेने लगी।
2: मिसेस केलर
3: जी,
2: हेलेन तो अब बहुत कुछ सीख गई है, संगीत का आनंद भी लेने लगी है। आप तो खुद इतना अच्छा पियानो बजाती हैं, आज हेलेन के लिए मेरे लिए पियानो बजाइए ना।
3: जरूर, मैं अभी बजाती हूँ।

0: सिर्फ इतना ही नहीं, हेलेन उभरे अक्षरों यानी ब्रेल लिपि को पढ़ने लगी। वो अंग्रेजी के अलावा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषाएं भी सीख गई।
1: यही नहीं, वो तैराकी, घुड़सवारी और नाव चलाने में भी रुचि लेती। हेलेन ने अमेरिका के प्रसिद्ध महाविद्यालय रेड क्लिफ से स्नातक परीक्षा विशेष सम्मान से उत्तीर्ण की। हेलेन ने आत्मकथा लिखी जो एक प्रसिद्ध पत्रिका में छपी। दुनिया की 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है।
0: बाद में उन्होंने 10 किताबें और लिखी। वो अंधेपन, बहरेपन और उनसे जन्मी समस्याओं के बारे में अखबारों में लेख लिखती रही। अमेरिका और विदेशों में अंधेपन के लिए काम करने वाली संस्थाओं से वो जुड़ गईं।
1: उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्राएं की। सभी जगह हेलेन केलर को भारी सम्मान मिला। सन 1955 में वो भारत आईं। दिल्ली में विशाल जनसभा में उन्हें सम्मानित किया गया।
0: ।1964 में हेलेन केलर को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया।

0: हेलेन केलर की सफलता का रहस्य था तमाम कठिनाइयों के बीच आनंद की तलाश। हेलेन अपने प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का एक अमर स्रोत थी, है और हमेशा रहेंगी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हेलेन केलर, और श्रोताओं इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
1: जगबंधु और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं।

0: Evet, Gorbini Pogam, Şunya Şeng, Boyani, Boyani, Dobriani, Çodani, Modani, Urdani, Berdani, Cimdani, Şubani, Abri, Koki diyor, Hoge.
1: Elun kiriyorum, gınan gınan.
2: Rom Rom Sa.
0: E bayo.
1: Ha?
0: Ek baat tumko kaka kehta hai, gant baan deuna.
1: Kahi kaka?
0: के समाज के मायने कोई ऊंचा होता है नहीं कोई नीचा होता है।
1: हाँ,
0: सब धर्म समान होते हैं, सब वर्ग समान होते हैं, सब की भाषा अपनी अपनी है, लेकिन हम सब एक
1: एक हैं।
0: हाँ, तो मारी बेटा तुम पढ़ा लिखा हो कहीं कहता हो।
1: काका हूँ दो लाइन होना तुम ते समझ लिया रुआ।
0: हाँ होना बेटा।
1: हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक एक है।
0: अरे वाह मारी बेटा, जीव शोरो कह दियो, एक झंडे के नीचे रहने वाले हम सब एक हैं, हमारी सब भाषाएं हमारी एक है, रंग हो कैसे ही रूप कैसे ही हो हम सब एक हैं।
1: हाँ, तो अपन ऊंच नीच की भावना नहीं रखनी।
0: हाँ बेटा, जिगाए ऊंच नीच की भावना रखे, धर्म की ऊंच की नहीं रखनी मारी बेटा, हम तो एक कहते हैं।
1: हाँ तो काका, हम सब एक है तो ईश्वर भी एक है, सब रही एक है काका, अपन धर्मांत नहीं बढ़नो है।
0: हाँ बिल्कुल बेटा, सब समान है, कोई चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब भाई अपने हिंदुस्तान के रहने वाले है।
1: हाँ, तो सब ने शांतिपूर्ण जीवन जीनो है, बिना तनाव के, बिना डर के मिलजुल रहना है।
0: हाँ, तो तभी हमारी एकता बनी रहेगी, तुम सही कहता हो।
1: हाँ, यदि अपनी जो की सामाजिक समरसता हुए ना काका,
0: आ जा बेटा,
1: बनोड़ी रहे जने अपारो देश है जो को आगे बढ़ेला, प्रगति करेला।
0: है बिल्कुल सही कहता हो, तो सबने हाथ जोड़ के सामाजिक समरसता को बनाए रखो, और हमारे देश का एक है और हम सब एक हैं।
1: सही काका, फोन लो।
0: फोन दे उजन लो मुझे।
1: ओए लो।
3: काका जी पगा लागू।
0: ए जीवदारो रोम जी, थोड़ी लंबी उम्र करी, आपरो नाव भिजो खोखी नीर गांव भिजो।
3: पर मुंडो धर्मराम बोलूं काका।
0: आओ हो धर्म जी।
3: हाँ काका जी।
0: ए ज्ञान हो।
3: बहुत बढ़िया, आपरी दिया होनी, भगवान की कृपा होनी।
0: अरे वाह जा वाह, राम जी की कृपा है, जो पूजन मान सम्मान दियो थे। ए भाई
3: बढ़िया, सब सब परिवार में।
0: ए भाईयो।
3: हाँ।
0: ए मुंडवा कनी में पानी गेड़ो कियो।
3: दपू है मैं, बहुत बरसात हुई है, धान बहुत ही लहरा लेवे।
0: अरे वाह जा वाह, की हाक जियो कई खेतरो, एक फरियार टींडियार हुई गई।
3: ओ फलियां घनी हुई, गवार फलियां हुई, तीन डे घनी हुई, मतीरा भी छोटा है, पाकिया कौन आजे।
0: ए हाँ कर लो की कोनी पाको हो जिन काको आजी।
3: ओ काको जी रे फुगावा जरूर।
0: ए लून भाईयो।
1: कहीं को काका।
0: ए कहीं को काका, तू खुने मजा भाई, धर्मा जी रो फोन ही अदावड़ी कर लिया, आगा करी बार।
1: अरे काका, स्कूल में लड्डू मिलिया रो, देखो था कितना इनाम मिला, जका बैठी जचाऊ मैं तो।
0: आये राम राम, तू भाई को बोले लियो।
1: हेलो।
3: राम राम लूनी भाई जी।
1: राम राम सा, राम राम सा भाई जी। यो तार काबरी की खेती में हारो लगावे कहीं हो?
3: हाँ, दो भैया जी की तो हार जावे, एक भाई आयोडी है बार हारो लगावे।
1: निनान करावे?
3: हाँ निनान तो काट लियो पूरे ही, थोड़ो कोनो घास बगदो रियो जो पाड़ा।
1: हाँ टेमो चाय पानी तो बनाई देवे।
3: हाँ चाय पानी बनाई देवे, एक बाणकी है जो रोवे ज्यादा थोड़ी।
1: अरे बाणकी ने चौकी चीजें धरो नाना जी, मान काकू धरवे जियो।
3: ओ घनी लो मैं तो।
1: यार भाई जी चौको बेस कराई जियो।
3: ओ जरूर जरूर सा, आगे रक्षाबंधन है ही है।
1: आज कहीं उड़ाला?
3: आज पीली लोकड़ी उड़ाई दो भाई जी।
0: जीवदारो रोम जी, थोड़ी लंबी उम्र करी, आप रो नाव भिजो खोखी नीर गांव भिजो।
4: क्या करना?

0: राम राम काकोसा।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, ओब्रोन्याओ बीजो को किनेर गाऊं बीजो।
0: धर्मेंद्र थीम्पा निवेदन करूं भोपाल गडो।
1: आओ हो धर्मेंद्र भाई हो। अरे भाई कई नाराज हो कोई काके हो?
0: की नाराज कोई कोनी काकोसा।
1: ए काका जी नो वो नयो जने क्यों?
0: हाँ टेम घनी है कि परिवार काम काज रहे की दुकान माते रहे काम काज अबार की आलू जाड़ घणो ही रहे जाए थोड़ा इन फते की सोता वाली कतारी घनी है वो बजवानी टेम मिलनी थी जवानी मौको मिलनो थी दे।
1: अरे वाश वाश बढ़िया सोच है थांगी एड़ी हो चला को जिन शिव ने देखो आनंद आता है काका। अब तुमको एक सवाल करता है उसका जवाब देना पड़ता है।
0: अबे सवाल तो घने ही करान सवाल उतरी देवान कई गलती वैन कई सही वैन आनंद उठावा प्रोग्राम रो।
1: ए होनोशा
0: हुकम
1: हाथ पैर नहीं जिसके ले कहीं आऊंता जाऊंता।
0: अच्छा
1: फिर भी सारी दुनिया की खबरें हम सबको सुनाऊंता क्या होता है?
0: ये तो क्या अखबार है एक रेडियो है कहीं घने ही है समाचार।
1: ए लूनी भाई यो
2: कहीं को काका।
1: ए भाई जी के रेडियो अखबार घनी हो तो तुम कहीं के उठा हो?
2: काका भाई जी रेडियो की सही तो है बचे।
1: हाँ भाई को बोले लो।
2: हेलो।
0: हाँ भाई शाह।
2: राम राम शाह पगे लगो।
0: अरे राम राम शाह की करे तबीयत पानी
2: रेडी रेट है देखो एकदम मौज है अबार तो।
0: मैं पानी की करे उठी ने
2: अब मैं पानी ठीक है ठीक है।
0: और की खेती थी भाई?
2: हाँ खेती बावड़ी ने मूंग आगे गोटे गोटे उना
0: बहुत बढ़िया है।
2: हाँ फल लाग रही है यार देखो ते।
0: ओ बढ़िया बढ़िया फसल बढ़िया हो जावे तो आनंद आ जावे।
2: हाँ सब कई एकर एकर में जबरदस्त उजावे तो बस मौज बने
0: बढ़िया शाह बढ़िया गाया रहन भैया रहन बकरिया रहन सारी हो जावे तो बढ़िया ही है।
2: सब कई लो देखे दे
0: आओ।
2: और प्रोग्राम केड़ो लगे?
0: अरे प्रोग्राम तो हाथ रो ही लगे लगो लग प्रोग्राम होना अपना मैं टेम कम मिलने फोन लगाऊनी जो कनी से टेम मिले जन फोन लगाई दान बात अच्छी तरह कर ला।
2: हां बढ़िया सा बढ़िया बात अच्छी तरह वहां से काकू खोटी हुए
0: बहुत बढ़िया काकूरी तो आवाज ही निराली आनंद ही आनंद आवे।
2: आ जड़े तो है काकू कहीं है थे इतो अतै करो जन खींचे आवे के आदी तो आर हुं तो ही बस दिन गई हम जे बकावटी हरू जे।
0: बिल्कुल सा काकू ने अड़ी करे मानी अड़ी करे। हां
2: आज कहीं होनोला
0: अब एक कोई लोक रचना है बढ़िया लोक रचना है एक बंजारा रो छोरो।

0: हेलो काका, राम राम साई।
1: ए राम राम साई, आप रो नाम वीडियो खो के गाँव वीडियो।
0: मेरा नाम मेरे गाँव जागांगा से बोल रहा हूँ।
1: ए हमारे नाम काका है, हम रेडियो स्टेशन से बोलते हैं। ए भाई यो।
0: आ काका जी।
1: ए जागांगा में कोई करो
0: बेटा बेटा पढ़ाई कर रहा।
1: आ जाओ हो, कौन सी क्लास में पढ़ता हो?
0: ये फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर चल रही है।
1: अरे हाउल बजो खाके ने क्लास कितनी हुए, किताबा कितनी पढ़ ली?
0: तेरहवीं।
1: हो हो जोगा पढ़ो जोगा अली को माइदार भिजवार का नाम ऊंचा करो बेचारी।
0: हाँ काका जी।
1: ए पर भाई रे माइदारो क्यों मान जो?
0: आओ काका जी।
1: ए लूड़ी भाई यो।
2: काका।
1: ए भाई तेरा किताब पढ़ता है, तुम बात करना चाहो तो जिन्हें नॉलेज में कर सकता हो बोलो। हेलो
2: हेलो
0: हेलो लोनी भाई, राम राम
2: राम राम राम राम नरेश भाई जी।
0: हाँ जी।
2: ते प्राइवेट पढ़ो का रेगुलर पढ़ो?
0: प्राइवेट।
2: ए कई कई सब्जेक्ट लेवड़ा है वो?
0: सब्जेक्ट आर्ट्स है।
2: एक सवाल बताओ।
0: हाँ पूछो। आए जान दे दा।
2: चार देश भक्तों के नाम बताओ।
0: महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस।
2: अरे वाह।

0: भाजी नाम बता दे अब गण हुणई दो।
1: ए कौन जा हुणना जाम ते पूछो को जब ढा पड़ी के ना।
0: भाजी किसो गण हुणो ला
2: बणगारा थोरो।
1: ए लुणी भाई।
0: हां काका।
1: ए जाऊ जा भाई बेटा।
0: ओए लो।

0: राम राम काका।
1: ए राम राम भाई, राम राम भाई, आप रो न्याओ बिजो को के नीर गांव बिजो।
0: नाम से देव राम गांव जुजंडा।
1: आओ हो है देव जी।
0: हाँ जी।
1: ए कोई काम जिंजा हुए हो।

0: काका राम राम।
1: ए राम राम शाही, राम राम शाही, अब राजा बीजो को के नीर गांव बीजो।
0: गांव सोनू है, गांव ओला दिल है।
1: आह होनू भाई ओला दिल में कहीं करो थे?
0: खेती रो दंडो करा।
1: अच्छा खेती रो दंडो करो, खेतिया कैसी के मारी बेटा?
0: ठीक है करो।
1: अच्छा ए फलियार की काजरा हुए गई?
0: हाँ गणे ही है।
1: अरे वाह, हाँ कर लियो, कौन कर लियो तू?
0: कर लिया मैं तो।
1: अरे वाह मारी बेटा, और बेटा गांव में परिवार में हगला क्या नहीं मारी बेटा?
0: सब रेडी रहे
1: थे। ए जनी प्रोग्राम के योग लागे बेटी?
0: गणे तो कर लागे, कौन कौन लागे?
1: ए लूनी भाई यो
2: काई को काका?
1: ए होनू भाई कहता है कि फोन नहीं लागता है, पर प्रोग्राम गणे छोका लागता, काई करता है तुम बोलो। हेलो
2: हेलो
0: सोनू भाई, राम
2: राम। राम सर, राम राम सर। सोनू भाई यो तुम निनाण कर लियो कहीं? ए धन पशु राखो कहीं?
0: हाँ गाय रखा।
2: ए गाय के पग कितना हुए?
0: चार।
2: तन पांच गाय के कितना पग हुए ला?
0: मन्ने पता
2: काका यो।
1: आ बिजा
2: थाने की गिनती आवे तन बता दो, पांच गाय रे कितना पग हुए ला?
1: ए पांच चौका की बीस।
2: हाँ काका।
1: आ बीस पग हुई, मैं हो दूंगा इनके उठाऊ।
2: हेलो सोनू भाई, बीस पग हुई पांच गाय का? आज कहीं होना ला?
0: बोले तो मेरा आज वजन बढ़ा है तो।
1: ए भाई कहीं के बेटा?
2: भाई के भूमि जड़ो आनंद।
1: ए देख भाई जरूर मेरे भरसे आज कम उड़ी भूमि जी महाराज ने मना मार दू जाऊ।
2: अरे खबर।

0: काका राम राम।
1: हे राम राम शाही, राम राम शाही, राम राम नाम बीजो को के नीर गांव बीजो।
0: नाम जयदेव सोनी नागौर।
1: आओ हो जयदेव जी, क्या न्यो?
0: ठीक हूँ, बहुत बढ़िया है।
1: राम जी की दी हूँ ठीक ही रहना जी। और बताओ सब क्या ने?
0: सब ठीक है, प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगे, बहुत बढ़िया बोली, मारवाड़ी बोली लगे अपन।
1: अरे वाशा मारवाड़ी बोली तो मिजी हो जी लागनी है बजे।
0: हाँ मिश्र तो लगे आप रही लोनी भाई सब मांगे।
1: अरे वाशा और बताओ तबीयत पानी क्या ने थोड़ो?
0: तबीयत पानी ठीक है।
1: ए तबीयत पानी ठीक है, तुमने काको एक सवाल करे उसका जवाब तो करना पड़ेगा।
0: हाँ बताओ आज तू ले जाओ काका।
1: ए चार खड़े चार पड़े, ए चार खड़े चार पड़े, एक एक के मुँह में दो दो भड़े, क्या होता है?
0: आप बता दो।
1: आई लूनी भाई यो
2: काई को काका।
1: ए जे देव भाई के टाउन तानी तुमको आउता है गई
2: काका? हूं जे देव बाजिन हो रहा सारन कोन दू
1: आज तुम उद जाउता हो गई।
2: हम भाई जी पालम जाती रो।
1: ए पालम जाती रो तो बोलो हेलो।
2: हेलो
0: हेलो रणी भाई।
2: राम राम साहब पगे लगो।
0: अरे मौत करो रणी भाई, खुश रहो।
2: और दादी जी रे तबीयत पानी की कर
0: है? हां दवाई ले अब सुधार है, ठीक है।
2: हां टेमो टेम दवाई दईजो, ध्यान राखजो।
0: सागड़ी पड़ी
2: यार काके, गाड़ी पूछी ना
0: बा कोई नहीं।
2: अरे मैं तो आई कौन गई यहाँ पर पुरान टेम में देखो थे मनसा उतना नहीं ढोलिया।
0: हाँ
2: हाँ कई सार उपड़ा हुए बच्चे, चार खड़ा चार पड़िया, एक एक रे मुंह में दो दो पड़िया।
0: हाँ है,
2: मजा आएगी ना?
0: आएगी आएगी।
2: आज कहीं होना ला?
0: आज सीमा मित्र सेल मोर कांगसियो
2: कक्का आयो।
1: हाँ भैया
2: भाई जी होते कांगसियो।
1: ए कांगसियो हो दे, तू भेजू के भाई बंदे ना दो चार रो पट्टा बाई लीजो।

0: काकाराम राम पगा लागू।
1: ए जीवदारो रोम जी थोरी लांबी उम्र घरी अन दनगा भिंडार बिरी ओबरो न्यो बीजो गोगे नीर गांव बीजो
0: ना माल ना थे गांव कुदा रोली।
1: ओ माल ना जी कहीं काके नाराज हो गई हो
0: काम ना खेती करा।
1: अच्छा खेती रे करो तो काके नी आज कौन करो का सदी नो फोन करियो दे दो।
0: हां फोन का है ना कुजो फोन का है लागे तो कर दो लागे फोन नहीं खाई करा।
1: आए कोई बात नहीं आज हटा उड़ी होगी और बताओ खेती बाड़ी क्या नहीं हो
0: ठीक है।
1: अरे वाह जवाब जो की खेती बाड़ी ठीक है टाप ये क्या नहीं हो।

0: हाँ साहब अभी ठीक है, पर ठीक है।
1: वाह शिया वाह। ए लूनी भाईयो।
2: कैको कोको।
1: ए मालनाथ भाई के तो सब ठीक ठाक है, तुम बात करना चाहता हो कहीं?
2: हाँ करूँ काका।
1: एज बोलो एलू।
2: हेलो
0: लूनी भाई, राम राम।
2: राम राम सर, राम राम सर भाईजीओ।
0: हाँ
2: बार कई कई बौड़ो है?
0: बाजरी बड़ी है, कुमार बड़ी है।
2: बाजरी कितनी डिगी हुई हो?
0: बाजरी ठीक है, पर कौन दिखा?
2: मैं तो ऊपर कर निकल गई।
0: हाँ
2: सही ऐसा ऊपर ऊँट ही नहीं दिखे।
0: हाँ कौन दिखे?
2: सही ऐसा एक आड़ी बताओ।
0: अरे बताइए।
2: अरे हरी हरी पूछू मैं तो। आपने पानी कटूं कटूं मिले?
0: पानी?
2: हाँ
0: पानी बरसात का है, कुआ है, नदी है, तालाब है।
2: सही ऐसा आज कहीं हुनोला?
0: आज भजन सुनाओ।
2: काका आयो
1: बिजा।
2: ए माँ लाल जी का भजन बजाई दो।
1: अगरबत्ती खाऊ जाओ तो मारी बेटा।
2: ओए लो।

0: ऐ है मारे बच्चा ओ तो भयेंगी बोएंगी सबकी पिशिन को पोगाम।
1: हेलो गोरबन।
0: ए पोगाम में कोई भाई ये गीते बजने होना चाहता है तो तुम कहीं केता हो
1: रका दी तो आर के दिन बार बजे ले प्रार एक बजे तय नागौर आकाशवाणी फोन करना है। नंबर एक का मिंडी एको पांच आठो दुओ
0: अहे
1: दुओ चोको मिंडी एको छको आठो।
0: अरे वाह मारी बेचा ए भाई।
1: हाँ काका।
0: ए के भैया का फोन है सुमे की कोमी मिले नी सीखे तो उनका पाना बाजो।
1: ए काका विकास भाई लिखा है गाँव वाला आयू और काका देखो
0: आए तुमको कहीं पड़ी नहीं आऊंगा
1: पढ़ना आवे काका थोड़ा डबो तो इकबाल भाई है
0: नागोरू
1: अजमेरी गेट नागोरू।
0: अच्छा
1: एर काका है देखो लक्ष्मण राम जसू राम राधा किशन जा खड़े गांव बेरा सरू
0: ने केनो अगले दीदवार का फोन गिड़गड़े हुए।
2: इस कार्यक्रम में काका की भूमिका में थी सुभाष कंडारी और लूणी की भूमिका में थी भीखी देवी चौधरी।
0: ओ भाई
1: काइको काका
0: ए अब बजो आज के भोगाम में तकनी की हयो किसका है
1: प्रतीक वर्मा।
0: ए आज के भोगाम के पश्चूत गीता
1: अशोक कुमार गोयल।
0: अब हंदेश लगो मारे बिजिया
1: ए स्वच्छ रहो स्वस्थ रहो। हेलो गोरबन
0: होती तो बाप रे खो के नेर हो गए
1: लूण की ने दिरो सीख और करते हैं
0: रोम रोम शाय।

0: Hello, Gorman.
1: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों का फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो गोरबंद। हम आकाशवाणी नागौर के चिमी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 हुए हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या। समाचार संध्या का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, उच्च गुणवत्ता और लागत प्रभावी अवसंरचना सर्वोच्च प्राथमिकता। केंद्र सरकार उप ठेकेदारी मानदंडों की समीक्षा करेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। ईरान ने खाड़ी देशों को अमेरिका के सैन्य अभियानों में सहयोग न करने की चेतावनी दी। नीदरलैंड्स में पुरुष FIH हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया और पुरुष क्रिकेट में भारत ने गोल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका को 165 रन से हराया। मानव सुथार ने पहली बार 10 विकेट झटके। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें 4 रेलवे परियोजनाएं और 1 राजमार्ग परियोजना शामिल है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 13,041 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी।
1: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का थर्ड एंड फोर्थ लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट आज कैबिनेट ने अप्रूव किए।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, खड़गपुर भद्रक की चौथी लाइन, भद्रक हरिदासपुर की चौथी लाइन, गुमेड़ी पुंडी गुदुर की तीसरी और चौथी लाइन तथा कटक पारादीप की तीसरी तथा चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है।
1: बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लागत को संतुलित बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना उपलब्ध कराना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अवसंरचना विकास की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित सुरंग और पुल सम्मेलन 2026 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय राजमार्ग निर्माण कार्यों के उप ठेकेदारी संबंधी मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करेगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि संविदात्मक आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन किया जाए और गुणवत्ता तथा समय पर निष्पादन की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मुख्य ठेकेदार की ही रहे। श्री गडकरी ने बेहतर अवसंरचना सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए विस्तृत और मजबूत परियोजना रिपोर्ट DPR की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि खराब गुणवत्ता वाली DPR और अपर्याप्त भूवैज्ञानिक डेटा अक्सर लागत में वृद्धि, देरी और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का कारण बनते हैं।
2: कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, उसके लिए प्लानिंग इन एडवांस, प्लानिंग इन डिटेल बनाकर वी नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। तो ये हमारे लिए अनप्रेडिक्टेबल जियोलॉजी एंड ग्राउंड कंडीशन ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका बहुत अध्ययन होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कुछ किया तो उसका उपयोग ओवरऑल देश को होगा। बाद में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड नेचुरल हजार्ड्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, अर्थक्वेक।

0: एक हेवी स्नोफॉल, अभी बहुत कठिन है ये जो जिला में काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि प्रौद्योगिकी, मीडिया, अर्थशास्त्र और लोकनीति की दुनिया तेजी से बदल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में भारतीय सूचना सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद के दौरान ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि सोशल मीडिया ने सूचना प्राप्त करने, साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया है।
2: Social media has fundamentally transformed the way citizens receive, share and respond to information. You should use social media platforms not only to inform the engaged, but also to listen, understand and respond to concerns of the people.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जब सूचना तेजी से फैलती है तो आधिकारिक संचार में सटीकता, विश्वसनीयता और जनहित का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में वन अधिकारियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वन, वन्यजीव, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ विकास को आगे बढ़ाना होगा। उपराष्ट्रपति ने आज देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में वर्ष 2025-27 बैच के भारतीय वन सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया। झारखंड में 26 दिन से चल रहा विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार द्वारा कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश देने के बाद समाप्त कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: आंदोलनरत छात्रों ने राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने और 45 परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है, जिसमें जेपीएससी सिविल सर्विस और जेएसएससी सीजीएल भी शामिल हैं। छात्रों ने सरकार को जांच पूरी करने के लिए 60 दिनों का समय दिया है और चेतावनी दी है कि जांच निष्पक्ष या संतोषजनक नहीं होने पर वे फिर आंदोलन शुरू करेंगे। छात्रों ने आज शाम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक आभार यात्रा भी निकाली, जिसमें प्रमुख छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी शामिल हुए। देवेंद्रनाथ महतो ने 16 दिनों तक आमरण अनशन किया था। वहीं सरकार के फैसले से 2628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इसके विरोध में जेएसएससी सीजीएल से नियुक्त अभ्यर्थियों ने झारखंड सचिवालय और प्रोजेक्ट भवन के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग दोहराई है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। श्री जोशी ने इस बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्रदान करने की प्रधानमंत्री की पहल के कार्यान्वयन की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में लापता और बचाए गए बच्चों की पहचान और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए राष्ट्रीय डीएनए और बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली बनाने की मांग की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तमिलनाडु के महाबलीपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित तौर पर नफरत फैलाने वाले भाषण के मामले में पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कृष्णानगर अदालत ने निर्देश दिया है कि वारंट के निष्पादन की रिपोर्ट 28 अगस्त तक प्रस्तुत की जाए। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में संशोधन किया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के अनुसार मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्था का कार्य अब 24 अगस्त तक किया जाएगा। वहीं मतदाता सूची का प्रारूप 31 अगस्त को प्रकाशित होगा। आयोग के अनुसार दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक होगी। दावों और आपत्तियों के

0: निपटारे की प्रक्रिया 31 अगस्त से 29 अक्टूबर तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची अब 4 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली के मुनिरका इलाके में मणिपुर के दो लोगों पर कथित हमले की मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्तियों ने मणिपुर के इन दोनों लोगों पर हमला किया। हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। अमरीकी राजदूत ने कहा कि केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
1: केंद्र और स्थानीय सरकार ने इस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये एक बहुत सुंदर क्षेत्र है। मेरा मानना है कि बहुत से अमरीकी पर्यटक यहाँ आकर इसकी सुंदरता को देखना पसंद करेंगे।
0: श्री गोर जम्मू कश्मीर की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के श्रीनगर स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। अमरीकी राजदूत ने मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रमुख मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने देशों को अमेरिका के सैन्य बलों की सहायता या समर्थन करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान क्षेत्रीय सैन्य ठिकानों पर हो रही गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है। सेना प्रमुख अब्दुल्लाही ने कहा कि इन सैन्य अड्डों पर अमेरिका के सैन्य विमानों की उपस्थिति और तैनाती मेजबान देशों की जानकारी के बिना नहीं हो सकती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई वार्ता नहीं चल रही है और न ही निर्धारित है। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 312 हो गई है। 4611 लोग घायल हैं और 290 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति अबिलाडो डे ला एस्प्रियला ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। भारत ने कोलंबिया को समर्थन देते हुए पिछले सप्ताह राहत सामग्री की पहली खेप के रूप में 20 मीट्रिक टन सामग्री भेजी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में एफआईएच हॉकी विश्व कप के पूल डी के मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और अभिषेक नैन ने 2-2 गोल दागे, जबकि हार्दिक सिंह ने 5वां गोल करके भारत की बढ़त को मजबूत किया। भारत ने गोल में 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। मानव सुथार ने इस मुकाबले में कुल 131 रन देकर 10 विकेट हासिल किए हैं। मानव ने पहली पारी में 76 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी पारी में उन्होंने 55 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.42% लुढ़क कर 76,910 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 77 अंक यानी 0.32% नीचे आकर 24,078 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 8 पैसे कमजोर हुआ और 95.76 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी। 4 राज्यों में 4 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं और बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के चौड़ीकरण को स्वीकृति। अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए केंद्र और स्थानीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया के युग में सटीक, विश्वसनीय और नागरिक केंद्रित सरकारी संचार का आह्वान किया। नीदरलैंड्स में पुरुष एफआईएच हॉकी विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: मुद्दा जो है सो वो पाया नहीं जाता कहीं, एक आलम जुस्तजू में जी को अपने खो गया। बेकसी मुद्दत तलक बरसा की अपनी गौर पर, जो हमारी खाक पर से होके गुजरा रो गया।

0: क्या आप ग्रो करने के लिए रेडी हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? तो अपने बिजनेस को दीजिए नई बुलंदियां।
1: अप टू 85% LTV के साथ अब मनापुरम IGL गोल्ड लोन से फंड्स पाना हुआ आसान।
0: जो लेकर आए हैं 5 करोड़ तक का लोन खास आपके लिए, ताकि आपके बिजनेस को हर कदम पर मिले सहारा।
1: कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, अपने गोल्स तक पहुँचिए, मनापुरम के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए।
0: मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, मेक लाइफ इजी। टोल फ्री नंबर 1800420223।
2: मेरे मालिक ने मेरे हक में ये एहसान किया, खाकि नाचीज था मैं, सो मुझे इंसान किया। मुझको शायर न कहो मीर कि साहब मैंने, दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया।

भरे रहते हैं सारे फूल ही जिसके गरीबा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गज़लों का प्रोग्राम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाज़ों में कुछ गज़लें। ये कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। FM बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM फ्रिक्वेंसी के अलावा भी आप हमें प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज़ होने या यार इंटरनेट के माध्यम से ऑल इंडिया रेडियो लाइव के ज़रिए और OTT प्लेटफॉर्म वेब्स पर भी आप हमें सुन रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से अनुप्रसारित होगा।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में कटी पतंग फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आर डी बर्मन।

प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे कटी पतंग फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी थे गीतकार और संगीतकार थे आर डी बर्मन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में चाइना टाउन फिल्म से। मजनू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं रवि।

फूलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ है। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हुस्न लाज

चाइना टाउन फिल्म के गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हो, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: हाँ।

श्रोताओं नमस्ते। आज बात एक ऐसे अभिनेता की जो चरित्र भूमिकाएं निभाते हुए भी अपने हर किरदार को यादगार बनाने का हुनर रखते हैं। अपनी भावपूर्ण आँखों और संवाद अदायगी के अंदाज से चेहरे पर मुस्कान खिला देते हैं। आज के फनकार हैं अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त।

0: गोलमाल है।
1: उत्पल दत्त, ये नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने वो सारे किरदार तैर जाते हैं जो उनके अभिनय से अमर हो गए हैं। फिर चाहे वो मूंछों के दीवाने गोलमाल के भवानी शंकर हों, या पढ़ी लिखी बहू लाने के सख्त खिलाफ किसी से न कहना के कैलाशपति, इन अतिशयोक्तिपूर्ण किरदारों में उत्पल दत्त के अलावा किसी और की कल्पना हम कर ही नहीं सकते।

तरह उत्पल दत्त के अभिनय और हाव भाव को भूलना मुश्किल है, उसी तरह मुश्किल है उनके अनोखे अंदाज में कहे कुछ शब्द, जैसे अच्छा हैं या चौंक कर उनका ई कहना। वो इन कुछ शब्दों में ही अपने अलग अलग भाव बड़ी आसानी से प्रकट कर देते और दर्शक उनके इन भावाभिव्यक्ति पर लोट पोट

0: वो अपने आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति की याद दिला जाते। अपने मजाहिया अंदाज वाले किरदारों के लिए लोकप्रिय हुए उत्पल दत्त कभी बेवजह हंसाने की कोशिश करते नजर नहीं आते, बल्कि वो अपने सहज अभिनय से ही लोगों को पेट दुखते तक हंसने पर मजबूर कर देते और उनके चेहरे पर ऐसी किसी कोशिश का निशान तक नहीं दिखता।
1: सिर्फ आलू का पराठा क्यों बेटा? मैं तुम्हें कलकत्ते का राजभोग खिलाऊंगा, दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा।
2: मगर सर इतनी सारी मिठाइयां।
1: अरे बेटा, नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा?
2: पुलिस की मार?
1: पुलिस की मार।
0: उत्पल दत्त के सहज अभिनय के पीछे उनकी रंगमंच में की गई सालों की मेहनत चमकती है। 29 मार्च 1929 को उस वक्त पश्चिम बंगाल और अब बांग्लादेश में स्थित बारिसल में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा कलकत्ता में पूरी हुई। इस दौरान ही अपनी युवावस्था में उनका रुझान अंग्रेजी थिएटर की ओर होने लगा। 1947 में वो थिएटर ग्रुप्स से जुड़ गए और अभिनय करने लगे। उनके पहले ही किरदार ने मशहूर रंगमंच निर्देशक जेफ्री कैंडल का ध्यान आकर्षित किया। उत्पल दत्त उनकी थिएटर कंपनी के साथ 2 सालों की भारत पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों की लंबी यात्रा में शामिल हो गए।

थिएटर की दुनिया ने उत्पल दत्त के लिए विचारों की एक नई राह खोल दी। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप की स्थापना की, जिसका नाम रखा लिटिल थिएटर ग्रुप। शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, गोर्की, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे देश विदेश के बड़े बड़े दार्शनिक, लेखक और समाज सुधारकों की कहानियों पर वो नाटक रचने लगे। एक वक्त के बाद उत्पल दत्त को ये एहसास हुआ कि वो अपने नाटकों से जो संदेश आम जनता तक पहुँचाना चाहते हैं, उसके लिए उन्हें भारतीय पृष्ठभूमि के नाटक रचने होंगे। यहाँ से वो एक नाटककार और लेखक की भूमिका में ढल गए। उनके लिखे कई नाटक आज भी बदलाव लाने वाले नाटकों के तौर पर पहचाने जाते हैं। चलो हसी।

उत्पल दत्त इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। उनको रंगमंच पर एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पहचाना जाता है जो कला के माध्यम से समाज सुधार की बात करते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों में शामिल हैं ओंगार, टीनेर तलवार, फेरारी फौजी, आज केर शाहजहां, मानुषेर अधिकार, लोहा मानव, बैरिकेड, दूस्वप्नार नगरी, ए बार राजार पाला और कल्लोल। अपने कुछ नाटकों में उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने का साहस किया। कल्लोल के लिए उन्हें जेल में कुछ महीने भी बिताने पड़े, लेकिन वो अपने विचारों से टस से मस ना हुए और सामाजिक जागरण तथा बदलाव की बातें करते रहे।

दत्त का फिल्मों में आना भी रंगमंच के कारण ही संभव हुआ। रंगमंच में उनको ओथेलो की भूमिका में देख बांग्ला फिल्मकार मधु बोस ने अपनी फिल्म माइकल मधुसूदन में मुख्य भूमिका के लिए चुना। ये फिल्म क्रांतिकारी भारतीय कवि माइकल मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित थी। इसके बाद उत्पल दत्त कई बांग्ला फिल्मों में नजर आए। इनमें शामिल है मृणाल सेन द्वारा निर्देशित फिल्म भुवन शोम। इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

बांग्ला फिल्मों की बातें करें तो उत्पल दत्त वहाँ अलग अलग भूमिकाओं में अपनी छाप छोड़ते रहे। 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्मकार सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म आगंतुक में उत्पल दत्त के किरदार मनमोहन मित्रा को सराहना मिली। सत्यजीत रे की ही फिल्म जॉय बाबा फेलूनाथ में मगनलाल मेघराज के किरदार में उत्पल दत्त एक विलेन की भूमिका में दिखे। उनकी कुछ उल्लेखनीय बांग्ला फिल्मों में भुवन शोम, आगंतुक, जॉय बाबा फेलूनाथ के साथ ही नाम शामिल है पद्म नादिर माझी का।

सात हिंदुस्तानी फिल्म से हिंदी फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले उत्पल दत्त जिस भूमिका में होते उसमें इस तरह ढल जाते कि बस वो किरदार के रूप में ही नजर आते। जैसे द गुरु फिल्म में सितार वादक जाफर खान के किरदार को वो बड़ी ही सहजता से निभाते नजर आते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे कि वो एक अभिनेता नहीं बल्कि एक सितार वादक ही हों। वहीं बासु चटर्जी की फिल्म शौकीन में उनके किरदार जगदीश भाई अपने दोस्तों के साथ वाकई शौकीन और शातिर नजर आते हैं।

कमल दत्त 1950 में कलकत्ता के एक स्कूल में इंग्लिश टीचर थे और अपने विद्यार्थियों के प्रिय हुआ करते थे। कुछ ऐसा ही वास्तविक किरदार उन्होंने निभाया फिल्म गुड्डी में। गुड्डी में प्रोफेसर गुप्ता उर्फ मामा जी के किरदार में ढलकर फिल्मी दुनिया को असली मानने वाली फिल्म की हीरोइन गुड्डी को फिल्मी दुनिया की वास्तविकता दिखाने का वो प्रयास करते हैं। इस फिल्म के जरिए न जाने कितने लोगों के लिए वो एक टीचर बनकर उनका दिल जीतने में कामयाब हुए होंगे।

जहाँ एक और गुड्डी में उनका किरदार फिल्मी दुनिया की असलियत बताता है, वहीं फिल्म रंग बिरंगी में वो नजर आते हैं पुलिस इंस्पेक्टर धुरंधर भाटावड़ेकर के रूप में। धुरंधर भाटावड़ेकर जो फिल्मों और फिल्मी दुनिया के सभी लोगों से नफरत करता है। फिल्म रंग बिरंगी में उनकी एंट्री तकरीबन फिल्म के अंतिम चरण में ही होती है, लेकिन उनके आते ही जैसे फिल्म की पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द ही घूमने लगती है। कुछ सीन्स में ही नजर आने के बावजूद धुरंधर भाटावड़ेकर हमें याद रह जाते हैं और फिल्म में अपने अभिनय का एक अलग ही रंग भर देते हैं।

अभिनय में माहिर उत्पल दत्त फिल्मों में नहीं आना चाहती थी, ये जानकर शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनका पूरा ध्यान रंगमंच की ओर ही था। वो अपनी कला का उपयोग समाज को बदलने में करना चाहते थे, लेकिन उनका कहना था कि फिल्मों में वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। कई बार तो वो फिल्म करके भूल भी जाते कि उन्होंने कौन से किरदार निभाए और फिल्म की कहानी क्या थी, लेकिन ये उनका सहज अभिनय ही था जो दर्शकों को यूं बांध लेता कि वो कभी उन किरदारों को भूल ही नहीं पाते थे।

0: उत्पल दत्त ने कई किरदार निभाए हैं। बांग्ला और हिंदी फिल्मों को मिलाकर तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उनके नाटकों की अलग ही गिनती है, जिसमें से कुछ उन्होंने खुद लिखे। उत्पल दत्त अपने चेहरे, हाव भाव और चश्मे के भीतर से झांकती आँखों से कुछ यूं अभिनय करते कि मानो उनका पूरा व्यक्तित्व ही किरदारों के अनुसार बदल जाता। उस पर संवाद अदायगी के दौरान आवाज का उतार चढ़ाव देखने वाले को बांध लिया करता। कभी उनके किरदार बेहद सुलझे हुए होते तो कभी बिल्कुल अनोखे।
1: मेरा

कुणाल दत्त के निभाए किरदारों की बात आती है तो जहां हम उन्हें कॉमेडी किरदारों में ज्यादा याद करते हैं, वहीं जब जब उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई बिल्कुल अलग नजर आए। उन्हें खलनायक वाले किरदार में देखकर हम कभी ये सोच ही नहीं सकते कि ये वही अभिनेता हैं जो कॉमेडी करते नजर आते हैं। उन्हें खलनायक बने हमने देखा फिल्म अमानुष में, मुनीम

0: घोषाल के रूप में। वो साहू जी बने नजर आए। फिल्म थी बरसात की एक रात। द ग्रेट गैम्बलर में डॉन सक्सेना तो इंकलाब में सीताराम का किरदार उन्होंने निभाया।
1: अमर मिया दो बसा तू तिस्तो जतन दो ऐसर मिया अमर मिया दो बसा तू तिस्तो जतन दो

दत्त के सहज अभिनय को कई बार सराहा गया। यूं तो दर्शक हमेशा ही उनके किरदारों को पसंद करते रहे, लेकिन उन्हें कई बार पुरस्कारों के जरिए भी प्रोत्साहन मिला। उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण सम्मान हैं: संगीत नाट्य अकादमी फेलोशिप, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड।

अभिनय के साथ ही उत्पल दत्त ने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया। इनमें शामिल हैं मेघ, घूम भांगर गान, झार, बैसाखी मेघ, माँ और इंकलाब के बाद। साल 1960 में उन्होंने रंगमंच और फिल्म अदाकारा शोभा सेन से शादी की। दोनों की इकलौती संतान विष्णु प्रिया दत्त भी आगे चलकर रंगमंच से जुड़ी और उससे संबंधित काम करती हैं।

10 अगस्त 1993 को कलकत्ता के एक निजी अस्पताल में उत्पल दत्त का हृदय आघात से निधन हो गया। अंतिम दिनों तक वो अभिनय में सक्रिय रहे। टीवी शो व्योमकेश बख्शी में उनका किरदार और आखिरी फिल्म मेरा दामाद रही। ये फिल्म उनकी मृत्यु के 2 साल बाद रिलीज हुई। उत्पल दत्त भले ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे अनगिनत किरदारों की वो दुनिया छोड़ गए जो किरदार आज भी हमें हंसाते हैं और सिखाते हैं जीवन जीने की कला।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था सहज अभिनय, भावपूर्ण अदायगी और आंखों से अपने भाव जाहिर करने वाले अभिनेता, निर्देशक, लेखक और नाटककार उत्पल दत्त पर।
1: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।

0: शोध आलेख और स्वर नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ ले।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये प्रसारण विविध भारती केंद्र मुंबई से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी नागौर के 6वें चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। हमारी आज की यह प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 8:53 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।